मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, वैशाख माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 मई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन LNG की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी

0: जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जिन खोजा दिन पाइया, गहरे पानी बैठ, जो डूबा प्रेम में उसी को मिली प्रभु की महिमा। इतना आसान नहीं होता कि हम प्रभु की कृपा, प्रभु की महिमा को पा सकें। ईश्वर का वो गुण जो शब्दों में पूरा समा ही नहीं सकता। बस एक ही तरीका है, हम उनकी आराधना करें, पूजा करें,

माला फेरत जुग भया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। 100 साल माला फेर ली, पर मन इधर उधर ही भटका। असली माला मन की है, जो हम कभी नहीं फेर सके, और वो माला है सिर्फ प्रभु की, जो हम सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं।

जो सब प्राणियों में शक्ति के रूप से विराजमान है, हे माँ, तो सब मंगलों की मंगल करने वाली हो, सब काम बनाने वाली हो, शरण देने वाली हो, तुझे मेरा सत सत नमस्कार है।

0: श्री जगदम्बिका स्तुति के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। गांधी चर्चा कार्यक्रम में सुनिए राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार।
4: प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी जी के लिए राम नाम सत्य स्वरूप है। वह कहते थे, आराधना हृदय से होनी चाहिए। राम नाम वह औषधि है जो बीमार तन मन को स्वस्थ करती है। बात तो बस हृदय की शुद्धता की है। जिसने राम नाम का जप किया उसकी नैया पार लगी। राम नाम जब गले से उतरकर हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो सभी रोगों एवं शोकों से मुक्ति मिल जाती है। प्रस्तुत है राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार।
1: प्रार्थना जो मनुष्य सच्चा हृदय से करता है और पीछे भगवान के साथ कोई इकरार कर लेता है कि हाँ मैं प्रार्थना तो करता हूँ और उसका मुझको आज के आज उत्तर चाहिए, तो भगवान को जानता है वो क्या शक्ति है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य एक दूसरे के साथ जड़ सकते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो मुझको 500 रुपया दो, तो 500 रुपया नहीं देता है तो आप उसके साथ लड़ते हैं। तो क्या हम ईश्वर जो निरंजन है, निराकार है, जिसको कोई पहचान नहीं सकता है, उसके साथ जगने तो नहीं हो सकता है। और या तो उस पर हम न्याय करने के लिए बेचा वो भी नहीं हो। प्रार्थना का महत्व बता देना चाहता हूँ कि प्रार्थना एक ऐसी चीज है कि जो करना हमारा परम कर्तव्य है। हम खाने का छोड़ सकते हैं, पीने का छोड़ सकते हैं, कहीं जाना है तो जाने का छोड़ सकते हैं, नींद को छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन आदमी में एक भी सांस पड़ा है तब तो उसको प्रार्थना करना ही है। वो कैसे कर, तब बताया है हमको कि नाम देव। तो इस लड़के ने भी गा के बताया ना कि नाम भजन से क्या होता है। और पीछे आखिर में तो कहा कि साहेब मिलत वो सबूरी में, सबूरी में कहो तो फकीर में, जो कुछ भी उसमें कहना चाहते हैं तो उसमें मिल जाता है। शायद तो ईश्वर को नाम उसने दे दिया है, बहुत बहुत भरा नाम है उसने। तो प्रार्थना वो तो नाम है, नाम तो नाम स्मरण करो, तो नाम स्मरण में मतलब ये होगी कि ईश्वर का स्मरण करो। तो एक आखिरी का साथ निकलता है तब तक वो नहीं चाहिए। अगर हम प्रार्थना का रूप बन गए हैं तो हमारे हाल ऐसे होने चाहिए कि हम कभी मूर्छित स्थिति में न रहें। ऐसा नहीं कि वो हमने ठान लिया है जैसे नमाज पढ़ते हैं कि प्रातः काल का पढ़े पीछे असर का है बीच में आता है, ऐसे करें, गायत्री है, संध्या है, वो अपनी अपने समय पर करें। लेकिन राम नाम के लिए ऐसा समय नहीं है। सारा दिन भर एक भी श्वास चलता है उसके साथ साथ वो चलना चाहिए। ऐसा जब चलें तब आप कहिए कि उस आदमी का खेल और उस आदमी को 125 वर्ष जिंदा रहने का हक है। वह मैं ही, आप ही, कोई भी मनुष्य है, तो उसको कहो कि तू 125 वर्ष के पहले मर जाएगा तो हम कैसे कहें कि प्रत्येक श्वास और निश्वास में, उच्छ्वास में तेरे में राम नाम नहीं था तो मैं आपको कहता हूँ कि आप

राम नाम की महिमा के संबंध में बापू के विचार। अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृषि जगत कार्यक्रम में सुनिए केचुआ खाद की उपयोगिता विनोवर शर्मा की।

किसान भाई नमस्कार। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज केचुए की खाद की उपयोगिता पर। केचुए खाद कितना महत्वपूर्ण है और क्या है, इस बारे में जानना और समझना है। जैविक कंपोस्ट में केचुए द्वारा बनी एक सर्वोत्तम खाद, जिसको गोबर, सूखे एवं हरे पत्ते, घास फूस, धान का पुआल, मक्का, बाजरा की कड़वी, खेतों के अवशेषों और डेयरी तथा कुक्कुट वेस्ट, सिटी गार्बेज इत्यादि को खाकर केचुए द्वारा प्राप्त मल से तैयार खाद को केचुए की खाद या वर्मी कंपोस्ट या उसको केचुए की रेयरिंग या केचुए पालन भी कहा जाता है। किसान भाई को केचुए की खाद क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, ये समझना आवश्यक है। तो उसके लिए केचुए की महत्ता किसान भाइयों के लिए समझना अति आवश्यक है, क्योंकि केचुआ किसान का मित्र, प्रकृति का हलवाहा, प्रकृति की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर होता है। बगैर केचुए के पृथ्वी की वनस्पति लुप्त हो सकती है, किसानों का सच्चा मित्र कहलाता है। केचुआ की बीट फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होता है, जिसे बया पक्षी अपने घोंसले में ले जाकर दीपक के रूप में रात्रि में चमक प्रयोग करता है, जैसे हवाई जहाज का रात्रि में टमटमाना। केचुआ प्राचीन काल से ही किसान का मित्र रहा है। केचुआ खेत में उपलब्ध अधसड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाकर अच्छी गुणवत्ता की खाद तैयार करते रहते हैं। यह मृदा में जीवाणु कवक, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसिट

आदि की अपेक्षित वृद्धि में भी सहायक होते हैं। आज से 30 से 35 वर्ष पूर्व हमारी भूमियों में केचुआ काफ़ी संख्या में पाए जाते थे, किंतु आज बागों तालाबों में ही केचुआ रह गया है। केचुआ की दिन प्रतिदिन घटती जा रही संख्या के कारण ही भूमि उर्वरता में कमी आती जा रही है। शायद यही कारण है कि जैविक एवं टिकाऊ कृषि में पुनः केचुआ खाद याद आ रही है। केचुआ खाद का उद्देश्य क्या है, कैसे समझें किसान भाई कि केचुआ खाद क्यों आवश्यक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कई बिंदुओं पर किसान भाइयों को विचार करने की आवश्यकता होती है। गोबर एवं कूड़ा कचरा को खाद के रूप में बदलना, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी लाना, भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखना, उत्पादन में आई स्थिरता को समाप्त कर उत्पादन बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना और भूमि कटाव को कम करना तथा भूमिगत जल स्तर में बढ़ोतरी करना, बेरोजगारी को कम करना, भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना और भूमि में जल धारण क्षमता में वृद्धि करना, यह अति आवश्यक और इसका उद्देश्य है केचुए की खाद के लिए। केचुए की खाद हम तैयार कैसे करते हैं, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। सभी किसान भाई बहुत आराम से अपने फार्म पे, अपने आवास पर इसको बना सकते हैं। फार्म और घरों के कूड़ा करकट, मक्का बाजरा के डंठल, ढूंठ व सूखी पत्तियाँ एवं खरपतवारों को एकत्रित करके किसी चबूतरे पर या गड्ढे में 3x1x1 घन मीटर आकार की क्यारियों में परत लगाकर अंधेरे या छावे में डाल देते हैं, जिसमें केचुए के स्पॉर्म जो पैकेट के रूप में उपलब्ध होते हैं छोड़ दिए जाते हैं। ये वृद्धि करके इन अवयवों को खाकर मिट्टी के रूप में बाई प्रोडक्ट या मल उर्वरक मिट्टी बनाते हैं, जिसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ये लगभग 1.5 माह के अंदर खाद बना देते हैं। ऐसे क्यारी से 3 से 5 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्राप्त हो जाएगी, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अधिक मौजूद होते हैं। लाल रंग के केचुए एसिनिया फुटिडा अच्छी एवं शीघ्र खाद बनाते हैं। किसान भाई, केचुए की खाद में इसके आवश्यक पोषक तत्व जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संपूर्ण पोषक होता है किसी फसल के लिए, तो इसमें नाइट्रोजन 1.2 से 1.6%, फास्फोरस 1.8 से 2%, पोटास 0.5 से 0.75%, अर्थात फार्म यार्ड मैन्योर यानी जो गांव में घर में जो गोबर की खाद बनाई जाती है उसका कई गुना अधिक तत्व होते हैं। इसमें डॉक्टर सुल्तान इस्माइल जी ने बताया है इसके कंपोनेंट अवयवों के बारे में, जिसमें कार्बन 9.15 से 17.98% होता है, नाइट्रोजन 0.5 से 1.5% होता है, पोटास 0.1 से 0.3% और फास्फोरस 0.15 से 0.56% होता है, सोडियम 0.06 से 0.3%, कैल्शियम और मैग्नीज 22 से 17 mEq प्रति 100 ग्राम और कॉपर और आयरन 2 से 9.5 ppm, जिंक 11.5 ppm एवं सल्फर 128 से 548 ppm तक होता है। केचुए खाद से लाभ और इसकी उपयोगिता किसान भाई कैसे लें, यह गंभीर विषय है और इस पर समझना है कि किसान भाई हर प्रकार के पेड़ पौधों, फल वृक्षों, सब्जियों, फसलों के लिए पूर्ण रूप से प्राकृतिक एवं संपूर्ण व संतुलित आहार पोषण खाद के रूप में मिलता है। इससे बेरोजगार युवकों, गृहिणियों एवं भावी पीढ़ी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या कुछ हद तक सुलझ सकती है। केचुए का मल तथा बर्मीवास भी उपयोगी है। बर्मीवास में 7 गुना पानी मिलाकर फसलों में छिड़काव उपयोगी रहता है और गौमूत्र में मिलाकर 10 गुने पानी से छिड़के। भूमि में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, पॉलीट्रॉफिक लेयर आदि तत्वों का बढ़ाना भूमि उर्वरा को अधिक शक्तिशाली बनाता है और CEC और मृदा संरचना में सुधार लाता है। मृदा में केचुए के द्वारा भूमि की उर्वरता, pH मान, भौतिक दशा, जैविक पदार्थ, लाभदायक जीवाणुओं में वृद्धि का सुधार होता है। इसमें किसान भाई भूमि की जल सोखने की क्षमता, प्राप्त नमी और इन्फिल्ट्रेशन रेट में वृद्धि तथा सॉयल स्ट्रक्चर यानी मृदा की संरचना व एग्रीगेशन में सुधार होता है। केचुए की मल से 2.30 टन प्रति एकड़ प्रति वर्ष जमाव का होना, अर्थात 10 वर्ष में 2 इंच मिट्टी पर ऐसे मल की परत जमा हो जाती है। केचुए की मल में भूमि में 4

5 गुनी नाइट्रोजन, 1.4 गुनी विनियम सोडियम और 3 गुनी विनियम मैग्नीज, 7.2 गुनी सुलभ फास्फोरस एवं 11 गुनी सुलभ पोटास बढ़ जाती है। कासन एक्सचेंज कैपेसिटी का बढ़ना वर्मी कंपोस्ट के कारण या केचुए की खाद के कारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। खरपतवारों की कमी होती है, सिंचाई की बचत होती है। वर्मी खाद के प्रयोग से फसलों में कीड़े कम लगते हैं। जहां केचुए पाले गए वहां मटर व जई में 70% और घासों में 28 से 110%, सेव में 25%, बीन्स में 291%, गेहूं में 300% की उत्पादन वृद्धि मिलती देखी गई है एवं फसल उत्पाद की भंडारण क्षमता या सुरक्षित गुणवत्ता में सुधार हुआ है। निरंतर अनौचित्यपूर्ण रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग तथा भूमि में लगातार घटते जा रहे ऑर्गेनिक मैटर के स्तर में भूमि की भौतिक संरचना व गुणवत्ता नष्ट हो गई है, जो कि मृदा में वायु व ताप के समुचित संरचना, नमी के रिसाव धारण तथा फसल को आपूर्ति करने की क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे भूमि की अल्प व दीर्घकालीन उर्वरता को कुप्रभावित होने से बचाया जा सकता है। इससे किसान भाई बहुत ही लाभान्वित होंगे और इस लंबी अवधि में मृदा को निर्जीव तत्व मान लेने तथा इसके साथ तदनुरूप व्यवहार करने की त्रुटि सबसे बड़ी भूल है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण, भूमिगत जल प्रदूषण एवं कृषि उत्पाद प्रदूषण, खाद्यान्न, फल, सब्जी आदि की भारी समस्या पैदा हो गई है, जो स्वास्थ्य संकट से छुटकारा पाने हेतु वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का प्रयोग अति आवश्यक है। भूमि की उर्वरता का टिकाऊपन समाप्त हो जाने तथा गिरती जा रही उर्वरक क्षमता के कारण लागत के अनुपातिक उत्पादन वृद्धि न मिल पाने के कारण कृषि अधिक महंगी और लाभकारी होती जा रही है, जिससे छोटे व मझोले कृषकों की कमर टूट रही है। ये अति आवश्यक उपयोगी है केचुए की खाद के लिए और साथ ही साथ केचुए की खाद के प्रयोग में किसान भाइयों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए इस पर जानना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए वर्मी कंपोस्ट को पौधों में डालने के बाद पत्तों आदि से अवश्य ढक दें। वर्मी कंपोस्ट के साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, फफूंदनाशी, खरपतवारनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विनोवर शर्मा की बातचीत। विषय था केचुआ खाद की उपयोगिता। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर वी एन त्रिपाठी को। विषय है डायरिया का आयुर्वेदिक उपचार।
1: अतिसार को दस्त के रूप में जाना जाता है और विशेष करके गर्मी और बरसात के ऋतुओं में तो इसका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। बच्चे और बूढ़ों में तो विशेष करके इसका प्रभाव होता है और यहाँ तक कि ये मारक स्थिति तक लेकर चला जाता है। ऐसी स्थिति में यदि अतिसार हो गया है तो हमें बस विशेष करके यही ध्यान देना है कि इसमें जल की कमी शरीर में न होने पावे। और जहाँ तक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात है, आयुर्वेद में अतिसार 6 प्रकार के जो बताए गए हैं उसमें वातस, पित्तस, कफस, सनिपातस और आगंतुज करके, आगंतुज में भी चरकने, भयद और शोकस करके 6 विभाग मान लिए हैं। ये सब तो इसके प्रकार की बात हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारी अग्नि मंद होगी, हम अजीर्ण भोजन का सेवन करेंगे, विरुद्ध अन्न का सेवन करेंगे और ऐसे अन्न का सेवन करेंगे जैसे कि अभी हमने भोजन लिया और भोजन लेने के बाद हमारा भी भोजन अभी पाकावस्था में पहुंचा ही नहीं है, उसके पहले ही हमने कुछ अन्न ले लिया, तो वह आम रस की उत्पत्ति करता है और आम रस की उत्पत्ति होने के पश्चात हमारे अंदर ऐसे रसों की उत्पत्ति होती है जो कि हमारे पूरे आमाशयी कला को विदीर्ण कर देते हैं और वहां से फिर अतिसार के रोग की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में अतिसार को हमें विशेष करके जब भी इसमें कोई कार्य करना होगा तो उसमें हमें 3 रोग में रोगियों को बांटना होगा। पहला है कि अधिक दोषावस्था हो, मध्य दोषावस्था हो या अल्प दोषावस्था हो, इन तीनों अवस्थाओं की चिकित्साओं का भी इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि यदि दोष की अवस्था ज्यादा है तो इसमें हमें विरेचक अवस्था

0: औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि दोष मध्य है तो उसमें दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जैसे जैसे पिपली है, सोंठ, धनिया, अजवाइन, हरण, वच, ये विशेष करके इनके हमें जल में पकार करके इस पानी को पीना है। सुगंध वाला है नागरमोथा, वेल की गुद्दी, सोंठ, धनिया, इनके भी रस में पका करके इनको जल का सेवन करना है। पृष्णपर्णी, गोखरू, मंजीत, कंटकारिका, इनके मूल का भी क्वाथ बना करके अतिसार के रोगी को देना चाहिए। अगर दोष अल्प है ऐसी स्थिति में हम अतिसार का उपयोग न करके उसे हम लंघन कराते हैं, मतलब उसे उपवास कराते हैं, कुछ समय के लिए उसे खाना बंद कर देते हैं। यदि हमारा आम दोष अधिक बढ़ गया है, ऐसा लगता है कि इसमें अगर हमारा दोष आमस ज्यादा है, देखिए एक समझने की बात यहाँ पे है कि आम और पक्व दो तरह के सारे मल आते हैं। यदि आम मल पदार्थ में आ रहा है तो वह जल में डालने पे डूब जाएगा, और यदि वह पक्व आम होगा, पक्व अतिसार आ रहा है तो वह जल पे तैरता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमको इसको विवेचन करना पड़ेगा कि यह हमारा अतिसार आमज प्रकृति का है या पक्व प्रकार का है। यदि आम दोष है उसके अंदर तो हमें वच, अतीस, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, सुगंध वाला, सोंठ, इनको हमें एक विधि से पका करके और उस जल का सेवन करना है। इसमें इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान देना होगा पाचन के पश्चात दीपन और संग्राही द्रव्यों का भी प्रयोग। संग्राही मतलब कि मल को रोकने वाली दवाएं चलानी है। इसमें विशेष करके जो है सालपर्णी है, पृष्ठपर्णी, बृहती, कंटकारी, बला, गोकछूर, बिल्व, पाठा, नागरमोथा, धनिया, इनके क्वाथ को बना करके देना है। इसमें विशेष करके हमें लघु अन्न जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी है, दही का प्रयोग करना है। यवागु मतलब कि जल में घोलकर सत्तू का हम सेवन कर सकते हैं, अनार का प्रयोग कर सकते हैं, छाछ में लवण भास्कर और हिंगवष्टक चूर्ण का मिलाकर के प्रयोग कर सकते हैं। नारियल का पानी इसमें बहुत ही फायदेमंद है, चावल का माड़ बहुत ही हितकर है। ओआरएस का जो WHO ने रिकमेंड किया है कि जब भी आपका इस तरह का अतिसार हो रहा है तो ORS का प्रयोग जरूर करें। अगर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो नींबू, चीनी, नमक का घोल बनाकर के उसको हम घर में ले सकते हैं। बेल को भून कर ले प्रयोग कर सकते हैं, बेल चूर्ण को अलग से ले सकते हैं। और इसमें विशेष ध्यान करने की बात यह है कि ग्रामीण अंचलों में पानी को छान करके उबाल करके पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहां उतना स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। क्योंकि खाना और जल, अन्न और भोजन यदि हमारा शुद्ध नहीं होगा तो सारो हो सकता है। हाथ को साफ करे खाना खाना चाहिए, ताजा खाना का प्रयोग करना चाहिए, बासी खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर VN त्रिपाठी को। विषय था डायरिया का आयुर्वेदिक उपचार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

सात बजे सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ। फिल्मों से लिए गए भजन का आनंद लीजिएगा 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए 7:30 पर, 12:15 पर और रात 10:30 पर कमला बोस का ख्याल गायन।

8:45 पर कार्यक्रम होगा नमस्कार प्रयागराज, 9:50 पर और रात 7:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा वॉइस ऑफ प्रयागराज। ये कार्यक्रम सुन सकेंगे आप 10:05 पर। 10:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम होगा NCERT का उमंग। 11:30 पर सुनिए यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम। 12:30 पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिएगा। 1:15 पर गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में जायका के साथ सुनिए प्रिया सिंह की वार्ता। विषय है हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श। 2:30 पर लोक गीतों का कार्यक्रम होगा।

शाम 5 बजे नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम होगा। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में सुनेगा ओमकार नाथ के गाय लोकगीत के साथ वार्ता। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम सुनेगा। 8:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता। विषय है बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम होगा कहकशा। रात 9:30 पर 10 बजे सुनिए राजेंद्र तिवारी का लिखा नाटक, शीर्षक रास्तों का चक्रव्यूह। ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः परीक्षां कर्तुं समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य आंध्र प्रदेश से श्री सत्यसाई मंडल से पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः, 200+ जनाः व्रणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मंडलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मंडल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अन्तर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्ते, हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का है।
2: एपिसोड नंबर 347।

लंका विजय के पश्चात सीता की अग्नि परीक्षा मात्र एक लीला थी। उनके असली स्वरूप को तो हरण के पूर्व श्रीराम ने अग्निदेव के पास धरोहर के रूप में रख दिया था। अग्नि परीक्षा का आदेश सुनकर न केवल राक्षसियों को विषाद होता है, बल्कि लक्ष्मण की आंखों में भी दुख के आंसू उमड़ आते हैं। किंतु स्वयं सीता से धर्म, विवेक तथा नीति के वचन सुनकर वे लकड़ियां एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। इस लीला की पात्रा के रूप में सीता अग्निदेव से प्रार्थना करती हैं कि यदि मन, वचन और कर्म से वे पति परायणा रही हैं, तो अग्नि उनके लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। उनकी छाया मूर्ति तथा अपहृत होने का कलंक आग के प्रचंड लपटों में भस्म हो जाते हैं। अग्निदेव स्वयं प्रकट होकर सीता जी का हाथ

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत सतीश भाटिया का था। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं सुबह फिल्म का ये भजन। लता मंगेशकर की आवाज है, बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के हैं, संगीत हृदयनाथ मंगेश का है।

कार्यक्रम में अगला भजन सुनिए चंचल और ओमी की आवाज में, इंद्रजीत सिंह के बोल, संगीत सोनिक ओमी का, फिल्म का नाम भक्ति में शक्ति।

भक्ति में शक्ति, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये खूबसूरत सा भजन। इसी के साथ फिल्मों से लिए गए भजन का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तेज आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत एवं सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश भी दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है जहां 21 लोगों की

0: मृत्यु हुई। इसके बाद मिर्जापुर में 19, संत रविदास नगर में 16 और फतेहपुर में 11 लोगों की जान गई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की बचत की अपील के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन की बचत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कार पुलिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी व्यवस्थाओं को अपनाने का आह्वान किया है। लखनऊ में एक निजी मीडिया संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। हर नागरिक का दायित्व है कि वह राष्ट्र के साथ खड़ा होकर अपना योगदान दे।
2: अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए, आपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं, तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 7,700 से अधिक गो आश्रय स्थलों में संरक्षित 15,00,000 से अधिक गोवंश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट आधारित सामूहिक किचन मॉडल विकसित करने पर विशेष जोर दिया ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके। इस बीच देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचत की अपील और प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का असर दिखने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से प्रभावित होकर लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन अपने आवास से कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। वहीं अयोध्या नगर निगम ने फैसला लिया कि अब सप्ताह में प्रत्येक सोमवार को महापौर, पार्षद और अधिकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के जरिए नगर निगम कार्यालय पहुंचेंगे। इस बीच कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने भी सार्वजनिक परिवहन और ई वाहनों के उपयोग किए जाने और विश्वविद्यालय की बैठकों को अधिक से अधिक ऑनलाइन आयोजित करने का निर्देश दिया है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी परिषद की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल कहा कि घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गाजियाबाद स्थित 8वीं एनडीआरएफ बटालियन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से न केवल जोखिम को न्यूनतम करने के लिए कार्य किया गया बल्कि प्राकृतिक आपदा को कम करके उससे निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि एनडीआरएफ ने बीते 2 दशक के कम समय में ही देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है।
5: देश भर में कहीं पर भी जाते हैं आपका सेवा सदैव सर्वत्र इस घोष वाक्य के साथ काम करते हुए एनडीआरएफ के जवानों के प्रति न केवल समग्र देश जहां जहां दुनिया में गए वहां आपने प्यार भी अर्जित किया है और लोगों का भरोसा भी अर्जित।
1: कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री ने वीर जवानों को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई शिलान्यास और 1 रीजनल रिस्पांस सेंटर का ई लोकार्पण भी किया। प्रदेश में स्वदेशी दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आगरा में कल स्वर्णिम दुग्धामृत संवाद समागम थीम पर डेयरी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निराश्रित गोवंश सरकार की प्राथमिकता है।
6: निराश्रित गौवंश योगी सरकार की प्राथमिकता है और इसके उत्तर प्रदेश में हम सभी गौशालाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश में देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में दूध का सबसे अच्छा है। हम दुग्ध महोत्सव के माध्यम से पशुपालकों को दुग्ध संख्याओं को मजबूत करते हुए महीने के अंदर ही हम दुग्ध उत्पादकों का भुगतान कराने का काम करेंगे और ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें दुग्ध उत्पादन की।
1: मौसम विभाग ने आज से 18 मई तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में दिन के समय कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले एक सप्ताह के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा में जान गंवाने वाले 111 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को प्रभावित परिवारों तक अविलंब सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री ने ईंधन की बचत के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की अपील की। कहा, संकट के समय देश हित सर्वोपरि होना चाहिए। गाजियाबाद में एनडीआरएफ के राष्ट्रपति निशान अलंकरण कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 7 क्षेत्रीय रिस्पांस सेंटर का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और प्रदेश में आज से शुष्क रहेगा मौसम, लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
7: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए कमला बोस का ख्याल गायन, राग नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन राग नट भैरव। इनके साथ तबले पर संगत किया अनूप कुमार बनर्जी ने, हारमोनियम पर साथ दे रहे थे शमशाद अहमद खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में ये देशभक्ति गीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा तक, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीला

0: लेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश

0: रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पुद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएस समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई।

0: है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एलआईसी द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरल में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए यूडीएफ मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वीडी सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यूडीएफ सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर यूडीएफ के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और यूडीएफ के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एस पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहां कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट पीएम डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काई वॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सारना में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये, बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने

0: 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's 4th largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supplier to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE saw sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज यूएई, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम ने कहा है कि भारत की जेरे सदारत ब्रिक्स एक ज्यादा शमूलियत वाले आलमी निजाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। हुकूमत ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत 100 किलोग्राम तक सोने की दरामदात को ड्यूटी फ्री कर दिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुपए पैसे की जबरन वसूली का एक ग्रुप चलाने के लिए कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। और मकाओ में सेंडा आलमी कप में वुशु में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में अपर्णा दहिया ने सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात समेत खासतौर से तवानाई में इश्तराक पर दो तरफा बातचीत करेंगे। वो मजबूत सियासी, सकाफती, इक्तिसादी और अवाम से अवाम के राबतों पर मबनी बाहमी जामे कलीदी शराकत दारी की पेशरफ्त के सिलसिले में तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। दौरे से पहले मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी असीम महाजन ने कहा कि तवानाई ताल्लुकात के अहम सुतून में से है। उन्होंने कहा कि यूएई गुज़श्ता बरस खाम तेल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा जरिया था, जिससे भारत की तकरीबन 11% जरूरत पूरी हुई। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय कंपनियों ने अबू जहबी कौमी तेल गैस कंपनी के साथ तवील मुद्दती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो मजमुई तौर पर 4.5 मिलियन मैट्रिक टन सालाना के हैं। उनके मुताबिक भारत यूएई से एलएनजी खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तकरीबन 40% एलएनजी भी दरामद करता है और ये पेट्रोलियम अशिया के लिए एक अहम मकाम रहा है। दोनों ममालिक कलीदी पेट्रोलियम जखायर, काबिल तश्दीद तवानाई के प्रोजेक्टों और बिजली के इम्कान ग्रिड इंटरकनेक्शन के सिलसिले में भी इश्तराक कर रहे हैं। यूएई आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का बानी मेंबर भी है, जिससे माहौल के लिए साजगार तवानाई के सिलसिले में वसीतर इश्तराक की अक्कासी होती है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खाम तेल की रिवायती तजारत से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिस पर कभी उनके तवानाई के ताल्लुकात का इन्हिसार था। मुत्तहिदा अरब अमारात भारत को तेल फराहम करने वाला एक अहम मुल्क है, लेकिन यह शराकत दारी अब कुदरती गैस, काबिल तजदीद तवानाई और सिविल न्यूक्लियर ताउन जैसे शोबों तक वसी हो गई है। इस साल के अवाइल में हिंदुस्तान पेट्रोलियम

0: कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में शांतनु से उस वक्त से पूछताछ कर रही है जब वो एजेंसी के एहलकारों के सामने पेश हुए थे। उन्हें 10.5 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया और आज उन्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के साबिक ऑफिसर इंचार्ज शांतनु बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ बिस्वजीत पोद्दार की जानिब से चलाए जा रहे मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों से वाबस्ता ग्रुप में काले धन को जायज बनाने की तहकीकात के सिलसिले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था। ताहम उन्होंने बार बार ईडी के समन को नजरअंदाज किया। ईडी ने शांतनु के खिलाफ एजेंसी के सामने पेश होने से बचने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई और एरोस्पेस सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में एक अहम कदम के तहत वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपार्थी में एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के मरकज का संगे बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम मरकज को दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO के तहत एरोनॉटिकल तरक्याती एजेंसी की जानिब से तैयार किया गया है और यह भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा 5वें सिलसिले के स्टेल्थ लड़ाका तैयार प्रोग्राम के फरोग तैयारी और आजमाइशी परवाज के लिए एक मरकज के तौर पर काम करेगा। तकरीबन 650 एकड़ में फैले इस मरकज पर 15,803 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है। AMCA लड़ाका तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ट्विन इंजन सुपर क्रूज सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इम्कान है कि इस प्रोजेक्ट से तकरीबन 7,500 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की रिहायशगाह पर कल शाम एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद हुई जिसका मकसद आइंदा नीट इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेना था। मीटिंग में नीट इम्तिहान के बिला रुकावट और मुअस्सर इनेकाद से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर वसी तबादला ख्याल किया गया। आला तालीम के सेक्रेटरी, स्कूल तालीम के सेक्रेटरी, इम्तिहानात से मुतालिक कौमी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल और CBSE के चेयरपर्सन समेत कई आला हुक्काम मस्कूरा मीटिंग में शामिल हुए। केरलम में पीर के रोज नई UDF हुकूमत हलफ लेगी। इस दौरान नई हुकूमत में शामिल होने वाले अरकान पर भी तबादला ख्याल जारी है। पीर के रोज VD सतीशन केरलम के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। UDF के जराये ने खबर दी है कि वजीर आला के साथ पूरी काबीना हलफ लेगी। सालाना 3 रोजा तारीखी मोंगरी मेला, जिसे शिव पार्वती मेला भी कहा जाता है, उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आज से शुरू हो रहा है। इस तारीखी मेले के तई अकीदतमंदों के जोशो खरोश को देखते हुए उधमपुर जिला इंतजामिया ने मोंगरी के सर डाबर में मुनासिब इंतजाम किए हैं। मोंगरी मेला उधमपुर जिले का मशहूर मेला है जिसे पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ हर साल ज्येष्ठ माह के पहले दिन से लेकर तीसरे दिन तक, जो उमूमन मई और जून के दरमियान होता है, सरडाबर में मनाया जाता है, जो कि उधमपुर से 51 किलोमीटर दूर है और इसमें हजारों अफराद शिरकत करते हैं। भारत के महकमाए मौसमियात ने अंडमानों निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरलम, माहे और जनूबी कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई की है। मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। भारतीय वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में 11वें सैंडा आलमी कप में खवातीन के 52 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा हासिल किया। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा आलमी चैंपियन वियतनाम की थी फुओंग गागो को सीधे सेटों में शिकस्त दी। 12 मई को शुरू हुए इस मुकाबले में भारत का सोने का ये पहला तमगा है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन तमाम उर्दू अखबारों ने नई दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए खारिजा इजलास को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, ब्रिक्स ममालिक इस्तेहकाम और आलमी हुक्मरानी में इस्लाहात के लिए कदम उठाएं एस जयशंकर। मुल्क में SIR के तीसरे मरहले के ऐलान को भी अखबारों ने नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई

के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान के साथ साथ परिवार से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है ये दिवस। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के परिवारों में एकता, शिक्षा और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये दिन परिवारों से संबंधित चुनौतियों और उनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने का एक बड़ा मंच प्रदान करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस विशेष दिन की शुरुआत 1993 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व भर के परिवारों से जुड़े मुद्दों, उनके महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक करना है। ये दिन हमें अपने परिवारों के साथ समय बिताने और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रेरित करता है।

जी हाँ श्रोताओं, आज है 15 मई और आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिवस परिवारों के महत्व उन

आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर श्रोताओं, आपसे एक विशेष बात करने का भी दिन है। वो है फोन। मोबाइल आपको कनेक्ट फील कराता है काफी लोगों से, पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि डिसकनेक्ट कर देता है उन चार लोगों से जो आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और कड़वी सच्चाई है। हम बाहर की दुनिया में खुशियां ढूंढ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप रील में, बच्चे गेम में, पूरा परिवार फोन में व्यस्त रहता है। खाना खा लिया, ये बात भी हम व्हाट्सएप पर पूछते हैं, पास बैठ कर नहीं। हम कुछ दिन बाद मिलते हैं, तब भी स्टोरी डालने और स्टेटस चेक करने में बिजी रहते हैं। आंख मिलाकर बातें करना, हंसना हम जैसे भूल से गए हैं। श्रोताओं, हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना होगा। जब परिवार में शांति होगी, बच्चे संस्कारी होंगे, बुजुर्ग खुश होंगे, तो सड़कों पर क्राइम, हॉस्पिटल में बीमार

कम और कोर्ट में केस अपने आप कम हो जाएंगे। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस याद दिलाता है कि परिवार समाज की बुनियाद है और इस बुनियाद की सही देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है।

श्रोताओं, अब पढ़ते हैं आपके विचार जो आपने हमें फेसबुक के माध्यम से भेज दिया है, और हम पढ़ते हैं। ये पहला विचार भेजा है नीरा त्रिपाठी जी ने। इन्होंने लिखा है कि जिसके मन में किसी का भला करने का भाव है, भगवान उनके जीवन में किसी चीज़ की कमी आने नहीं देते। बहुत ही सुंदर विचार है। और ये दूसरा विचार लिखा है इन्होंने कि दूसरों का भला करने वाले लोग अक्सर तकलीफों से गुजरते हैं, क्योंकि फल देने वाला पेड़ ही सबसे ज़्यादा पत्थरों का सामना करता है। ये बात सच है। और बहुत ही सुंदर विचार लिखा है, ये विचार नैनी प्रयागराज श्याम जी ने भेजा है। ये लिखते हैं कि खुशनसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुशनसीब वो हैं जो अपने नसीब से खुश हैं। बहुत ही सुंदर विचार है। और अगला विचार है दिनेश यादव जी का। इन्होंने लिखा है कि उस लम्हों को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हों को कद्र करो कि वो जीने का अंदाज सिखाता है। बहुत ही सुंदर विचार आप सभी ने भेजा है, और ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार हमें लिखते रहिए।

अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का, अपने पूरे परिवार का पूरी तरीके से देखभाल और ध्यान रखें, खुशियां साथ बांटें एक दूसरे के साथ, और कुछ समय कुछ लम्हा एक दूसरे के साथ गुजारें, और दिन अच्छा, साल अच्छा, और आगे आने वाला दिन भी बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से हमें इस कार्यक्रम से विदा कीजिए। ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है प्रतिदिन सुबह 8:45 पर, कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। तो सुनते रहिए ये कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जीत फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल की आवाज में, समीर के बोल, संगीत नदीम श्रवण का, फिल्म का नाम साजन।

साजन फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है एसएम सभा का।
1: मिर्जापुर में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना के अंतर्गत स्वगणना दिनांक 7 मई 2026 से 21 मई 2026 के मध्य चलाया जा रहा है। आम जनता द्वारा खुद से स्वगणना कर लेने से आपका एवं प्रगणक को सुविधा एवं समय की होगी बचत। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने मिर्जापुर के सभी नागरिकों से अपील किया है कि जनगणना 2027 को सटीक और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वगणना पोर्टल की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए स्वगणना पोर्टल पर पंजीयन करते हुए अपने मकान की गणना की प्रविष्टि पूर्ण करें। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार।
2: स्वगणना कोई भी व्यक्ति जो हेड ऑफ फैमिली है, परिवार का मुखिया है, वो अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से sc.census.gov.in वेबसाइट पर अपना लॉगिन करते हुए अपने मकान के बारे में जो उसमें प्रश्न दिए गए उनके उनका चयन करते हुए अपने उसको स्वयं गणना कर सकता है। उसके बाद जो आईडी से जनरेट होगी वो SC ID को जब प्रगणक घर पर जाएंगे तो उनको आईडी बताएंगे तो प्रगणक पर उनका भरा हुआ फॉर्म खुल जाएगा, तो जिससे एक उस समय की बचत होगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
1: मिर्जापुर में समूह की महिलाओं को बागवानी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं को नर्सरी स्थापित करने के लिए 11 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इतनी ही धनराशि समूह की महिलाओं को स्वयं लगानी होगी, जिससे समूह की महिलाएं फल सब्जी और विभिन्न प्रजाति के फूलों की नर्सरी को तैयार कर आसानी से बेच सकेंगी। इस पहल से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी बल्कि महिलाएं अधिक रूप से मजबूत भी होंगी। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर बागवानी को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। अब ग्रामीणों को बागवानी के लिए फल फूल और सब्जी का पौधा खरीदने के लिए गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रत्येक ब्लॉक में समूह की महिलाओं के माध्यम से एक नर्सरी स्थापित कराई जाएगी। लगभग 17 बिस्वा में स्थापित की जाने वाली नर्सरी पर कुल 22 लाख रुपए खर्च होगा। इसमें 50% धनराशि उद्यान विभाग से समूह की महिलाओं को अनुदान मिलेगा। वहीं शेष 11 लाख रुपए समूह की महिलाओं को खर्च करना होगा। समूह की महिलाएं शासन से नर्सरी के लिए मिलने वाली धनराशि से नर्सरी में पौधों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट, नर्सरी वाली भूमि के चारों तरफ बाड़ बनवा सकेंगी। इसके अलावा नर्सरी के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं भी उसी पैसे से विकसित किया जाएगा। NRMM की इस योजना से समूह की महिलाओं को न केवल स्थायी रोजगार मिलेगा बल्कि वे आर्थिक रूप से मजबूत भी होंगी। मिर्जापुर के परिषदीय सहायता प्राप्त राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन मध्याह्न भोजन के बनाने के बाद परोसने से पहले उसकी जांच की जाएगी। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिलेगा। इसके लिए सभी प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी को निर्देशित किया गया है। भोजन बनने के बाद व परोसने से पहले प्रधानाध्यापक और MDM प्रभारी उस भोजन को चखेंगे, उसकी गुणवत्ता आदि की जाँच करेंगे। इसके बाद ही बच्चों को वह भोजन परोसा जाएगा। प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति जी ने गत दिनों मिर्जापुर में बनने वाले मंडली होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र पर कहा कि प्रदेश के प्रमुख तीर्थ पर्यटन वाले जनपदों में होमगार्ड विभाग का निरीक्षण गृह बनेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1962 के बाद पहली बार सबसे बड़ी होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार कटिबद्ध है तथा प्रदेश के हर थाना में होमगार्ड के लिए दो दो कक्ष का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के अतिरिक्त सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। होमगार्ड मंडली प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन एवं शिलान्यास उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों के लिए 3 लाख बीमा राशि को 5 लाख रुपया कर दिया है। गत दिनों लखनऊ में आयोजित सृजन अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति एवं अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम में मिर्जा

0: मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सिद्धि के शिक्षक दयानंद मिश्र को सम्मानित किया गया। उनकी साहित्यिक सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य संस्कृति सम्मान प्रदान किया गया। IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों से निस्तारण में माह अप्रैल में मिर्जापुर को प्रदेश में जारी रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत तौफिक ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर नीतेश सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी IGRS नीरज कुमार पाठक के नेतृत्व में जन सुनवाई समाधान प्रणाली IGRS के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण कराया जाता है। एकीकृत शिकायत के निवारण प्रणाली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा माह अप्रैल 2026 में जारी रैंकिंग में जनपद मिर्जापुर को उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
1: मिर्जापुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख है सावन कुमार श्रीवास्तव का।
2: सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगहबानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन CCTV कैमरों और ककरहवा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर स्थायी कैमरा और शौचालय के निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर SSB 43वीं बटालियन के कमांडेंट उज्जवल दत्ता भी मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसी के लिए चैलेंजिंग रही है। सीमा पर निगहबानी और अच्छी तरह से हो सके इसके लिए पहले फेज में सीमा के कुछ चिन्हित स्थानों पर 32 की संख्या में उच्च कोटि के CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय लोहिया कला भवन में शिक्षा मित्र सम्मान एवं बढ़े हुए मानदेय को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में किए गए कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक जय प्रताप सिंह, सदर विधायक श्याम धनी राही और शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के सजीव प्रसारण को सुनने और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए पूरे जिले के सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्रों ने शिरकत की और मुख्यमंत्री के उद्बोधन का तालियां बजाकर स्वागत किया। इस मौके पर सांकेतिक तौर पर 10 शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का चेक वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के बारे में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के करीब 1,40,000 शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से शिक्षा मित्र की देखरेख में ही चलाया जा रहा है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत दिनों से लंबित इनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है। भारत की 16वीं जनगणना को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के आवास और कार्यालय पर स्वगणना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सांसद ने अपने परिवार का पूरा विवरण भरकर जनगणना ID प्राप्त की और लोगों से मोबाइल के जरिए स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की अपील की। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेकिंग अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य नशे में वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाना था और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्राधिकारी यातायात सुजीत कुमार राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यातायात पुलिस की टीमों द्वारा जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां से नेपाल तक गाड़ियां जाती हैं, जिसको लेकर चेकिंग की जा रही है। अभियान के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जनपद सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी शिव शरणप्पा GN द्वारा ककरही टड़िया गायघाट सड़क का निरीक्षण किया गया। इस सड़क का निर्माण वर्ष 2023-24 में हुआ था। निरीक्षण के दौरान जगह जगह सड़क में पैच पाया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैच की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क मरम्मत कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराई जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कमल किशोर, संबंधित विभागों के अधिकारी और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ में अपना दल के विधायक विनय वर्मा की अगुवाई में महिला आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। शोहरतगढ़ की टीचर्स कॉलोनी से जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर पंचायत कार्यालय होते हुए शोहरतगढ़ के प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दोबारा टीचर्स कॉलोनी में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सदन में महिलाओं के 33% आरक्षण बिल पारित न होने से आक्रोशित महिलाओं ने नारेबाजी की। इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए 33% आरक्षण बिल लेकर आए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में मत डालकर इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं के सम्मान में लड़ेंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार हुआ। सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

0: बार फिर से मजबूती से खड़े होकर अपनी सलाहियत और अपनी हिम्मत का मुताला किया, अपने को मजबूती दी और फिर उठ खड़ी हुई। अब की बार रब्बो कुछ ज्यादा ही मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अब उसको चलना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। रब्बो अपने अमली इरादे के साथ आगे बढ़ रही थी, रास्ते खुलते गए, वो आगे बढ़ती गई, क्योंकि अब उसने किसी की परवाह नहीं की थी, बस वो थी और उसका मकसद। वो अपनी जिंदगी में कुछ खास और बेहतर करना चाहती थी, जिससे आने वाली नस्लें उसके तजुर्बात से फैज हासिल कर सकें। धीरे धीरे अदबी दुनिया में उसकी खास पहचान बन गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वाकई यही रब्बो के साथ भी हुआ। ये एक सच्ची हकीकत है कि जब तक आप दूसरों से मदद चाहेंगे या दूसरों की परवाह करेंगे, तब तक समाज के लोग आपको जीने नहीं देंगे। लेकिन जब अल्लाह और उसके इंसाफ का दामन थामेंगे, रास्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे। आज रब्बो आपा बुलंद और अजीम शख्सियत के मालिक हैं, मगर माजी की तलखियों ने कभी भी रब्बो को तन्हा नहीं छोड़ा। हालांकि रब्बो अपने माजी को भूल जाना चाहती थी। वो तल्ख हकीकतें जिन्होंने इनको मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। रब्बो इन हालात से बहुत दूर जाना चाहती थी, मगर माजी ने इन्हें अपने हिसार में जकड़ रखा था। आज रब्बो तन्हा जरूर थी, मगर इनका कलम तेजी से रवा था। इन्होंने कई किताबें भी लिखी और शाया होकर मंजर आम पर भी आ गईं। रब्बो ने दीगर दूसरे कामों में भी अपनी सलाहियत का सबूत देकर अपनी खास पहचान बनाई, मगर लफ्ज गरीब की लड़की उनको परेशान किए थे। आज उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, मगर उसे अपनी जैसी समाज की लड़कियों के लिए सामने आना था। जो गरीब की लड़कियों को किसी लायक नहीं समझते, उसे आगे चलना था, आने वाली नस्लों के लिए एक नजीर बनना था। आज वालदेन की कमी उसे हर मौके पर अकेलेपन का एहसास दिला रही थी। जब रब्बो को कोई किताब शाया होती या अदबी अवार्ड उसको दिया जाता, तो उस वक्त वो बहुत परेशान और रंजीदा हो जाती, इस ख्याल से कि मैं अपने वालदेन को कैसे बताऊं कि अब आपकी बेटी गरीब नहीं रही। आज रब्बो की कामयाबी पर वही खानदान वाले उस पर फख्र करते हैं, मगर वो माजी की तलखियों को कभी नहीं भूल पाई। मगर फिर भी तुझको चलना होगा, और वो चलती रही, आगे बढ़ती रही, बेखौफ खतर संगलाख वादियों में गिरते हुए, पत्थरों की चट्टानों से चोट खाते हुए, अपनी तन्हाई के साथ रब्बो को आगे बढ़ना होगा। यही जिंदगी का सच है, और यही तलखी आज भी उसकी कामयाबी में पेश पेश है।
1: सामईन, अभी आप तुझको चलना होगा उन्वान से समात फरमा रहे थे खूबसूरत अफसाना। अफसाना निगार थी मोहतरमा सिफतुज़्ज़हरा ज़ैदी। सामईन, अब माहौल को तब्दील करते हैं, आपको लेकर चलते हैं शेर व अदब की महफिल में, जहां कलाम शायर के तहत अपने ताज़ा कलाम के साथ हाजिर हैं शायरा मोहतरमा तरन्नुम नाज फतेहपुरी।
2: गजल का मतला पेश खिदमत है। अपना अपनों से हाय

उसकी फितना गरी न जाएगी, उसकी फितना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार हैं कौशिकी राय। लीजिए सुनिए इनके स्वर में ये भजन।

की राय के गाए भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
1: इंडिया और यूए की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में अब पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकर योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को 0 शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: मेडिकल नीट यूजी परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को आयोजित होगी। सरकार की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इसकी घोषणा की थी। इससे पहले कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं। भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11

0: वे सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग नांगानुगु को हराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। लखनऊ में ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से मात दी। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

0: और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

इतना अकेला हो गया है आज का इंसान कि अपनों को ही अपने घर में ढूंढता है। ऊपर से तो हम सब कनेक्टेड हैं, पर दिलों के बीच की दूरियां मीलों सी हो गई हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ प्रयागराज और इस सफ़र में आपके साथ मैं हूं दीप्ति मिश्रा। दोस्तों, आज की तारीख बहुत ख़ास है। क्यों? क्योंकि आज है 15 मई, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, यानी इंटरनेशनल फैमिली डे। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस परिवार के साथ हमने बोलना सीखा, चलना सीखा, आज उसी परिवार के साथ दो पल बैठकर बात करने के लिए हमें किसी स्पेशल डे का इंतज़ार करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आज हमने आलीशान घर तो बना लिए, पर बच्चों के साथ रेत के घर बनाने की फुर्सत नहीं रही। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी तरह से देखें तो दुनिया तेज़ी से बदल रही है। घर बड़े हो गए हैं लेकिन परिवार छोटे, सुविधाएं बढ़ी हैं लेकिन साथ बैठकर मुस्कुराने के मौके कम हुए हैं। मोबाइल के स्क्रीन पर उंगलियां लगातार चलती रहती हैं लेकिन अपनों का हाथ थामने का समय जैसे कहीं पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे दौर में कहा जा सकता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस केवल कैलेंडर में दर्ज एक तारीख नहीं, बल्कि ये याद दिलाने का अवसर भी है कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन, पद, प्रसिद्धि नहीं बल्कि परिवार है।

0: वाकई में रिश्तों की वो गर्माहट जिसे हम अक्सर पीछे छोड़ाते हैं। सच कहें तो हमने बैंक अकाउंट में कई शून्य तो जोड़ लिए हैं, पर अपनों के लिए बिना खुद शून्य होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे हज़ारों फ्रेंड्स हैं और फॉलोअर्स हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, पर क्या ये जानते हैं कि पड़ोस वाले कमरे में बैठा हमारा अपना कोई किस दौर से गुजर रहा है? परिवार शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसका संसार बहुत विशाल। यही वो जगह हैं जहां हम बोलना और चलना सीखने के साथ गिरकर संभलना भी सीखते हैं, और सबसे बढ़कर प्रेम करना सीखते हैं। माँ की ममता, पिता का संबल, भाई बहनों की नोकझोंक, दादी नानी की कहानियां और घर के आंगन में गूंजती यही वो अनमोल धरोहरें हैं जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाती हैं। इसी संबंध में हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत शुक्ला, जो कि एक काउंसलर हैं, अपने विचार व्यक्त करते हुए।
1: परिवार शब्द का अर्थ ही होता है भावनात्मक सुरक्षात्मक सहयोग की गारंटी। शिक्षा और रोजगार के पलायन के कारण एकाकी परिवार ने जन्म लिया। एकाकी परिवार ने निश्चित रूप से हमें स्वच्छता और स्वतंत्रता प्रदान किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम असुरक्षा की भावना से ग्रसित होते हैं। एकाकी परिवार का सबसे अधिक दुष्परिणाम हमें छोटे बच्चों को देखने को मिलता है, जिन्हें बाल्यकाल से ही हॉस्टल या क्रेच में डाल दिया जाता है, जिसमें भावनात्मक प्रेम की कमी पाई जाती है।
0: कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब परिवार के रूप में सब कुछ था, और आज अगर सब कुछ होकर भी परिवार का साथ नहीं तो यकीन मानिए कुछ भी नहीं है। कितनी सही बात कही हेमंत शुक्ला जी ने।

करते हैं। हम सभी जानते हैं आज के समय में परिवार की परिभाषा बदल रही है। संयुक्त परिवार एकल परिवारों में सिमट गए हैं। नौकरी, शिक्षा और महत्वाकांक्षाओं ने लोगों को शहरों और देशों की दूरियों में बांट दिया है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी कई बार लोग भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। संवाद

कम हुआ है, संवेदनाएं संक्षिप्त हुई हैं और रिश्तों में औपचारिकता बढ़ी है। ऐसे में ये दिवस हमें सोचने पर मजबूर करता है, यदि पीछे अपने लोगों का साथ छूटता जा रहा है तो क्या आगे बढ़ रहे हैं। परिवार केवल सुख के दिनों का साथी नहीं होता दोस्तों, बल्कि कठिन समय में वही सबसे मजबूत स्तंभ बनकर खड़ा रहता है। जब दुनिया सवाल करती है तब परिवार भरोसा देता है, जब मन टूटता है तब परिवार संबल देता है, जब सफलता मिलती है तब सबसे पहले आंखों में चमक परिवार की ही दिखती है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में यही रिश्ता सबसे स्थायी और सबसे सच्चा होता है। दोस्तों अजीब विडंबना है ना, हम मून और मार्स तक तो पहुंच चुके हैं पर दूसरे शहर में बैठे अपने सगे भाई तक पहुंचने का रास्ता भूल गए हैं। हम ब्रांडेड और महंगी चीज़ों के पीछे अपनी तन्हाई को छिपा कर बैठे हैं। याद है वो दिन जब घर से निकलते वक्त माँ कितनी बलाएं लेती थीं और न जाने कितनी दुआओं के साथ हमें विदा करती थीं, पर आज हम अक्सर ब्लड प्रेशर की दवाएं साथ लेकर चलते हैं।

परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं, वो सेविंग्स है, बैंक वाली नहीं बल्कि यादों और रिश्तों वाली। चलिए आज इस डिजिटल शोर को उस खामोश सन्नाटे से भरते हैं जो हमारे और आपके परिवार के बीच आ गया है। ये जो दुनिया हमने खुद बनाई।

0: है, ये जिंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है पर ठहराव कहीं खो गया है। हमने अपनों के साथ बिताने वाले उन अनमोल पलों को कहीं छोड़ दिया है। इसी संबंध में सुनते हैं क्या कहती हैं एक गृहिणी कुमुद तिवारी।
1: भारतीय संस्कृति में परिवार केवल सामाजिक इकाई नहीं बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला है। यहाँ बच्चों को केवल शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। बड़ों का सम्मान, छोटों से स्नेह, त्याग, सहयोग, सहिष्णुता और अपनत्व, यही मूल्य समाज को सभ्य और मजबूत बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का संदेश बहुत सरल है। रिश्तों को समय दीजिए, परिवार के साथ बैठिए, बातें कीजिए, हालचाल पूछिए, उनकी खुशियों और परेशानियों में सहभागी बनिए, क्योंकि रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें प्रेम, धैर्य और समय की जरूरत होती है।
0: कितने सुंदर शब्द थे ये। शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हकीकत है, वो सच्चाई जो हम अक्सर भागदौड़ में कहीं भूल जाते हैं। वाकई मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए तो हम भागते हैं, लेकिन क्या कभी रिश्तों की बैटरी को समय और प्यार से चार्ज किया है? आज दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटें तो परिवार के साथ बैठकर उस पाठशाला का एक बार फिर से हिस्सा बने, अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सुकून घर की चौखट के अंदर परिवार के साथ है वो कहीं और नहीं।

चलते चलते बस इतना कहेंगे कि आज का दिन स्टेटस लगाने भर का नहीं है, बल्कि अपनों का हाथ थामने का है। जिसके पास परिवार का साथ है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि घर ईंट पत्थरों से बनता है लेकिन परिवार प्रेम विश्वास और अपनत्व से। इस भागती दौड़ती दुनिया में थोड़ी देर ठहर कर उन चेहरों को देख लें जिनकी मुस्कान में हमारी पूरी दुनिया बसती है। अंततः जीवन की सबसे खूबसूरत मंजिल कोई और नहीं बल्कि आपका अपना परिवार है। इसी के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ, और दीजिए हमें इजाजत। अपनी दोस्त दीप्ति मिश्रा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं विमलेश।
1: और मैं अजीत। नमस्कार। राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया और स्वप्निल काटकर जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: दुनिया में सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम यही प्रयास करें कि हमारे ऊपर से किसी का भरोसा ना टूटे।
1: बहुत अच्छा विचार। जी हाँ श्रोताओ, दुनिया भरोसे पर ही तो कायम है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारे प्रति किसी का विश्वास न टूटे, क्योंकि टूट जाए तो मरम्मत में मुश्किल होती है।
2: जी हाँ, पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं,
1: दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा,
2: गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण,
1: और महाराष्ट्र से मिस्टर पटेल, और
2: ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी।
1: संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हमने विशेष रूप से ये चर्चा की कि गर्मी के मौसम में हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। आशा है कि श्रोताओं को जरूर पसंद भी आई होगी। आज इस सप्ताह के हमारे प्रसारण का आखिरी दिन है, तो आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
2: जी अजीत जी, देखिए हमारा प्रसारण शैक्षिक है और विशेषकर स्कूली बच्चों के लिए है। तो मुझे लगता है कि जब तक हम अपने प्रसारण में बच्चों की बातें न करें, तब तक बात अधूरी ही रहेगी।
1: बिल्कुल।
2: तो क्यों न गर्मी के मौसम को बच्चों की गर्मी की छुट्टियों से जोड़कर देखा जाए।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों के लिए भी और उनके अभिभावकों के लिए भी।
2: जी अजीत जी, गर्मियों की छुट्टियाँ बच्चों के लिए सिर्फ आराम का समय नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और नए अनुभव लेने का सुनहरा अवसर देती हैं। और यदि इन छुट्टियों को सही दिशा दे दी जाए, तो ये छुट्टियाँ जीवन भर काम आने वाली आदतें सिखा सकती हैं।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चे और उनके अभिभावक गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग कैसे करें। तो विमलेश जी, चलिए आपसे शुरू करते हैं।
2: जी अजीत जी, देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पढ़ाई से जुड़ाव हमेशा बनाए रखें।
1: जी, लेकिन विमलेश जी, क्या पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ी जाएं?
2: जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ या कुछ और कहानियाँ। कहानियाँ भाषा के कौशल को बढ़ाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती हैं।
1: जी, और हाँ श्रोताओं, आपको विशेष सूचना दे दें कि यदि आपको पाठ्य पुस्तकों को सुनना है तो आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं। आपको वहां NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ऑडियो संस्करण या ऑडियो बुक मिल जाएगा।
2: आप इस चैनल पर हमारे शैक्षिक कार्यक्रम भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। और हाँ, यदि आप पाठ्य पुस्तक या कहानी पढ़ें तो बोल बोलकर यानी वाचन के साथ पढ़ें,
1: क्योंकि इससे धारा प्रवाह पढ़ने के कौशल का भी विकास होगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि छुट्टियों के दिनों में अभिभावक बच्चों को कोई ना कोई नया हुनर जरूर सिखाएं, जैसे चित्रकला, क्राफ्ट बनाना या फिर कोई वाद्य यंत्र सीखना।
2: तो ये तो बात हुई पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक गतिविधि भी जरूर करें। सुबह या शाम जरूर कोई खेल खेलें। और भी बहुत कुछ गर्मी की छुट्टियों में किया जा सकता है।
1: जैसे
2: प्रकृति से जुड़ना, यानी कि पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, गर्मी के मौसम में पक्षियों को दाना पानी देना इत्यादि।
1: जी विमलेश जी, मुझे एक और बात याद आ गई। यदि इन दिनों में वे अपनी चीजों को ठीक से रखने का अभ्यास करें तो छुट्टियाँ खत्म होने तक ये उनकी आदत बन जाएगी।
2: इन दिनों में बच्चे कुछ रचनात्मक गतिविधियाँ भी कर सकते हैं,
1: जैसे
2: कि कहानी लिखना, डायरी लिखना, कविता लिखना इत्यादि। और हाँ, इन दिनों में वे माता पिता के कामों में भी हाथ बटा सकते हैं।
1: और इन छुट्टियों में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, इन छुट्टियों में अपने बुजुर्गों जैसे नाना नानी, दादा दादी से भी मिलने का थोड़ा समय जरूर निकालें।
2: तो श्रोताओ, आशा है कि आपको हमारे ये ग्रीष्म रेडियो विशेषांक पसंद आए होंगे। अब आपके लिए एक प्रश्न।
1: तो प्रश्न है कि बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों में और क्या क्या कर सकते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर

0: भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: थाथू और मैं। कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची और उसके दादाजी के बीच स्नेह और प्रेम के रिश्ते को उजागर किया गया है और इसके द्वारा बच्चों को पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। विशेष रूप से ये संदेश दिया गया है कि बच्चे घर के बड़े बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर का भाव रखें।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम थाथू और मैं।
2: मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं हॉर्न बजाती हूँ, पम पम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं,
3: देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें।
2: थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियां थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियां खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ, उनके साथ में कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। थाथू, ये कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? वे कहते हैं,
3: अब सो जाओ।
2: उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम थाथू और मैं, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह की वीरता और अपार शौर्य के बारे में बताया गया है कि कैसे भारत चीन के युद्ध के दौरान उन्होंने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
2: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
1: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
2: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
3: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
4: हाँ।
2: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
1: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
2: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला

0: बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
0: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सुबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सुबेदार साहब।
2: बोले सोनिहा।
3: सत श्री अकाल।
1: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: भतीजा सिंह, और चाय बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के तहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल का।
0: बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
3: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थीं और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर

0: ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, पेश कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज की महफिल सजी है मुस्कानों की, अदाओं की मलिका के अफसानों की, जिसकी एक मुस्कान पर दिल धड़क उठे, जिसके ठुमकों से पर्दे भी झूम उठे। जन्मदिन मुबारक उस सितारे को जिसे दुनिया जानती है माधुरी दीक्षित के नाम से। जी हाँ, आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम केंद्रित है माधुरी दीक्षित पर। कार्यक्रम में मैं हूँ।

इस कार्यक्रम में होंगी माधुरी दीक्षित के बारे में कुछ बातें और उन पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमे आपको सुनवा रहे हैं।

15 मई 1967 को मुंबई में मराठी परिवार में माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ। डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ने के बाद माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें नृत्य में गहरी रुचि थी, जिसके लिए माधुरी ने 8 वर्ष तक कथक का प्रशिक्षण लिया। पिता शंकर दीक्षित और माता स्नेहलता दीक्षित की लाडली माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में ऐसा मुकाम तय किया है

80 के दशक में माधुरी बनकर आई एक नई रोशनी, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में थी चांदनी। शुरुआत हुई 1984 में आई राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म अबूद से। रफ्ता रफ्ता अदाकारी का ये सिलसिला चलने का, मगर पहचान अभी बाकी थी। किस्मत की किताब में एक सुनहरी पंक्ति अभी लिखनी बाकी थी। और फिर आई तेजाब और एक दो तीन का जादू, ऐसा छाया हर दिल ने बस माधुरी को अपना सपना बताया। अदा

दिल साजन बेटा खलनायक की कहानी बनी। हर किरदार में एक नई माधुरी की निशानी बनी। कभी मासूम प्रेमिका कभी हिम्मत की पहचान बनी। हर अंदाज में बसता था चाहने वालों का अरमान। हम आपके हैं कौन ने घर घर में उत्सव सजाया। फिर दिल तो पागल है में मोहब्बत का रंग बिखेरा। हर धड़कन ने उनके नाम का गीत ही

दिखाया, दर्द को भी मुस्कुराकर निभाने का हुनर सिखाया। डांस हो या एक्टिंग, हर मंच पर रानी बनी। सिनेमा की दुनिया में अपनी अलग कहानी।

माधुरी दीक्षित को साल 1991 में फिल्म दिल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 1993 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एक बार फिर से उन्हें मिला। फिल्म का नाम था बेटा। और फिर आया साल 1995। इस साल भी माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला और फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। साल 1998 में भी माधुरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म का नाम था दिल तो पागल है, जिसका गाना अभी आप सुन रहे थे। और फिर आया साल 2003। 2003 में भी माधुरी दीक्षित को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म का नाम था देवदास।

साल 1999 में माधुरी दीक्षित ने डॉक्टर श्रीराम माधव नेनी से विवाह किया। साथ ही आपको बता

0: अभिनय, नृत्य और सादगी का ऐसा संगम मिला, माधुरी जैसा सितारा सदियों में एक बार खिला। तो आइए आज दुआओं से उनका दामन भरते, हर खुशी को उनके कदमों में निछावर कर दें। जन्मदिन मुबारक हो मुस्कान की उस मलिका को, जिसने अपने हुनर से रोशन किया हर दिल और हर सिनेमा को। आज के एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने आपको माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किए हुए जिन फिल्मों के गीत सुनवाए उनके नाम हैं। पहला गीत हम आपके हैं, कौन फिल्म से? लता मंगेशकर की। कार्यक्रम में दूसरा गीत हमने आपको सुनवाया था साजन फिल्म से, अलका याग्निक की आवाज। एक ही कलाकार कार्यक्रम का तीसरा गीत हमने लिया था आजा नच ले फिल्म से, आवाज थी राहत फतेह अली खान की। उसके बाद हमने आपको सुनाया था दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल ट्रैक, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। और ये गाना जो आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, इसे हमने लिया फिल्म पुकार से। गाने में आवाजें शंकर महादेवन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। तो ये था आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम, जो कि केंद्रित था धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित पर। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800492 6250। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार राय, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है युवाओं का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस।
1: हेलो, नमस्कार, नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? बिल्कुल भले चंगे ना, एकदम एक नंबर। और अगर नहीं है तो मैं आपको बना दूंगी, क्योंकि अब शुरू हो गया है यूथ एक्सप्रेस। जी हाँ, हर शुक्रवार को जब हम आपसे मिलने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाय, मतलब आज तो ज़िंदगी हमें दोबारा मिल गई है। और कहते भी हैं हंसना मुस्कुराना है खुशियों का खजाना, बाकी सब मोह माया और यही है सब कुछ छोड़कर जाना। तो आप एग्री करते हैं ना अपनी माही की बात से? वाह वाह वाह, मतलब वाह माही शबास, कितनी समझदार हो गई हूँ ना मैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगी हूँ। वैसे जीवन में सबसे पहले ना प्यारा सा, जो आपको ऐसा लगता है कि अगर जीवन में सबसे पहले प्यारा या प्यारी, मासूम, समझदार, बेबाग और शांत हमें खुद के लिए होना चाहिए।

जरूरी है कि हम खुद से प्यार करें, जरूरी है कि हम खुद को आईने में संवारे, और जब कभी किसी दोस्त, परिवार और अपनेपन की जरूरत हो तो सबसे पहले आपके हाथ शाबाशी के लिए खुद आपके लिए उठे। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, इसी को बोलते हैं सेल्फ लव। व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट लुकिंग बेटर एंड यू अट्रैक्ट बेटर। इट ऑल स्टार्ट्स विथ यू, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ इज विथ योर सेल्फ। इसलिए सबसे पहले खुद को प्यार करें, और हाँ, जब भी एक बार खुद को आईने में देखें तो प्यारा सा आई लव यू खुद को बोलना भी बनता है। क्योंकि पता है जिंदगी में क्या होता है ना, बहुत बार, मुझे लगता है बहुत बार नहीं, हर दिन ऐसे फेज हमारे लाइफ में आते हैं जब हमें लगता है सब कुछ बहुत मुश्किल है, मैं ये कैसे कर पाऊंगी, ये कैसे होगा, अरे आज तो ये स्ट्रेस है, आज ये टेंशन है, आज बहुत पैनिक डे है। और उसके बाद भी जब हम अपने दिल पे, अपने मन पे थोड़ा सा हाथ ऐसे थपथपा के कहते हैं ना, ऑल इज वेल, सब हो जाएगा, और वही विश्वास आपको आगे बढ़ने की उम्मीद देता है। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमें उम्मीद मिलती रहे और हम जिंदगी में हौले हौले आगे बढ़ते रहें। और ध्यान रखें, शिकायतें और उम्मीद हमेशा खुद से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शिकायत खुद से करेंगे तो आप कुछ बेहतर करेंगे, और अगर आप कुछ उम्मीद खुद से करेंगे और अनलकली अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास भी आप खुद से ही करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, शिकायतें और उम्मीदें खुद से करें, अच्छे काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरे पास आपके लिए बहुत सारी बातें हैं। आज तो आज का दिन बहुत खास है भाई, आज खास क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि आज आपके साथ माही जुड़ गई है। तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ और अब हम लेते एक छोटा सा यू टर्न।

वैसे एक बात तो कह लो, ये जो एम नाम की लड़कियाँ होती है ना, ये बहुत प्यारी होती हैं। हाय, आप क्या सोच रहे हो, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मतलब मैं आपकी दोस्त माही तो प्यारी हूँ ही, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में जिनका नाम, जिनकी तस्वीरें, जिनकी आवाज़, जिनकी डायलॉग, जिनके डांस और जिनकी चीज़ों को देखकर, जिनके हम कह सकते हैं उनकी कलाकारी का जो हुनर होता है ना, उनको देखकर जब हमारा बीपी, हमारा शुगर हाई नहीं होता, फिर भी हमारा दिल धक धक करता है। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आज बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की। आज उनका बर्थडे है, तो सबसे पहले तो उन्हें विश करते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और उनके साथ ही हमारे सभी लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, आज उनका बर्थडे है, मैं उनको दिल से दुआ देती हूँ कि आप सबको भी हैप्पी बर्थडे, भगवान करे आपका हर दिन अच्छा हो, आप मुस्कुराते रहिए, और ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम तो ज़रूर करिए कि जब आपको आपको लोग मिले ना जो आपको पसंद करते हैं, और आजू बाजू वाले कुछ ऐसे जो थोड़ा कम भी पसंद करते हैं, तो एक बार देखने के बाद तो मतलब दिल में धक धक होनी चाहिए। वैसे माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में कमाल का काम किया है, उनकी जितनी ही तारीफ की जाए कम है भाई, बहुत कम है। और उनके डायलॉग्स जब वो बोलती है, किसी को इतना भी मत चाहो कि खुद को चाहना भूल जाओ, प्यार में खुद की पहचान ज़रूरी होती है। वहीं उन्होंने कहा है कि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन दिल वाले सब नहीं होते। तो भाई अगर खूबसूरती को मुस्कान मिल जाए, तो शायद उसका नाम माधुरी दीक्षित होगा। उनकी आंखों में एक ऐसा जादू है जो कई बार हम देखते हैं ना, तो दिल बस वहीं ठहर जाता है। वो जब मुस्कुराती हैं तो लगता है जैसे बरसों से उदास दिल को अचानक हंसने की कोई वजह मिल गई है। उनकी अदाओं में हाय क्या नज़ाकत है, आवाज़ में मिठास और चेहरे पर ऐसा नूर कि वो आज भी लाखों दिलों की धड़कन बढ़ा देती है। कुछ लोग चांद जैसे होते हैं, दूर होके भी दिल के बेहद करीब होते हैं, और माधुरी दीक्षित भी उन्हीं खूबसूरत एहसासों में से एक है। तो हम तो ये कहेंगे कि ये हमारा जो बॉलीवुड है ना, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें ऐसे कलाकारों का होना हमारे पास कोहिनूर हीरे की तरह होना है। और मैं बता दूं कि हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास, आजा नचले, तेजाब जैसी उन्होंने पिक्चरों में काम किया, और उनकी अदाकारी का तो हर कोई दीवाना है। तो आइए इस दीवाने के जादूपन को थोड़ा सा और घोलते हैं, और उनके इस प्यार भरी अदाओं के नशे में थोड़ा सा और डूब जाते हैं।

वैसे एक बात मतलब कह सकते हैं ना कि पूरी तरह, जैसे कहते हैं 24 कैरेट की तरह शुद्ध है, कि समय के साथ हम बड़े तो हो जाते हैं लेकिन शायद सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि जिन लोगों ने हमें चलना सिखाया उन्हीं के साथ बैठने का हम समय नहीं निकाल पाते। एक दिन घर वही रहता है, दीवारें वही रहती हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं और तब एहसास होता है कि परिवार की क्या कीमत थी। परिवार दिवस एक तारीख नहीं बल्कि ये रिश्तों में दिल को गले से लगाने का, मन को मन से जोड़ने का और एहसासों का साझा करने का एक सुंदर दिन है जो बिना किसी स्वार्थ के हर हाल में हमारा साथ निभाते हैं। अगर आपके घर में आज भी आपको माँ की डांट पड़ती है, पिता को आपकी चिंता होती है और अपनों की हंसी गूंजती है, तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो आज है भाई फैमिली डे और अभी हाल में हमने मदर्स डे भी एंजॉय किया है, तो मैं तो मेरी मदर के लिए यही कहती हूँ कि मेरा हृदय सदा तुम्हें समर्पित रहेगा, तुम मेरा अनंत नहीं अनंतम प्रेम हो माताश्री। तो ये जो परिवार है ना, ये आपका सबसे पहला दोस्त है जिसे आप बेझिझक बेहिचक अपनी सारी बातें कह सकते हैं। और आज जब मैं शो करने आ रही थी तो मेरी दीदी ने भी मुझसे यही बोला कि आज तुम फैमिली डे के बारे में ज़रूर बात करना, क्योंकि हम चाहे अलग अलग टॉपिक क्यों ना लेकर आए, बहुत सारी वैरायटी क्यों ना लेकर आए, लेकिन जब हम परिवार से कनेक्ट होते हैं ना तो हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारा जो यूथ एक्सप्रेस शो है ये भी तो हमारा एक फैमिली है जहां हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ों का आपसे साझा करते हैं और आपके प्यारे प्यारे विचार और फीडबैक सुनना पसंद करते हैं। तो ये तो हुई थोड़ी सी मतलब भारी भरकम ज्ञान वाली बात। अब ज़रा हम अपने ट्रैक पर वापस आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बर्ड जोन और सेल्फी पॉइंट से सजेगा मेजा का इको पार्क। प्रयागराज मेजा स्थित कृष्ण मृग आरक्षित क्षेत्र में विकसित किए जा रहे इको पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग 70% पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत प्रवेश द्वार, इंटरलॉकिंग पार्किंग, आकर्षक साइनेज, बैठने की व्यवस्था, मॉडर्न टॉयलेट, कैंटीन ब्लॉक, वॉचटॉवर, चिल्ड्रन एक्टिविटी एरिया, गार्डन लाइट, सेल्फी पॉइंट और गजीबू हट जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। तो ये तो बात हुई उनकी जो शहर के अंदर घूमने की तैयारी में है। बट अगर आप भी प्रयागराज से दिल्ली के बीच यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, हे हाँ दिल वालों की दिल्ली, तो अगर आप वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, आपने सोच लिया है कि भाई छुट्टियाँ होने वाली हैं और इस बार तो अपनी छुट्टी मतलब वाह दिल्ली में ही गुजरेगी, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको रिग्रेट के कारण कंफर्म टिकट नहीं मिलने से अगर परेशानी है तो ज़रा रुक जाइए भाई, अगर मिस माही आई है तो फिर आपकी परेशानी को तो मैं यूँ चुटकी में दूर कर दूंगी। तो यह खबर आपके लिए और भी राहत भरी है। उत्तर मध्य रेलवे ने यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज एक्सप्रेस की क्लोन के रूप में प्रयागराज दादरी स्पेशल ट्रेन का संचालन अब प्रयागराज जंक्शन से रात में 9 बजे से करने का निर्णय लिया है। कल पहला ट्रायल हो भी गया है और 17 मई से आप आराम से अपनी आवाजाही को एक सुंदर रास्ता दे सकते हैं। तो सारी की सारी परेशानियों को करिए टाटा बाय बाय और इस बार समर वेकेशन का उठाइए खूब मजे से आनंद।

क्या पता कब कहाँ क्या आखिरी हो, जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हाँ जी, तो कहा गया एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी कहावत है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। वैसे भाई पानी वानी बचा के रखिए, अभी हाल में आंधी आई थी तो बहुत दिक्कत हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि धीमे धीमे गर्मी का मौसम भी है, तो हम उस मौसम के करीब भी आ रहे हैं जब रोज़ आंधी आता है, कभी लाइट कट जाती है, कभी पानी की प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ज़िंदगी में होती रहती है, इसके लिए बहुत हो हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरी है कि हम खुद की सेफ्टी के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ छोटे छोटे इफ़र्ट्स, कुछ छोटे छोटे प्रयास और कुछ अच्छी चीज़ें हमेशा करते रहें। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी बात की ना कि थोड़ा सा मेहनत जो है वो दिल लगा कर करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि माही किस बारे में बात कर रही है, तो मैं बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो। मैं आपको बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 जिले के 79 केंद्रों पर 24 मई को आयोजित की जाएगी। तो थोड़ा और जोर लगा के मेहनत करिए, क्या पता ये आखिरी साल हो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्या पता ये आखिरी साल हो जब आपको ऐसा लगता है ना कि चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई हैं और हाथों से निकल रही हैं। जब भी वॉट एवर इन लाइफ एंड वॉट एवर इन विच फील्ड यू ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर, तो हो सकता है कि इस साल हो जाए ना, जहाँ से आपने एक यू टर्न लिया था, हो सकता है कि बस उसके अगले स्टेप पर सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही हो। ऐसा होता है जब एक राहगीर किसी मंजिल की तलाश करते करते आगे बढ़ता है, तो कभी कभी वो खुद से कहता है कि एक मैं हूँ जो एक मैं बन जाना चाहता हूँ, और एक फिलहाल मैं हूँ जो सब कुछ संभाल कर भी थकने लगा हूँ। और पता है इंसान की बेसिक नीड क्या है? मतलब मुझे लगता है कि ज़िंदगी में इतनी ज़रूरतें तो होनी चाहिए हमारे पास, और हमारे पास उन चीज़ों को पूरा करने के लिए इतने सोर्सेस तो होनी चाहिए कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एंड वन मोर थिंग, कि ज़िंदगी में इतनी ख्वाहिशें भी होनी चाहिए जिनको सोच कर तो कम से कम खुशी मिले कि हाँ ये तो अच्छा है। जैसे मैं कल रात में ही सपने में सोच रही थी कि हाय मैं मॉरिशस गई हूँ घूमने। तो सोचना चाहिए, जिन भी चीज़ों को सोचकर आपको खुशी मिलती है उनको बेहिजक सोचिए। और वैसे भी यार सपने देखने में कौन से पैसे लगते हैं ना, और जब हम सपने देखेंगे नहीं तो उन्हें हम पूरा कैसे करेंगे। इसलिए ज़िंदगी में वो सब कुछ करिए जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। बस ध्यान रखें कि

सब कुछ के चक्कर में हमसे कभी कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे किसी का दिल दुख जाए, जिससे कभी कोई ये कह दे कि ये तुमने बुरा काम किया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी ज़िंदगी को खुल कर जिएं, और ज़िंदगी जब मिली है जीने के लिए ना, तो उसका लुत्फ़ उठाएं। और जब कभी ऐसा लगे कि आप परेशान हैं, हताश हैं, तो ध्यान रखें कि हर शुक्रवार को 11:30 बजे हमारा यूथ एक्सप्रेस शो आता है, और जब आप उसे सुन लेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में, आपके शरीर में मतलब ऊर्जा का जो करंट लगेगा, जो संचार होगा, उसे एक बार आप फिर से रिस्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि कोई आलीशान बंगले में भी रहकर खुश नहीं है, लेकिन कोई आसमान के नीचे भी चैन की नींद सोता है। और ममता कालिया जी ने बहुत प्यारी लाइनें बोली थी कि जब तक जीती हूँ इलाहाबाद हुई जाती हूँ, जब तक जीती हूँ इलाहाबाद हुई जाती हूँ, जब नहीं रहूँगी इलाहाबाद हो जाऊँगी मैं।

बात समझ में आई ना कि चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाइए, लेकिन दिल की बच्ची को थोड़ी थोड़ी शरारत करते रहने देना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं सब कुछ ठीक कैसे करूँ। टेंशन नहीं लेने का यार, माही है ना, और इसके लिए एक अच्छा रास्ता है, कीप बिजी। इट्स द चीपेस्ट काइंड ऑफ मेडिसिन देयर इज। तो अगर आप अपने आप को बिजी रखते हो ना, तो बहुत सारी परेशानियां ऐसी ही छू मंतर हो जाती हैं। इसलिए पता है, बस लाइफ में रियल रहिए, इतने रियल कि जब कोई आपको बददुआएं भी दे तो वो भी आपको दुआएं के रूप में कन्वर्ट होके मिले। एंड ऑल्सो रिमेंबर डैट कि संबंध वही सुंदर है जहाँ दोनों सही होने की नहीं बल्कि साथ होने की जिद करते हैं। मैं आपके साथ रहूंगी, ये मेरा आपसे है वादा। आपके सुझाव, प्यार और हाँ, जस्ट फॉर योर लवली फीडबैक, प्लीज गिव्स योर रिस्पॉन्स। एंड एज यू नो, आवर ईमेल आईडी इज

www.vvnild@gmail.com, and you can also WhatsApp us. Our WhatsApp contact number is 800-492-6250. और ध्यान दें दोस्तों कि प्रार्थना और सब्र कभी भी जाया नहीं जाते, सही समय पर भगवान जी उन्हें ज़रूर खूबसूरत तरीके से पूरा करते हैं। और मैं तो ऐसा मानती हूँ कि प्रार्थना करने वाले होठों से अधिक पवित्र वो हाथ होते हैं जो किसी की मदद के लिए खड़े होते हैं। सो जस्ट हैव पेशेंस एंड डू योर बेस्ट, बाकी सब मोह माया और बाकी सब आपकी माँ ही देख लेगी, डोंट वरी। तो बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को। लेकिन उसके पहले अभी आपके लिए कुछ है, एक प्यारा सा टाइटल ट्रैक।

0: तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज को हमारा जो ये शो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपने ज़रा भी ऐसी उम्मीदें मन में पाल ली है ना कि आज तो मैं कुछ अच्छा करूँगा, तो मेरे लिए मतलब मेरे शो का ये जो पूरा कंसर्ट था, मुझे ऐसा लगता है कि वाह ये सफल हो गया। तो बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं अगले फ्राइडे फिर आऊँगी, आपसे बहुत सारी बातें करूँगी और हम फिर अगली बार कुछ नई बातें करेंगे। फिलहाल तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और ध्यान रखिए कि खुद को खुश रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइएगा। इसी प्यारी सी बात के साथ दे अपने माही को इजाज़त, मिलते हैं अगले फ्राइडे को। तब तक बाय बाय, टेक केयर।
1: कैसी है पहेली हाय कभी।

यथा युवाओं का पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम यूथ एक्सप्रेस। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। 12 बज रहे हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए

0: त्वरित एक निष्पत्ति क्या है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को भी परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। इसके साथ ही दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 87.70 रुपये और गुरुग्राम में इसकी दर 84.12 रुपये हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 82 अंक बढ़कर 75,481 पर, जबकि निफ्टी 29 अंक की वृद्धि के साथ 23,719 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy this morning. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. The National Testing Agency, NTA, has announced that the medical entrance exam, NEET UG 2026, will be reconducted.

रात 9:30 पर गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। रास्तों का चक्रव्यूह, ये नाटक आपको सुनवाएंगे रात 10 बजे। लेखक राजेंद्र तिवारी।

आपके फ़ोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेकर आएंगे 12:30 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी प्रसारित किया जाएगा 1:15 से। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुन सकते हैं 5:00। युवजन अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे रोज की तरह 5:15 से। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 पर ग्रामीण जन सुनेंगे ओंकार नाथ के गाए लोकगीत। और लोकगीत का कार्यक्रम होगा 2:30 पर। संस्कृत कार्यक्रम में 7:31 पर सुनिएगा डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता परिवार मानव जीवनस्य स्तंभः। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर कलाकार होंगी शिल्पी खरे। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा 8:00। अक्षयवट कार्यक्रम में 8:30 पर डॉक्टर अपराजिता चौधरी से बातचीत होगी बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब आप सुनेंगे खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं।

सचिन सांगवान निवासी 40 दरभंगा कॉलोनी प्रयागराज सूचित करते हैं कि शीतल 1 अप्रैल 2026 से दरभंगा कॉलोनी से लापता है। शीतल के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 28 वर्ष, ऊंचाई लगभग 160 सेंटीमीटर, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। शीतल के विषय में कोई भी जानकारी आप थाना जॉर्ज टाउन प्रयागराज को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 8429774329। जाहिद अली निवासी ग्राम सुनौली उमरपुर थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी सूचित करते हैं कि नगीना बेगम 30 दिसंबर 2023 से सुबह 11 बजे से ग्राम सुनौली उमरपुर से लापता हैं। नगीना बेगम के विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र लगभग 37 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ, लंबा इकहरा बदन और चेहरा लंबा है। नगीना बेगम के विषय में कोई भी सूचना आप थाना पश्चिम शरीरा कौशाम्बी को या इस मोबाइल नंबर पर दे सकते हैं 9918272।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनाने जा रहे हैं राग मधुमाज सारंग में गाया ख्याल। कलाकार डॉक्टर विदुषी कमला शंकर।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मधुमाज सारंग में सितार वादन, वादिका विदुषी डॉक्टर कमला शंकर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब पेश है आपके फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कार्यक्रम पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार जी।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, प्रयागराज
0: जी, दादनपुर प्रयागराज से विकास जी ने हमें कॉल की है। तो विकास जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी, आज हमें गाना सुना जितनी दफा देखो तुम्हें धड़ती शोर।
0: ये परमाणु फिल्म का गीत है
1: जी, ये बहुत अच्छा है।
0: जॉन अब्राहम की ये फिल्म थी, तो विकास जी ने फरमाइश की इस गाने की, हम सुनवाने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए विकास जी।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: परम आदरणीय मधु दीदी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा की मथुरा उत्तर प्रदेश से सादर सप्रेम प्यार है नमस्कार। दीदी,
0: नमस्कार जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आकाशवाणी प्रयागराज से प्रसारित कीजिए एक कव्वाली है, फिल्म का नाम पुतली बाई।
0: जी
1: धीरे धीरे तनाई लगे थामने, इनको उंगली थमाना गजब हो गया। ये मस्ती भरा कव्वाली आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ,
0: जी
1: आकाशवाणी
0: जरूर।
1: प्रयागराज से प्रसारित करने के
0: तो
1: लिए।
0: आपकी इस फरमाइश को पूरा करते हुए हम सुनवाने जा रहे हैं पुतली बाई फिल्म की ये कव्वाली। लीजिए सुनिए।

जो घर में सिल पे मसाला तलक न पीस सके उन्हें ये नाज हमें खाक में मिलाएंगे। कलाई देखो तो चूड़ी का बोझ सह न सके और उस पे दावा के तलवार हम खाएंगे। फरेब मकर में इनका नहीं कोई सानी, ये जिसको डस ले वो मांगे न उम्र भर पानी। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज्जत बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वही कत्ल करके आशिक को बड़ी धूम से मैयत उठाई जाती है। खता हमारी है जो हमने उनसे प्यार किया, बुरा किया जो हसीनों पे एतबार किया।

खबर भी है तुम्हें शेखी बघारने वालों कि इस जमीन पे पुतली भी एक औरत है कि जिसमें मर्द को ललकारने की हिम्मत है। तहन के सर पे दिलेरी का ताज बैठी है, जो घर में थी वो सिंहासन पे आज बैठी है। अगर झुके तो ये दिल क्या है जान भी दे दे, जो सर उठाए तो मर्दों की जान भी ले ले। अगर चे फूल का एक हार है यही औरत, जो जिद पे आए तो तलवार है यही औरत। ये पुतली बन के जमाने को मोड़ सकती है, उठे तो मर्द का पंजा मरोड़ सकती है।

लिया, बुलबुल से नाजुकी, नदी से बल खाना लिया, आईने से हैरतें, तस्वीर से खामोशियां, लहर से अटखेलियां, मांगी पवन से शोखियां, आंख ली हरनी से और शबनम से आंसू ले लिया, बदलियों से जुल्म, नजारों से जादू ले लिया, लाजवंती से शर्म और रात रानी से हया, आबरू मोती से ली, सूरजमुखी से ली वफा, जहर नागन से लिया और सांप से डसना लिया, काटना बिच्छू से मांगा, तीर से चुभना लिया, लोमड़ी से मांग ली ताम्र की मकारियां, मक्खियों से शोर और मच्छर से ली अय्यारियां, इतनी चीजें जमा होके जब लगी मौला के हाथ, और इन सबको मिलाया जब खुदा ने एक साथ, तब कहीं जाकर बड़ी मेहनत से एक मूरत बनी, दिलशी पे करबला एक दिलरुबा सूरत बनी, देखकर अपनी कलाकारी को मौला हंस पड़ा, और उसी अनमोल शय का नाम औरत रख दिया, रख चुका जब नाम उसके बाद यूं कहने लगा, क्या मैं बना कर तुझे खुद परेशान हूं।

को पैदा करे। सबसे पहले ये सवाल आया कि कुदरत क्या करे, पत्थरों से संदिली और बेरुखी तकदीर से, कहर तूफानों से मांगा और गजब शमशीर से, ली गधे से अक्ल, कौए से सियानापन लिया, और कुछ कुत्ते की टेढ़ी तुमसे टेढ़ापन लिया, घात ली बिल्ली से और चूहे से मांगा भागना, और उल्लू से लिया रातों को इसका जागना, ले लिया तोते से आंखें फेर लेने का चलन, भेड़िए से खून पीने का लिया दीवानापन, ली गई गिरगिट से हरदम रंग बदलने की अदा, जिससे औरत को दिया करता रहे धोखा सदा, तो इसको नाफरमानियां बख्शी गई शैतान की, झूठ बोले ताकि ये खाकर कसम भगवान की, लेके मिट्टी में मसाला जब ये मिलवाया गया, फर्क उस दम मर्द की फितरत में ये पाया गया, मर्द के पुतलों में जिस दम जान दौड़ाई गई, उसमें औरत की भी थोड़ी सी अदा पाई गई, औरतों में मर्द की सूरत नहीं मिलती जनाब, पर इन्हीं मर्दों में मिलते हैं।

0: फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: प्रहलाद पाठक
0: जी। प्रहलाद जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? नमस्कार, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: यस मैम।
0: करण अर्जुन का?
1: यस मैम। हाँ,
0: गीत के बोल बता दीजिए।
1: कोई भी गाना,
0: कोई भी गीत करण अर्जुन का। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं करण अर्जुन फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश, और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: और मीडियम में 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पे इस वक्त चल रहा हम सब श्रोताओं का मन पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। और इस कार्यक्रम पे मैं हूँ राजेंद्र। अपनी मन पसंदीदा फरमाइश को लेकर गोतनी कुंडा प्रतापगढ़ से मैम नमस्कार
0: जी। नमस्कार, राजेंद्र जी ने कुंडा से हमें कॉल की है। तो राजेंद्र जी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है इंतकाम
0: जी,
1: और गाने के बोले हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए।

0: आंदोलन तिवारी।
1: आंदोलन तिवारी, भाई बहुत ही जोशीला नाम है आपका।
0: पूरे जनक राजापुर विंध्य,
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: जिला प्रतापगढ़ है, राजापुर विंध्यन चौराहा है, पूरे जनक गांव है।
1: अच्छा, वहां से बात कर रहे हैं। पहली बार कॉल की है आपने, क्योंकि नाम तो
0: हाँ
1: पहली बार
0: हाँ
1: सुना है।
0: हाँ
1: अच्छा, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दिल तो खोया है यहीं पे कहीं।
1: फिल्म का नाम मालूम है आपको?
0: हाँ
1: जी बताइए।
0: आंदोलन।
1: अरे वाह, आंदोलन जी ने आंदोलन फिल्म का गीत सुनना चाहा है, तो भाई जरूर सुनवाएंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। एक बजने वाले हैं, समाचारों की बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर

0: चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिंत इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराकची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इसके बाद वो गोरखपुर में दानिश्वरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। रियासत में शदीद तूफान ज्वालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से होने वाले जानी और माली नुकसान के रद्देअमल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुतासर इलाकों में जंगी पैमाने पर राहत और बचाव के काम करने की हिदायत दी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और हर जरूरतमंद तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाएगी। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों तक अविलंब राहत सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को अनुमन्य 4-4 लाख रूपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त पशु हानि से प्रभावित लोगों को भी नियमानुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण आंधी तूफान ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 111 लोगों की मृत्यु हुई है जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। सबसे अधिक जनहानि प्रयागराज में हुई है। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अब इम्तिहानात बगैर किसी फीस के होंगे। हम इस बात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि तलबा पर माली बोझ न पड़े। वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। जनाब प्रधान ने कहा कि आइंदा इम्तिहान में 15 मिनट इजाफी मिलेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने सहाफियों से कहा कि अगले साल से नीट का इम्तिहान कम्प्यूटर पर मबनी टेस्ट मोड के जरिए लिया जाएगा। वहीं एनटीए ने हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान किया है। दोबारा इम्तिहान 21 जून 2026 को होगा। इससे कबल 3 मई को हुए इम्तिहान को पेपर लीक होने पर मंसूख कर दिया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहरियों से ईंधन को बचाने की अपील के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी ईंधन को बचाने के लिए काबिल तजदीद तवानाई मुतबादिल तवानाई के जरिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कारपोलिंग को अपनाने पर जोर दिया है। लखनऊ में एक प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम से खिताब करते वजीर आला ने कहा कि बुहरान के वक्त कौमी मफाद को मुकदम होना चाहिए। हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कौम के साथ खड़ा हो और अपना हिस्सा डाले। एलपीजी पर इन्हिसार कम करने के लिए बायोगैस प्लांट्स पर मबनी कम्युनिटी किचन मॉडल तैयार करने पर खुसूसी जोर दिया गया। दरअसल मुल्क के जरात और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ अपीलों के जवाब में अपनी मुतालिका वजारतों और महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि वजीर आजम की अपील के मुताबिक वजारत की सतह पर एक साल तक सोना खरीदने से बाज रहने का फैसला लिया गया है। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी काउंसिल की पार्लियामानी कमेटियों के तमाम पहले से तयशुदा दौरे के प्रोग्रामों को अगले अहकाम तक मुलतवी कर दिया है। रियासत में देसी दूध की पैदावार को फरोग देने के लिए कल आगरा में एक डेयरी कॉन्क्लेव 2026 के इनका किया गया जिसका मौजू था स्वर्णिम दुग्ध अमृत संवाद सम्मेलन। रियासत के मवेशी परवरी और डेयरी तरक्कत के वजीर धर्मपाल सिंह ने कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि बेसहारा मवेशी हुकूमत की तरजीह है। दुनिया भर में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद तेल कंपनियों ने मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। महकमे मौसमियात ने आज से 18 मई तक रियासत में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमे ने दिन के वक्त कुछ इलाकों में गर्मी की लहरों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही अगले हफ्ते के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के इजाफे के इम्कान है जबकि कम से कम दर्जे हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान है। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से शाम 7:30 बजे लखनऊ में होगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नशर किया जाएगा।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके चहेते पारिवारिक और मन पसंद कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में।
1: जी हाँ श्रोताओं, हमारा ये आकाशवाणी प्रयागराज के अंतर्गत प्रसारित हो रहे सभी कार्यक्रम, जिसमें शामिल होता है मनोरंजन के साथ साथ जानकारियाँ, सुझाव, नुस्खे, संदेश, वार्ता, चर्चा और भी बहुत कुछ, और जिसमें साथ होती है आपकी भावनाएं, प्यार और आशीर्वाद।

0: हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेहतर से बेहतरीन प्रस्तुति दे सके।
1: और श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज के इस परिवार की, जिसका एक छोटा सा हिस्सा है हमारा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम और उनसे जुड़ा हुआ है ये खूबसूरत सा रिश्ता और हमारा और आपका।
0: और इसी रिश्ते को और भी खास बनाने के लिए आज हम आ गए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर के। आज मैं हूँ प्रीति और मेरे साथ है
1: पूनम।
0: तो सभी प्यारे श्रोताओं को हमारा
1: नमस्कार।

0: में सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, तो बताओगी किस चीज़ से खुशी मिलती है?
1: खुशी से खुशी मिलती है, और अपने परिवार में रहकर जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती।
0: हाँ सही कहा। और जो तुम्हारी ये बात है ना, इससे हमारी जो सभी श्रोता हैं वो भी रिलेट करेंगे कि वाकई में जो परिवार के साथ रहने का आनंद है वो कहीं और नहीं मिलता। जब भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हम जब उनसे आशीर्वाद लेते हैं, जब उनके जो हाथ हैं अब हमारे सर पर जब वो फेर देते हैं, तो लगता है कि बस हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब कोई भी संकट समस्या हमारे आसपास नहीं रहने वाली और हमारी खुशियां यूं ही बनी रहेंगी, है ना?
1: हाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वरदान, खुशी और आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब हमारे बुजुर्ग निशब्द हमारे झुके हुए सिर पर अपनी कांपती हुई उंगलियां फेर दे बस।
0: हमारा परिवार, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता ही तो हमारे घर की नींव हैं। और आज हम जहाँ भी हैं, जिस भी मुकाम पर हैं, वो हमारे परिवार की, हमारे इन बड़ों की देन है। सच कहा ना?
1: और उनके द्वारा दिए गए जो मान मर्यादा हैं, संस्कार हैं, उन्हीं पे चल के ही तो आज हमने ये मुकाम हासिल किया है, आज हम जिस जगह पर हैं। परिवार कहने को तो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमारी खुशियों की धुरी है हमारा परिवार। जहाँ पर हम पलते हैं, बढ़ते हैं, जहाँ पर हमारी आँखों में सपने सजते हैं, सुंदर सपने, और उन सपनों को नए पंख, नई उम्मीदें देती है हमारे ममता की छाँव, और अपनी हिदायतें देते हमारे परिवार के वो छाया जिन्हें ईश्वर ने हमारे माता पिता के रूप में हमें उपहार स्वरूप दिया।
0: लेकिन पूनम, तुम इस बात से भी इनकार नहीं कर पाओगी कि आजकल की जो भागदौड़ सी जिंदगी है, इसमें हम इतने व्यस्त हो गए हैं अपने अपने काम काज में, अपनी नौकरी में, कि हम अपने परिवार को जो वक्त देना चाहिए वो दे नहीं पा रहे हैं। सही कहा ना?
1: बिल्कुल। और लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं।
0: हाँ।
1: और परिवार से अलग होकर हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज परिवार के स्वरूप और उसके मूल्यों में बहुत ही परिवर्तन आया है। परिवार कुछ लोगों के साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि इसमें रिश्तों की मजबूत डोर होती है, सहयोग का अटूट बंधन होता है, एक दूसरे की सुरक्षा करने के वादे और इरादे होते हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें। इसी कड़ी में आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज है 15 मई। तो सब लोग इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परिवार को जोड़ा जाए। और जब हम परिवार की बात करें, परिवार में जब अपने बड़ों की बात कर रहे हैं, साथ में जो हम गृह लक्ष्मियां हैं वो भी तो इस परिवार की धुरी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और कल भी बहुत खास दिन है, कल है वट सावित्री का व्रत। और ये एक ऐसा व्रत है जहाँ पर हमारी जो जितनी सुहागिन स्त्रियाँ हैं, हिंदू स्त्रियाँ, वो सभी अपने सुहाग की मंगल कामना करती हैं, है ना? और जब इस पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लें कि भाई हम अपनी सखियों को ये बताते चलें कि जो वट सावित्री व्रत है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, और 2026 में ये व्रत 16 मई को शनिवार को मनाया जाएगा,
1: यानी कि कल। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। हिंदू धर्म में वट यानी कि बरगद का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता ये भी है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का प्रतीकात्मक निवास माना जाता है। इसी कारण वट वृक्ष की पूजा धार्मिक दृष्टि से भी बहुत मायने रखती है।
0: पूनम, वैसे ऐसा कहा जाता है, जैसी मान्यता है कि ये जो वट सावित्री की हम पूजा व्रत की बात कर रहे हैं, ये सावित्री और सत्यवान की अमर कथा इसमें सुनाई जाती है, जिसमें सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, पतिव्रता, धर्म और अटूट विश्वास के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान का जीवन वापस प्राप्त कर लिया। यही कारण है कि वट सावित्री व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए आस्था और समर्पण का प्रेरणा स्रोत बन गया है।
1: पूजा की इस परंपरा को इस दिन बहुत ही विशेष माना गया है। प्रातः स्नान के बाद महिलाएं शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं, पूजा सामग्री की तैयारी करती हैं और वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर जल अर्पित करती हैं। वे मौली या कच्चे सूत से वृक्ष को बांधती हैं, परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनती हैं। इसके बाद वे अपने परिवार की मंगल कामना के लिए प्रार्थना भी करती हैं।
0: पूनम, तुमने ये देखा होगा हमारे जितने भी पौराणिक व्रत हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं, मैंने ज़्यादातर ये नोटिस किया कि वो प्रकृति से प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहीं कहीं हम नदियों की पूजा कर रहे होते हैं, कभी

0: वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे अगर हम वट वृक्ष की बात करें तो ये वैज्ञानिक रूप से भी बहुत उपयोगी है। ये हमारे पर्यावरण को शुद्ध करता है, दिन रात ऑक्सीजन देने वाले। इस वृक्ष की इतनी जो छाया होती है वो इतनी घनी होती है कि अगर तुम कितनी भी धूप हो, अगर तुम इस वृक्ष के नीचे आ जाओ तो शीतलता महसूस होगी। और आयुर्वेद में भी जो इसके पत्ते हैं, इसकी छाल है, उसका बहुत उपयोग होता है। तो सही मायने में जो वट वृक्ष है ना, ये सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। तो ये जो आस्था है और साथ में जो वैज्ञानिक है उससे जुड़कर वाकई में ये वृक्ष पूजने लायक तो है ही, इन्हें बचाने लायक है। और हमें ये, जैसा हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि ये जागरूकता की फैलाएं कि पेड़ हम कम काटें और लगाएं जरूर, है
1: बिल्कुल
0: ना?
1: हाँ। और सिर्फ लगाएं ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करें, है ना?
0: उसकी देखभाल भी करें। और जब हम इतनी सारी बात कर रहे हैं तो क्यों ना एक प्यारा सा गीत अपनी सखियों को सुनवाते चलें।

0: कैसा लगा गीत ये पूनम?
1: बहुत ही सुंदर गीत लगा और मेरा तो बहुत ही पसंदीदा गीत है।
0: तो देखो, हमारी जितनी भी बहनें कल पूजा करेंगी, ये गीत सब उनके लिए था। वो आज इस गीत को सुनेंगी ना, तो अपनी पूजा की तैयारी और अच्छे से कर पाएंगी। और
1: बिल्कुल।
0: देखो ना, अब हमारे कार्यक्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और अब समय हो चला है पहल का। और भाई, पहल का समय हो गया, पर ये पहल की, हाँ, दरवाजा खुला है और वंदना दीदी आ भी गई। भाई देखिए, आपने ये नहीं बताया कि पहल में आज आप चर्चा किस विषय पर कर रही हैं।
2: देखो प्रीति और पूनम, मैं बहुत दिल से इस प्रोग्राम को सुन रही थी,
0: अच्छा,
2: दरवाजे के पीछे, और ये सोच रही थी कि कब तुम लोग आवाज दो मुझे
0: और आप आ जाए,
2: मैं तुरंत आ जाऊं
0: सखियों से मिलने।
2: बिल्कुल सही बात है। और देखो, तुमने दिल से आवाज दी, और दिल की आवाज दिल तक पहुंची, और दिल ने कहा कि बस तुरंत पहुंचा जाए,
0: तुरंत पहुंचा जाए।
2: तो मैं आ गई हूँ। और जब दिल की बातें इतनी सारी चल रही है, लेकिन तुम लोग भी जब प्रोग्राम कर रही थी तो दिल से कर रही थी।
1: बिल्कुल,
2: सखियां जो सुन रही हैं प्रोग्राम, दिल से सुन रही हैं। तो क्यों ना दिल की ही कुछ बात कर ली जाए।
1: बिल्कुल,
0: वाह वाह। भाई देखिए, हमारे पास आपने विषय सुझा दिया, दिल की बात करेंगे, और आपने हामी भी भर दी पूनम ने, तो बिल्कुल भाई इस बात पे चर्चा करी जाएगी।
2: क्योंकि अमूमन देखो ऐसा होता है प्रीति की, जैसे कि हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमको समझ में नहीं आता कि हम दिल की बात सुने कि दिमाग की, है ना। कभी कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, तो वहाँ भी बड़ी उआफो वाली जो स्थिति होती है, कश्मकश एक गुजरता है मन उससे, और संघर्ष वाला एक समय होता है कि क्या चीज कैसे कोई निर्णय अगर लेना है कहीं पर, तो दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कहता नहीं नहीं इस काम को अलग ढंग से करना चाहिए, यहाँ पर हमको कोई और फैसला लेना चाहिए।
0: हाँ, दिमाग थोड़ा प्रैक्टिकल कर रहा, अप्रोच कर रहा होता है, दिल थोड़ा भावनाओं के साथ जुड़ रहा होता है। अगर बात अपनों की हो जाए तब ये भी लगता है कि भाई कोई ऐसी बात ना हो जाए कि उसको तकलीफ हो या उनके उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो ये जब ये दिल और दिमाग की कश्मकश में सब फंस जाते हैं कई बार, ऐसे में आप क्या करती हैं?
2: देखो, तुमने अभी एक सूत्र थमाया था कि जब भावनात्मक कोई रिश्ता हमारा जुड़ा होता है, जिससे जो वहां पर बात आती है, तो हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, और दिल की तरफ झुकने लगता है हमारा मन। तो ये चीज होती है कि नहीं नहीं हमारे रिश्ते बने रहें, बरकरार रहें, तो हम दिल की सुनते चले। लेकिन कई बार क्या होता है कि सुनते तो हम जरूर हैं, लेकिन वो निर्णय कभी कभी गलत साबित हो जाता है, क्योंकि वो जज्बात में लिया हुआ निर्णय होता है ना
0: जी।
2: फिर ये लगता है कि अरे काश जो दिमाग उस समय कह रहा था
0: वो कर लिया,
2: हाँ, कि ये रास्ता थोड़ा सा पेचीदा है, इस रास्ते पे चलो तो ज्यादा बेहतर तरीके से परिणाम मिलेंगे।
0: सही कहा। तो जब ऐसी दिल और दिमाग की रस्सा कसी चलती है, तो हमारी सखियां क्या करती हैं,

0: तो हम उनके मैसेज जानेंगे पूनम क्या करती है। पूनम,
1: जब दिल और दिमाग की बात आती है तो अगर हम दिल की सोचते हैं तो हमें वो सिचुएशन सही लगती है कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, और जब हम दिमाग की तरफ सोचते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसमें कॉम्बिनेशन बिठाना ये उस समय बहुत ज़रूरी हो जाता है ना?
0: हाँ, कि एक ऐसा निर्णय लिया जाए जिससे परेशानी भी ना हो और हल भी सही निकले। जैसा कि वंदना दी ये भी आप कह रही थी ना कि कई बार फैसले जज्बातों में बह के ले लेते हैं और परिणाम जो होने चाहिए वो नहीं हो पाते, तो लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी अगर थोड़ा दिल की सुन ले तो अच्छा नहीं है।
2: देखो क्या होता है कि जब कोई दिल कहीं से कोई बात कह रहा होता है तो उसमें हमारी बहुत सारी भावनाएं जो और होती हैं, जो चल रही होती हैं, परवाह है या प्यार है, उसमें समाया हुआ घुला हुआ होता है, वो सब भी उसमें समाहित होती हैं। इसीलिए जब निर्णय या कभी कभी कोई ऐसी बात आती है कि हमारे विपरीत चीज़ें होती हैं, दिल बहुत दुखता है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि अगर हमने कोई निर्णय अपने मन को समझ कर किया है तो सामने वाला कैसे ले रहा है वो कोई जरूरी नहीं कि हम उसकी सोच पर जाकर वो करें और दिमाग का खेल वहां से बुद्धि का खेल शुरू कर दें, क्योंकि हमने तो बहुत साफ मन से कोई चीज सोची थी और जो भी करना चाहा आगे बढ़कर वो दिल से करने का प्रयास हमने किया कि दिल से जो भी काम करें वहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं वो एक लगाव, वो जुड़ाव, वो महसूस हो सामने वाले को। सामने वाले को नहीं महसूस हुआ वो एक अलग की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से तो हमने पूरी ईमानदारी बरती। तो जब ईमानदारी की जब बात आती है, यानी कि जो भी हम काम करने वाले होते हैं उसकी जो परिणति है वो कैसी हो ये हमारा सोचने का विषय नहीं होता है, हमने उस काम को करने के लिए कितनी शिद्दत से उस काम को किया है और कितना हम उस काम से जुड़े हैं और कितना इमोशन अपना उस काम में डाला है, यानी कि एक साफ गोई की जो बात होती है, एक परवाह की जो बात हम कर रहे थे वो होती है, और प्यार स्नेह का जो घुला मिला रंग होता है, तब वो परिणाम चाहे बेशक उस समय हमारे मुताबिक ना निकले जैसे हमने सोचा है, लेकिन होता वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एक सबक भी मिलता है,
0: सबक भी मिलता है और कुछ हो ना हो अपने मन को तसल्ली बहुत मिलती है कि हमने तो सब अच्छे से किया, अच्छा सोच के किया, अच्छे तरीके से किया, और हमारा कोई उसमें ऐसा नहीं था कि हम किसी को हर्ट करें या परेशान करें। तो ये बात तो है सही कि भाई अगर आप मन की सुनते हैं, कई बार जो हम थोड़ा कम सुनने लगते हैं, खासतौर से अगर अपनी बात हो, अगर अपनी खुशियों की बात हो, तो हम थोड़ा अपने मन को रोक लेते हैं, बांध लेते हैं, उसको सीमाएं देते हैं कि नहीं ठीक है, अगले की परवाह थोड़ी हम ज़्यादा करते हैं।
1: यानी कि ये जो दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है वो जीवन का बहुत ही खूबसूरत एहसास है, जो कि हमारी भावनाओं को समझते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और ये जो रिश्ते होते हैं दिल से जुड़े, हमारे मन से जुड़े, वो हमारी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरत रंग देते हैं।
2: क्या बात है, देखो पूनम ने एक बात कह दी कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, और रिश्तों में तो देखो अमूमन उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल को खोलना और प्यार को स्वीकार करना सीख लेते हैं ना प्रीति और पूनम, तब ये जो मुश्किल होती है, चाहे वो सुख मिले या दुख मिले, तो इतनी तीव्रता का एहसास नहीं होता, यानी इतनी चोट नहीं पहुंचती है, क्योंकि हम ये समझ रहे होते हैं कि ये सारे जो रिश्ते होते हैं ये हमारे अपने हैं, इसमें अपनायत की खुशबू समाई हुई है, और अभी रंग इसका कुछ फीका फीका सा, स्वाद इसका कुछ बेस्वाद सा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर ये रंग बहुत पुख्ता होगा और ये स्वाद, ये जायका बहुत ही शानदार होगा, लज्जतदार होगा, क्योंकि ये सारे रिश्ते हमारे अपने होते हैं और इनमें हमने अपने दिल की जो चाशनी होती है वो गोली होती है। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जहाँ तक हम लोग ये निष्कर्ष पर निकल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मुझे तो यही लगता है प्रीति कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर टकराहट शुरू हो जाए दिल और दिमाग के बीच में, तो थोड़ा सा ठहर जाएं, दोनों को पहले सुन लें, लेकिन कोई फैसला अगर ले रहे हों और उस फैसले में ईमानदारी, निष्पक्षता वाली भावना हो और प्यार समर्पण समाया हो, तो वहाँ पर दिल अपने आप ही बोल उठेगा, दिल अपने आप ही कहे उठेगा और आगे का रास्ता भी सुझा देगा। तो दिल की सुनना बहुत ज़रूरी बात होती है,
0: बिल्कुल।
1: और इस रिश्ते में हम एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि रिश्तों को रिश्ते की तरह नहीं लें, बल्कि एक

0: शानदार पौधे की तरह लें जिन्हें कि प्यार, धैर्य और विश्वास से सींचे हम, और इस रिश्ते की कद्र करें क्योंकि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।
1: और जैसा कि आप दोनों ये बात कह रही हैं, मैं आप दोनों की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। और वंदना दीदी, आपकी ये जो बात है ना कि जब हम कोई बात बहुत, जो अपने रिश्तों की बात हमने की, जब हम दिल से सुन लेते हैं तो एक तसल्ली तो रहती ही है ना कि हमने अपनी दिल की सुन ली, कह ली, कर ली, और हमने, हमसे जितना बन पड़ा हमने उतना अच्छा किया किसी निर्णय में पहुँचने के लिए। तो एक अंदर से क्या संतुष्टि कह सकते हैं कि हाँ, वो आ जाती है कि दिल के सुनने पर एक अच्छा पल महसूस होता है, एक अच्छा वो लगता है कि हाँ ठीक है, हम अपने मन की सुन तो रहे हैं और हमारा मन सब अच्छा चाह रहा है, सबके लिए अच्छा चाह रहा है, हर रिश्ते को बांधे रख रहा है, और ऐसे में थोड़ा जो हमारा मन है वो कह रहा है वो हम सुन भी पा रहे हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। और जो कृतज्ञता की जो भावना एक आती है कि हमारे विपरीत, कभी मन के विपरीत काम हो रहा होता है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं किसी भी चीज़ में, फिर क्या होता है कि कभी कोई चीज़ ऐसी आ गई कि हमारे मन के हिसाब से चीज़ें चलने लगी, अगर दोनों ही भावनाओं में हम कृतज्ञता को साथ लेते चलें, अच्छा मिला तो भी कृतज्ञ रहें, और बुरा अगर कुछ भी कोई फल हमको मिल रहा है किसी काम का तो भी उसको स्वीकार करें और कृतज्ञ हों कि हमको कुछ अनुभव मिला, कुछ सीखने को मिला है। तो ये जो दिल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं और जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो जीवन में हमारे हो, रिश्तों में हो, या किसी कार्यक्षेत्र में जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती जहाँ पर एक बात आती है कि इस काम को अगर हमने दिमाग
1: लगा के किया होता, हाँ, तो उसके निर्णय माने होते हैं, बिल्कुल तो परिणाम कुछ और होता है।
0: हाँ, लेकिन कभी कभी ज्यादा दिमाग लगाना भी हानिकारक हो जाता है।
2: तो अति तो हर जगह पर उसको मना किया गया है, नुकसानदायक होती है। तो ये एक बात जरूर निकल कर आ रही है कि जो भी हम कहें, जो भी सोचें, जो भी बात करें, वो अगर दिल से करी जाएगी, दिल से कही जाएगी,
1: तो दिल तक पहुंचेगी, जरूर
2: जरूर पहुंचेगी। तो ये दिल की आवाज दिल तक पहुंच रही है। और देखो, मैं तो अब चलने के लिए जा रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि लेकिन एक ये जो वातावरण है और दिल की इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो कहीं कुछ माहौल को संगीत में छोड़ते चले तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल, आप संगीत में छोड़ेंगे और हमारे श्रोता इसे कनेक्ट जरूर करेंगे।
2: बिल्कुल,
1: और क्योंकि इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए
2: मुझे थैंक यू कहने जा रही हूँ, मुझे पता है। लेकिन जब मैं संगीत की बात कर रही हूँ तो देखो, यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पे कश्मकश भी एक है, प्यारी सी है कि दिल तो है, दिल दिल का एतबार क्या कीजिए।

0: का है त्यौहार कीजिए या ना कीजिए, तो आप पर हमने छोड़ दिया है। और अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है जायके का। तो पूनम, आज जायके में क्या बता रही हो हमारी सखियों को?
1: आज हम बताएंगे कच्चे केले के व्यंजन।
0: अच्छा, तो सबसे पहले क्या बताने वाली हूँ?
1: सबसे पहले केले के फायदे बताऊंगी मैं।
0: अच्छा, बताओ। तो पहले केले के फायदे जान लेते हैं।
1: जो केला है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और एक बेहतरीन और आसानी से पचने वाला फल है ये, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। और इसके फायदे तो बहुत ही हैं। तुरंत ऊर्जा देता है हमको, पाचन शक्ति हमारी जो है उसको मजबूत बनाता है, हृदय और ब्लड प्रेशर में भी बहुत लाभदायक है, हमारा तनाव भी बहुत कम करता है। इसमें स्टार्च, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम होता है जो कि मांसपेशियों की मरम्मत और हड्डियों के विकास में बहुत ही सहायक होता है।
0: और देखो, जहाँ तक जो केले की बात कर रही हूँ, जब तुमने केले की बात करी तो बच्चों को केला बहुत पसंद आता है। और जो अगर पका हुआ केला है वो छोटे बच्चों को, जो 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, जब हम उनका खाना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा एक फूड हो जाता है। कि आप केले दूध को मैश करके बच्चों को खिला सकते हैं उनको। तो ये जो केला है ना, शुरू से लेकर बच्चों को बड़े होने तक भी सबको बहुत पसंद आता है। आप इसको काट के खा लीजिए, यूं ही आप सफर में जा रहे हैं तो भी खा सकते हैं, खिला सकते हैं,
1: फ्रूट सलाद के रूप में खा सकते हैं।
0: और देखो, इसमें इतना अच्छा पोटेशियम होता है कि ये जो जितनी भी आपको जरूरत होती है, अगर आप एक केला रोज खा रहे हैं करीब, तो वो पूरी हो जाती है। बस ये है कि ये ध्यान रखना है, जो केला है वो नेचुरली पका हुआ हो। जो कार्बाइड वगैरह से पके हुए आजकल केले मिल जाते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, तो इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम केले मार्केट से ले रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कच्चे केले के व्यंजन की, तो मैंने तुमसे पूछा ना कि तुम सबसे पहले क्या बताने वाली हो, कुछ ऐसा बताओ जो बच्चों को बहुत पसंद है।
1: बच्चों को तो हलवा बहुत पसंद है, और केले का हलवा बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा।
0: अच्छा, कैसे बनाती हो?
1: उबले और मैश किए हुए कच्चे केले को लेना है, और उसको घी में भूने,
0: देसी घी में भूने,
1: देसी घी में भूने, अच्छे से भूने हल्की आंच पर,
0: ठीक है।
1: और उसके बाद फिर उसमें चीनी या गुड़ जो भी आप डालना चाहें उसको डाल सकते हैं, और आराम से उसको चलाते रहिए। और जब कढ़ाई घी छोड़ने लगे तब उसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स डालकर चलाएं, और एक प्लेट में उसको जमा दें। ठंडा होने पर मनपसंद आकार में काट कर खाएं और खिलाएं।
0: अच्छा, ये तो देखो ये कितना अच्छा है ना, कि जैसे तुमने कहा ना, इसको आप बना के रख सकते हैं और बच्चों के टिफिन में, या बच्चे जब शाम को खेल कर आए तब उन्हें सर्व कर सकते हैं, साथ में जो भी उनको देना हो दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी सी चीज़ है जो झटपट बन भी जाएगी और बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी। और पूनम, ये तो हो गई कुछ मीठी मीठी सी बात, तो कुछ नमकीन नमकीन सा भी लेकर आई हो?
1: नमकीन में है केले का चिप्स।
0: अरे वाह,
1: वो भी कुरकुरे केले का चिप्स।
0: अरे वाह, तो ये कैसे बनाते हैं?
1: कच्चे केले को छीलकर पतला पतला स्लाइस में काटें। अब इसको तुरंत नमक और हल्दी के पानी में डालना है, क्योंकि ये तुरंत काला पड़ने लगता है।
0: अच्छा।
1: और 10 मिनट बाद इसको पानी से निकालकर एक साफ कपड़े से पोंछें, और ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रह जाए, क्योंकि अगर इसमें पानी रह जाएगा तो चिप्स हमारे एकदम सॉफ्ट बनेंगे, उसको कुरकुरापन नहीं आ पाएगा उसमें, तो इसलिए उसको अच्छे से पोंछ लेना है, उसका पानी हटा देना है। अब कढ़ाई में रिफाइन या नारियल तेल डालें, जिसमें भी आप इसको पकाना चाहें, आँच इसमें थोड़ा तेज़ रहेगी। इसको, इस चिप्स को एक एक करके डालना है और सुनहरा होने तक इसको तलें। अब इसमें चाट मसाला मिलाएं, कुरकुरे केले के चिप्स तैयार हैं।
0: तो देखो ये ऐसी चीज़ है ना, ये इतना अच्छा स्नैक्स है कि सबको बहुत पसंद आता है, और अब तो तुमने घर में ही बनाने का तरीका बता दिया, तो मैं भी इसको ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ और इसमें इसको बनाऊँगी भी। जब इतनी सारी जब हमारी बातें हो ही रही हैं, और मैं इसकी विधि नोट कर रही थी, तुम बता रही थी, कुछ छूट गया तो फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। और फिलहाल अपनी सखियों को कहते हैं कि भाई वो इस गीत के साथ साथ जो तुमने रेसिपी बनाई है

0: और पूनम, ये प्यारा सा गीत तो हमारे और हमारे जो श्रोताओं की बात है ना, उससे बड़ा सही कनेक्ट हो रहा था कि भाई एक दूसरे के लिए हम बहुत बेकरार रहते हैं और अपने श्रोताओं को हम बहुत बहुत प्यार करते हैं ना।
1: बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं
0: इसमें कोई दो राय नहीं। और पता है, आज एक बहुत खास दिन है। मैंने खास दिन क्या है, मतलब जो हम लोग हैं, जो लोग फिल्में देखते हैं, जो लोग हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं, उनके लिए कुछ खास है, बता सकती हो क्या?
1: आज है हम सब की फेवरेट, माधुरी दीक्षित का बर्थडे।
0: अरे वाह मैंने सोचा कि तुम्हें मैं खूब पहेलियां तुमसे बुझाऊंगी कि अच्छा ये होगा वो होगा, थोड़ा क्लू दूंगी, पर तुमने तो
1: क्योंकि वो मेरी भी बहुत ही फेवरेट है।
0: बहुत फेवरेट है। अच्छा भाई देखो, तब तो हमारे श्रोता भी जानते ही होंगे कि माधुरी दीक्षित का जन्म हुआ 15 मई 1967 को और मुंबई में हुआ। और जानते ही हैं वो इतनी बड़ी, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ ना, तो मुझे कितना अच्छा वो डांस करती हैं, कितना ग्रेसफुली डांस करती हैं, कितनी अच्छी हिट फिल्में दी,
1: और उनका हर अंदाज बिल्कुल अलग और एकदम नया और बहुत ही खूबसूरत लगता है।
0: कितना नेचुरल, इतनी नेचुरल वो एक्टिंग करती हैं, और लगता है ना जैसे वो हमारे बीच के ही कोई हैं, बहुत उनसे कनेक्ट हो पाता है। और इतना स्वाभाविक एक्टिंग, और इतनी जितना भी उनका रहता है, डांस है, एक्टिंग है, और चाहे वो कॉमिक टाइमिंग हो, चाहे सीरियस वाला हो, जितने भी उन्होंने किरदार निभाए वो बिल्कुल अद्भुत है ना?
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है प्रीति कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, चाहे वो फिल्में देखता हो और चाहे नहीं भी देखता हो, कि इनके नाम से वो अवगत ना हो।
0: हाँ, और जब भी हम लोग उनका नाम लेते हैं तो एक प्यारी सी स्माइल बिल्कुल हमारे सामने आ जाती है। तो क्यों ना उनके बर्थडे को हम उनके इस सॉन्ग के साथ सेलिब्रेट करें।

0: मानव शिक्षक की जो ढेर सारी फिल्में जिनमें तेजा है, राम लखन है, थानेदार है और साजन है, ऐसी जो म्यूजिकल हिट फिल्में हैं और इनकी एक लंबी लिस्ट है जिनको हम अगर गिनाने लगेंगे थोड़ा समय कम पड़ जाएगा। तो हम अपने श्रोताओं से ज़रूर चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं कि उन्हें हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। और एक बार फिर से आप अपना इस गर्मी के मौसम में ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खूब सारा पानी पीजिए।
1: हाँ, लेकिन हाँ, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा फ़ोन नंबर भी तो नोट करें।
0: हाँ,
1: 8004926250।
0: तो आपकी प्रतिक्रिया का रहेगा हम सबको इंतज़ार। और अब दीजिए अनुमति प्रीति
1: और पूनम को
0: नमस्कार।

ये था महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 2 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: Media post, the union minister said while several countries witnessed petrol and diesel hikes ranging from 20 to nearly 100%, India limited the increase to just plus 3.2% for petrol and plus 3.4% for diesel. Benchmark domestic equity indices were trading moderately higher in afternoon trade today. The Sensex rose 165 points to 75,563, while the Nifty added 47 points to 23,737 when reports last came in. Meanwhile, in the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 was trading flat, while the small-cap 100 dipped nearly 0.2% a short while ago. The Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, in collaboration with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, today launched an integrated hydrogen-powered shuttle bus service in the national capital to reduce fuel consumption and promote the use of public transport. The shuttle service will operate on all working days during peak office hours. It will provide seamless and environment-friendly last-mile connectivity between Central Secretariat and Sevatirth Metro stations and key government establishments in the Central Vista region. In badminton, India's top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the semi-finals of Thailand Open. The Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami with 21-12, 21-13 in Bangkok today. Later in the day, Lakshya Sen will face Thailand's Kunlavut Vithitsarn in the men's singles quarterfinals. In IPL cricket, Lucknow Super Giants will take on Chennai Super Kings at Ekana Stadium in Lucknow this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Earlier, Mumbai Indians defeated Punjab Kings by 6 wickets at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala last night. Tilak Verma was adjudged player of the match. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan discuss energy cooperation and bilateral trade in Abu Dhabi. Both leaders exchange key MOUs in defence, petroleum and investments. BRICS foreign ministers meeting 2026 underway in New Delhi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's commitment in advancing goal of reformed and effective multilateralism. NTA to reconduct NETUG 2026 examination on June 21st. Education Minister Dharmendra Pradhan assures fairness and transparency in exam process. BJP MLA Rothindra Boshu elected new Speaker of West Bengal Legislative Assembly. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter semi-finals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, यह किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है।

0: की एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबूधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग्ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना,

0: अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री

0: व्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बैडमिंटन की थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउत विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं वंदना सरोज और साथियों की गाई लाचारी।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: लोकगीत के कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ओंकार नाथ का गाया देवी गीत।

कमलेश्वर सिंह गहमरी के गाए इस झूमर के साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, 3 बज रहे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। अगली सभा 5 बजे आरंभ होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। इस दौरान यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक FM 100.3 MHz पर विविध भारती के राष्ट्रीय नेटवर्क के प्रसारण जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया।

0: बच्चों
1: जय हिंद।
0: जय हिंद दीदी।
1: और हमारे सभी साथियों, आपके साथ आज हूँ मैं आपकी दीदी प्रीति।
0: और मैं पूनम दीदी।
1: वैसे दीदी एक बात बताइए, मुझे इस समय जो ये समय होता है हमारे साथियों से मिलने का बहुत इंतज़ार रहता है कि मैं उनसे मिलूंगी, उनसे ढेर सारी बातें शेयर करूंगी, पूछूंगी कैसा चल रहा है उनका स्कूल और क्या कर रहे हैं वो आजकल खास।
0: आजकल खास में वो कर रहे हैं अभी गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार।
1: अच्छा
0: हाँ
1: जी,
0: क्योंकि बच्चों कुछ ही दिनों में आपकी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो आपकी लिस्ट जो है वो अभी से ही तैयार होने लगी होगी कि आपको कहाँ कहाँ घूमने जाना है, नानी के पास, दादी के पास या फिर किसी हिल स्टेशन पर।
1: हाँ वैसे दीदी, जब हम लोग छोटे थे तो हमें भी इन छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि जैसे ही छुट्टियाँ होंगी तो हमारी तो पूरी लिस्ट बनी थी। हम नानी के घर जाते थे, फिर दादी के घर जाते थे, फिर बुआ के घर जाते थे और फिर मतलब जो भी अगर अगल बगल जो भी आसपास जाना होता था सब जगह जाते थे। और वही हमारा हिल स्टेशन होता था, वही हमारा जो कह लो सब होता था और इतना मजा आता था दीदी कि पूछो मत। कितना कुछ होता था ना नानी दादी के पास हमारे लिए।
0: और हम लोग वहाँ पे कितने सारे दोस्त थे, भाई बहन सब मिलके खूब मस्ती करते थे और साथ ही आम के मौसम में आम भी तो तोड़ते थे।
1: ये तो मौसम भी आम का है। और फिर अगर कभी आप गलती से किसी दूसरे की बगिया में घुस जाते थे तो चूंकि हम लोग अगर नानी के घर गए थोड़ा प्रिविलेज्ड होते थे कि भाई ठीक है इनको इनको डांट नहीं पड़ेगी, इनकी पिटाई नहीं होगी, वरना बाकी जो गांव के बच्चे जो वहीं के रहने वाले उनकी तो खूब खूब डांट पड़ती थी।
0: हाँ, पिटाई भी हो जाती थी, शिकायतें भी आ जाती थी।
1: और हम लोग को माफी मिल जाती थी और हमें आम भी मिल जाते थे साथ। वैसे दीदी ये बताइए, आपको नानी के घर आप जब याद करती हैं नानी के घर, तो आपको क्या क्या याद आता है?
0: मुझे याद आता है नानी के हाथों का वो बना हुआ खाना, टेस्टी।
1: अच्छा?
0: टेस्टी खाना।
1: अरे वाह,
0: बहुत सारी चीज़ें बनाती थी नानी हम लोगों के लिए, जैसे कि बेसन के लड्डू और खोए की गुजिया, दूध दही मट्ठा भी घर का ही होता था।
1: सब कितना मीठा स्वाद ही उसका अनोखा होता है।
0: हाँ।
1: और चूल्हे पर जब पहले तो चूल्हे आम हुआ करते थे, उस पर जो बनी रोटियां होती थी, जो उस पर बना हुआ खाना होता था वो तो कितना स्वादिष्ट होता था ना।
0: बिल्कुल, और उसका अच्छा स्वाद आज भी याद है हम लोग को।
1: याद भी दीदी आंख बंद करके हम याद कर रही हैं। बिल्कुल याद आ गया। वैसे दीदी एक बात बताऊं, हम जब आप ये खाने पीने की बात कर रही हैं तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, जो आजकल के हमारे जो बच्चे हैं ना, हैं तो वो बहुत समझदार, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जब खाने की टेबल पर पहुंचते हैं तो उनको जितना कुछ दिखता है सब कुछ ले लेते हैं।
0: हाँ।
1: पर है तो उनका पेट छोटा सा, खा नहीं पाते और वो नुकसान होता है। तब ऐसे में

0: से मिस उनका सारा खाना वेस्ट हो जाता है।
1: और हमें क्या करना चाहिए, हमारे साथियों को बताना होगा भाई।
0: हाँ, तो इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि हमें पहली बात तो ज़िद नहीं करनी चाहिए कि
1: हाँ,
0: हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमारे प्लेट में सब कुछ चाहिए।
1: थोड़ा थोड़ा करके लेना है।
0: हाँ,
1: पहले एक चीज़ खानी है, ख़त्म हो जाएगा फिर हम दूसरा ले लेंगे।
0: हाँ,
1: है ना,
0: फिनिश करके फिर दोबारा ले लीजिए, और उतनी ही थाली में खाना लीजिए कि जितना आप खा सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद आप दोबारा ले लीजिए, तिबारा ले लीजिए, जिससे कि हमारी जो खाने की बर्बादी नहीं होगी।
1: सही,
0: और वो खाना जूठा होने की वजह से फिर कोई खाता भी नहीं है, वेस्ट हो जाता है, है ना।
1: वैसे दीदी देखिए ना, जो खाना हमारी प्लेट तक पहुंचता है उसके पीछे हमारे जो किसान होते हैं उनकी कितनी मेहनत होती है। हम तो जरा सी धूप में जाते हैं और लगता है कि बस बस अब कूलर पंखे एसी में बैठ जाएं, लेकिन जो किसान है ना, उसको धूप दिखता है ना, बरसात ना ठंड, वो अपने खेतों में लगे रहते हैं और तब जाकर हमको खाना मिल पाता है। तो ऐसे में बच्चों, आप कभी जाकर देखिए, कभी अगर आपको अवसर मिले तो अपने बड़ों के साथ जाइए और घूम के देखिए गाँव में, उन खेतों में कैसे किसान जो हैं हमारे वो काम करते हैं और कितने मन से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बेमन से, वो अपने खेतों में बड़े प्यार से लगे रहते हैं,
0: पूरे मन से, पूरी मेहनत से लगे रहते हैं। तो बच्चों, खेल कूद मौज मस्ती तो सब ठीक है, लेकिन खाने की बर्बादी करना यानी कि अपनी थाली में खाना छोड़ना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि इससे अन्न का अपमान भी होता है।
1: सही कहा दीदी।
0: और ज़रा सोचिए कि वो भोजन जो हमने थाली में छोड़ा है उससे कितने लोगों का पेट भर सकता है।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी। और दीदी एक चीज़, जब हम लोग खाने की बात कर रहे हैं, एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें पानी भी जो लेते हैं पूरा ग्लास भर के ले रहे होते हैं और वो आधा पीते हैं आधा छोड़ देते हैं, तो ये भी है ना, आपको ऐसे लगेगा कि तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर ऐसे सब लोग करते हैं तो देखिए कितना पानी भी वेस्ट हो रहा है। और अब तो हमको वो समय आ गया है कि हमें हर चीज़ बचानी है, जो पीने का पानी है वो भी बचाना है, वो भी वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि जब हम फिल्टर का पानी इस्तेमाल करते हैं, पानी, एक थोड़ा पानी फिल्टर होने में कितना ज़्यादा पानी नुकसान हो जाता है।
0: हाँ, तो उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, कपड़े धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वो पानी वेस्ट ना हो।
1: तो ऐसी छोटी छोटी बातों का हम सबको ध्यान रखना है। और देखिए बच्चों, ऐसा साथियों, ऐसा है कि जब हम कोई बात बचपन से सीख रहे होते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बस जाती है। जब आप बड़े भी होंगे तो आप वो काम करते रहेंगे। तो हमारी जो नन्ही दुनिया है, हमारा ये उद्देश्य तो रहता है कि अपने साथियों से मिले, साथ ही हम आपको कुछ बातें बार बार याद दिलाते हैं जिससे वो आपकी आदत में शामिल हो जाए, है ना दीदी।
0: बिल्कुल,
1: जैसे देखिए हमें भी हमारे छोटे में सिखाया गया कि जब आप कमरे से बाहर निकले तो बिजली ज़रूर बंद कर दें, लाइट बिल्कुल नहीं जलनी चाहिए, खाना उतना ही लें जितना खा सकें। तो वो छोटी छोटी बातें हम आज भी फॉलो करते हैं।
0: हाँ, और आप जब भी थाली में खाना छोड़ें तो उस किसान को ज़रूर याद रखिए कि जो जाड़ा, गर्मी, धूप, बरसात, जिनके लिए एक बराबर होता है, वो इतनी मेहनत करते हैं कि हम सबको अन्न मिल सके, हमारा पेट भर सके। और बच्चों, अपने घर में ही देखिए, अपने पापा को देखिए, अपनी मम्मी को देखिए, पापा आपको कितनी मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा अच्छा भोजन खिला पाएँ। और अपनी मम्मा को देखिए कि कितनी मेहनत और प्यार से आपके लिए वो खाना बनाती हैं। इतनी लोगों को मेहनत के बाद हमारी थाली में भोजन मिलता है हमको, और हम उसको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाते। तो बच्चों, जितना खाना खाना है उतना ही लें, अब से वादा करो कि थाली में भोजन कभी नहीं छोड़ोगे आप।
1: बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे दीदी। और अपने नन्हे साथियों की तरफ से मैं आपसे वादा करती हूँ, और इसी बात पे एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल।

0: हाँ तो बच्चों, खाने पीने की बातें तो हो गई, अब कुछ जानकारी हो जाए।
1: हो जाए भाई। तो दीदी आज क्या जानकारी दे रही हैं आप?
0: आज हम लाए हैं बच्चों के लिए जानकारी, समुद्र की एक ऐसी जीव की कहानी जो कि कभी डराती है, कभी चौंकाती है, हमेशा हैरान करती है। बूझो तो क्या
1: क्या है?
0: शार्क।
1: ओहो शार्क। वैसे दीदी नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई समुद्री रहस्य शुरू होने वाला है।
0: बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन आज हम शार्क से डरेंगे नहीं, बल्कि उसके बारे में मजेदार बातें जानेंगे।
1: तो साथियों, क्या आप जानते हैं शार्क जो है वो समुद्र की बहुत पुरानी रहने वाली है। ये डायनासोर से भी पहले से धरती पे मौजूद है, समझे?
0: यानी कि शार्क तो समुद्र की दादी नानी, इससे भी पुरानी, बहुत पुरानी है ना?
1: हाँ हाँ। और पता है दीदी, दुनिया में शार्क की करीब 500 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं।
0: मतलब एक नहीं, दो नहीं, पूरे 500।
1: पूरे 500, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ पतली कुछ छोटी। लेकिन सब एक जैसी नहीं। और आपको पता है सबसे बड़ी शार्क कौन सी है?
0: कौन सी है? वो है व्हेल शार्क। नाम सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक होगा।
1: हाँ दीदी।
0: लेकिन नहीं, यह बहुत ही शांत होती है और छोटे छोटे जीव खाती है ये।
1: यानी कि नाम में शार्क लेकिन स्वभाव में बहुत शांत।
0: बिल्कुल। अब एक और मजेदार सवाल कि शार्क के शरीर में हड्डियां होती हैं या नहीं होती?
1: अरे भाई मैं तो कहूंगी होती है, बिल्कुल होती होगी।
0: बिल्कुल गलत। शार्क की हड्डियां नहीं होती, उनका शरीर कार्टिलेज से बना होता है।
1: ओहो, यानी नरम लचीला और पानी में फिसल फिसल कर तैरने वाला शरीर है ना?
0: हाँ। और अब ध्यान दीजिए, शार्क के पास एक खास सुपर पावर भी होती है।
1: क्या सुपर पावर? तो क्या वो उड़ सकती है क्या?
0: अरे नहीं नहीं। हाँ? लेकिन वो पानी में बहुत हल्की हल्की बिजली जैसी तरंगे महसूस कर सकती है।
1: अच्छा, वाह वाह वाह।

वैसे दीदी, अब आपने इतनी सारी तो बातें कर ली और अभी हमारे पास ढेर सारी बातें और हैं, पर जो हमारे कार्यक्रम का समय है वो हो रहा है पूरा। तो अपने नन्हे साथियों से अब हम लेते हैं विदा। तो प्यारे बच्चों, जय हिंद।

अभी नन्हे मुन्ने सुन रहे थे अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल फिट, फाइन और शानदार होंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने आज अपने दिल की सेहत के साथ साथ अपने रिश्तों की सेहत का भी ध्यान रखा है? जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि परिवार और रिश्तों की सेहत की भी बात होगी। क्योंकि आज है एक बेहद ख़ास दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों, हम रोज़ अपनी बॉडी फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, लेकिन क्या हम अपने रिश्तों को भी उतना ही न्यूट्रिशन देते हैं? दोस्तों, आज का जो हमारा चर्चा का सेगमेंट है, इसी बात को समर्पित है कि कैसे एक स्वस्थ परिवार हमारे जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है और कैसे हम अपने परिवार के साथ मिलकर मानसिक और शारीरिक दोनों को बेहतर जो स्थितियाँ हैं उन्हें बना सकते हैं। और दोस्तों, परिवार सिर्फ एक शब्द भी नहीं है, ये वो एहसास है जो हमें हर मुश्किल में संभालता है। जब दिन भर की थकान के बाद आप घर आते हैं, माँ की मुस्कान, पापा की चिंता, भाई बहन की मस्ती आपका स्वागत करती है, तो यकीन मानिए आपकी आधी थकान वहीं ख़त्म हो जाती है। परिवार हमारे जीवन का एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होता है। आपकी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ स्ट्रेस और टेंशन आम हो गई है, वहीं एक खुशहाल परिवार हमें मेंटल स्ट्रेंथ देता है। और रिसर्च भी कहती है कि जिन लोगों के पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है और ज़्यादा वो खुश रहते हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी से दूर रहना है, लेकिन असली हेल्थ है शरीर, मन और रिश्तों का संतुलन। जब परिवार में प्यार और समझदारी होती है तो स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और सबसे ज़रूरी, दिल खुश रहता है। लेकिन अगर घर में तनाव हो, झगड़े हो, तो उसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। इसलिए याद रखिए, हेल्दी फैमिली हमेशा हेल्दी आपको बनाकर रखती है। और भी बातें करेंगे हम सेहत से संबंधित और परिवार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, हमारे आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: मन की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे परिवार की, क्योंकि परिवार की बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। दोस्तों, एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस छोटी छोटी आदतें अपनाइए, जैसे रोज़ कुछ समय परिवार के साथ बिताइए, साथ में खाना खाइए और एक दूसरे की बातों को, एक तरीके से ध्यान से बातों को सुनिए। और सबसे ज़रूरी है कि थोड़ा मोबाइल से दूर रहिए। क्यों ना, आज के टाइम पर हम देखते हैं कि बहुत लोग मोबाइल में बिज़ी रहते हैं, साथ बैठे होने के बावजूद भी उनका अधिकतर समय मोबाइल में ही चला जाता है और इससे कहीं ना कहीं दूरियां तो ज़रूर बनती ही हैं। तो क्यों ना आज इस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक छोटा सा संकल्प लें कि हम अपने परिवार को समय देंगे। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है प्रतिवर्ष 15 मई यानी आज के ही दिन मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में स्थापित ये दिवस समाज में परिवारों के महत्व को पहचानने और परिवार कल्याण, समानता और विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि परिवार किस प्रकार समुदायों को आकार देते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समावेश के क्षेत्र में प्रगति को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, 2026 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का जो विषय है वो

ये है कि परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, और ये इस बात पर केंद्रित है कि आर्थिक और सामाजिक असमानताएं जो होती हैं वो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र कल्याण को कैसे प्रभावित करती हैं, और समानता को बढ़ावा देने वाली नीतियों और मजबूत पारिवारिक सहायता प्रणालियों को प्रोत्साहित करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2026 की थीम है परिवार असमानताएं और बाल कल्याण, यानी फैमिलीज इनइक्वलिटीज एंड चाइल्ड वेलबींग। ये थीम असमानताओं को कम करने, बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए परिवार केंद्रित नीतियों के महत्व और 2030 एजेंडा के संदर्भ में परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। और अगर हम थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा जाने, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के इतिहास की ओर अगर जाते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र ने 1980 के दशक में परिवार से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना शुरू किया था, और 1983 में ही सामाजिक विकास आयोग ने राष्ट्रीय विकास में परिवारों की जो भूमिका है उस पर एक तरह से प्रकाश डाला, और 1989 में महासभा ने 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष घोषित किया। और इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए महासभा ने जो है 1993 में संकल्प A/RES/47/237 पारित किया, जिसके तहत 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में वार्षिक रूप से इसे मनाना जाना तय हुआ। और इसकी स्थापना के साथ ही हर वर्ष हम सभी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। और जहाँ तक हम बात करते हैं परिवार की, तो परिवार एक तरीके से हमारा अगर हमारे साथ है तो वो एक संसार की तरह ही होता है, क्योंकि हमारे सुख दुख हमारी हर परिस्थितियों में हमारा परिवार अगर हमारे साथ होता है तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। हमारे अंदर की जो अलग भावनाएं होती हैं या एक तरीके से जो अकेलापन होता है वो कहीं ना कहीं हमें कभी महसूस ही नहीं होता है, वो चीज़ें हमारे से हमेशा दूर रहती हैं, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि अकेलेपन की वजह से व्यक्ति जो है तनाव की ओर बढ़ जाता है, और उसके साथ ही उसकी मेंटल हेल्थ, उसका स्वास्थ्य, बहुत सारी चीज़ें उसके लाइफ से उसके जीवन में उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिसकी वजह से वो एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। तो परिवार का महत्व हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी बात का संदेश देने के लिए हर वर्ष वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हम लोग मनाते हैं। फिलहाल हम और भी बातें करेंगे हमारे प्रोग्राम में, हमारे अगले सेगमेंट में, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

तो दोस्तों अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की यानी कि प्रेरणा पुंज की। और हमारा आज का जो प्रेरणा पुंज है उसमें हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई और एक नई पहचान दी। एक ऐसा नाम जिसके बिना हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है। मैं बात कर रहा हूं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 को उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे त्रिवेदी जी ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद ही साधारण परिस्थितियों में की। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने आत्मबल और मेहनत के दम पर ज्ञान की दुनिया में अपना अलग स्थान बनाया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी जैसी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और यही बहुभाषी ज्ञान आगे चलकर उनके लेखन की शक्ति बना। द्विवेदी जी का सबसे बड़ा योगदान था सरस्वती पत्रिका का संपादन। 1903 से 1920 तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया और इसे हिंदी साहित्य की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका बना दिया। उनके संपादन काल को हिंदी साहित्य में त्रिवेदी युग के नाम से जाना जाता है और इस युग में उन्होंने न केवल लेखन किया बल्कि कई नए लेखकों को भी मंच दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को सामाजिक सुधार, राष्ट्रभक्ति और नैतिक मूल्यों से जोड़ा और इसके साथ ही जो इनकी लेखनी थी वो बहुत ही स्पष्ट, प्रभावशाली और शिक्षाप्रद थी। उन्होंने अपने लेखों और निबंधों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और बुराइयों पर प्रहार किया। उनकी रचनाएं हमें सिखाती हैं कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम भी है। उनके प्रमुख विषय थे समाज सुधार, राष्ट्रप्रेम, नैतिकता और शिक्षा का महत्व। उनकी प्रमुख रचनाओं पर अगर हम नज़र डालें तो हिंदी भाषा और साहित्य, कविता क्या है, संस्कृत साहित्य का इतिहास, निबंध संग्रह, इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध किया और उसे एक मजबूत आधार दिया। हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग एक स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग में साहित्य ने न केवल भावनाओं को ही नहीं बल्कि समाज को भी दिशा दी और इस समय कई महान लेखक और जिनके नाम अगर हम देखें तो उनमें से प्रमुख हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, इन सभी को आगे बढ़ाने में त्रिवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। आज हिंदी साहित्य जिस ऊंचाई पर है उसमें उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तो दोस्तों अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि आज का स्पेशल सेगमेंट खेल जगत की। और हमारे स्पेशल सेगमेंट खेल जगत में आज हम बात करने जा रहे हैं उस खिलाड़ी की जो गोल पोस्ट के सामने खड़ा होकर पूरी टीम का हौसला बन जाता है, जिसके सामने विरोधी टीम के स्ट्राइकर भी सोच में पड़ जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के स्टार हॉकी गोलकीपर पीआर श्रीजेश की। दोस्तों 8 मई 1988 को केरल के एर्नाकुल जिले में जन्मे श्रीजेश का पूरा नाम परट्टू रविंद्रन श्रीजेश है। शुरुआत में उनका सपना था कि वो एथलीट बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें हॉकी की ओर मोड़ दिया। और फिर क्या था, उन्होंने गोल कीपिंग को चुना, जो हॉकी का सबसे कठिन और जिम्मेदार रोल माना जाता है। गोलकीपर वही होता है जो पूरी टीम की आखिरी उम्मीद होता है, और सृजेश ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सृजेश ने अपने करियर की शुरुआत जूनियर स्तर से की। 2006

हेमेवे साउथ एशियन गेम्स में भारतीय टीम का हिस्सा बने। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान बनाई और 2011 के बाद वे भारतीय टीम के मुख्य गोलकीपर बन गए। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। चोटें, हार, आलोचना, सब कुछ देखा उन्होंने। हाँ, पर कभी भी उन्होंने वापसी नहीं की। और सबसे पहले मतलब जब वापसी की उन्होंने वापसी, तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होकर, और भी ज़्यादा मजबूत बनकर वो वापस आए। दोस्तों, 2014 का जो साल था वो सृजेश के लिए बेहद ही खास रहा। एशियन गेम्स 2014 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता और सृजेश ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। और 2014 चैंपियंस ट्रॉफी में उनके शानदार सेव ने उन्हें दुनिया के टॉप गोलकीपर्स में शामिल कर दिया। और यहीं से अगर देखें तो दोस्तों, 2021 में खेले गए टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में जो हुआ वो इतिहास बन गया। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता, वो भी ब्रांच मेडल। और उस मैच का जो आखिरी मिनट था, वो सृजेश का वो शानदार बचाव आज भी हर भारतीय के दिल में बसता है। वो सिर्फ एक सेव नहीं था, वो करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की रक्षा थी। अगर बात करें उनके अवार्ड्स और सम्मान की, तो उन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2015 में अर्जुन अवार्ड से, और उसके बाद 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद FIS द्वारा इन्हें वर्ल्ड का बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड भी 2021 में मिला। और ये सिर्फ देखें तो सिर्फ अवार्ड्स ही नहीं है, ये उनकी मेहनत, समर्पण और देशभक्ति की पहचान है। दोस्तों, सृजेश के नाम कई शानदार रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं, जैसे कि 300 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच का खेलना, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान के तौर पर उन्होंने 2016 से पदभार संभाला था। उसके बाद कई बार ये मैन ऑफ द मैच भी बने। पेनल्टी कॉर्नर सेव में इनको एक कह सकते हैं विशेषता हासिल है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने भारत की हॉकी को फिर से गौरव दिलाया। और भी बातें करेंगे और भी कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने बहुत सारी बातें की, हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस क्या है और हमें इसे क्यों मनाना चाहिए। उसके साथ ही हमारे जो प्रेरणापुंज थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनका क्या योगदान रहा है हिंदी साहित्य में, और साथ ही खेल जगत में हमने जाना पीआर सुजेश के बारे में और उन्होंने भारत में जो भारत की जो हॉकी है उसको किस लेवल पर और किस पर कितना अपना योगदान दिया, उसके उसको एक जो उनका उसका पुराना जो अस्तित्व था उसको जिस हिसाब से उन्होंने आज के समय में आज के मॉडर्न टाइम में उस हिसाब से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हॉकी को एक नए लेवल पे लेकर आए, उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है हॉकी के लिए। और अब हम आगे बात करते हैं हमारे जो भी यूथ साथी हैं उनसे कि देखिए इस समय जो समय चल रहा है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और साथ ही साथ जो इस समय वेदर या मौसम की अगर हम बात करते हैं तो मौसम अपना जो रुख है वो थोड़े थोड़े समय में बदल रहा है। कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो कभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जा रहा है, तो कभी बारिश सा मौसम होता है और बारिश भी हो जाती है, और इसके साथ ही साथ कभी तो आंधी तूफान तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ से इस समय एक दो बार ऐसा हुआ और आ भी रहे हैं लगातार रैंडमली जो देखा जाए तो ऐसी सिचुएशंस में आप सभी जितने भी हमारे युवा दोस्त हैं श्रोता हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी पढ़ाई बराबर चलती रहेगी, आप पढ़ेंगे तो आप अपने सिलेक्शंस की तरफ अपने कैरियर की तरफ आपने जो भी एग्ज़ाम्स को टारगेट किया हुआ है उसको हिट कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि समय प्रबंधन करना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा जो दिन है हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा पूरा का पूरा दिन कब गुजर गया, और शाम होते होते रात होते होते जब हम हमारा वक्त सोने का होता है तब हमें एहसास होता है कि आज हमने तो कुछ ख़ास पढ़ाई नहीं की। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ अगर आप जूझ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर ये बात है कि आप अपने शेड्यूल को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैनेज करिए, उसको लिखिए कि भाई आपने जो भी डिसाइड किया है आज का जो भी टारगेट है, आपको जो भी कुछ कंप्लीट करना है, आपने डिसाइड किया कि आपने आज आपको इतने टॉपिक्स को क्लियर करने हैं, इतने टॉपिक्स को पढ़ने हैं, तो उस हिसाब से उसको मोटिवेटेड होकर आप पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए ताकि आप समय पे आप अपने टारगेट को सही तरीके से अचीव कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमने आपको बताया कि सेहत का ध्यान रखना बेहद ही ज़रूरी है, और उसके साथ ही इस समय अगर आप सोशल मीडिया या फिर अगर मोबाइल में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आपके टाइम को तो वेस्ट कर ही रहा है।

और कहीं ना कहीं समय के साथ आप भी पीछे जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो आपको आपकी पढ़ाई से कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं या कह सकते हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप उन सारी बातों का ध्यान रखें। और ध्यान रखने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आपने किस एग्ज़ाम को टारगेट किया है और उस लेवल की आप मेहनत कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि आपका जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप अपने टारगेट को, आपका जो भी एग्ज़ाम है, आप जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे इस एग्ज़ाम से क्लियर करना है, तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगी वो करने में। इसलिए जितने भी हमारे युवा दोस्त हमें सुन रहे हैं, सभी लोग इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो टाइम चल रहा है, जो इस समय कॉम्पिटिशन्स हैं, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो इतना ज़्यादा उसमें फ़ाइट होती है कि एक एक सीट पे 100-200 बच्चों की फ़ाइट होती है। तो अगर इस कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, इस फाइट को क्लियर करना है, तो आपको कुछ हट कर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क या स्ट्रगल मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बेहतर तरीके से अपने रिजल्ट को ले आ पाएंगे और अपने टारगेट की तरफ, आपका जो भी एम है, आपने जो भी डिसाइड किया है, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, उसे आसानी से पा सकते हैं। फिलहाल और भी बातें करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका सही उत्तर हम हमारे अगले दिन के कार्यक्रम में आपको बतलाते हैं। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो हमारा जो कल का प्रश्न था वो ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है भूमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। 1885 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और इसी कड़ी में हमारा जो आज का प्रश्न है वो ये है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। एक बार फिर से सुनिएगा, शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। जो भी श्रोता हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं उनका हम नाम हमारे अगले कार्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। और आप अपने सही उत्तर को, अपने जो भी आपका आंसर है उसे आप पोस्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप कमेंट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8004926250। एक बार आप फिर सुनिएगा, व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो आपके सही उत्तर का रहेगा इंतजार। और इसी के साथ चलते चलते सुनते हैं हमारे आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप हमें रिव्यू कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी में, जो कि है yuvvaniald@gmail.com। तो हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में अगले दिन। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: स्वीकार करना ही है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और बिंदु का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
3: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर UAE ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और UAE के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉक्टर जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने

0: आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वितिदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शशिकांत त्रिपाठी से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, स्वस्थ मृदा स्वस्थ कृषि। शाम 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर सौम्या कृष्णा की वार्ता, परिवार है मानव जीवनस स्तंभ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे शिल्पी खरे के स्वर में गीत और भजन। रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम अक्षय वट, इसमें सुनिएगा डॉक्टर अपराजिता चौधरी से की गई बातचीत, बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात 9:30 पर और रात 10:00 सुनिएगा नाटक रास्तों का चक्रव्यूह, लेखक राजेंद्र तिवारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आपको सुनवाएंगे कमला बोस का गायन। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 पर सुनिएगा पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती। रात 10:30 पर होगा संगीत का अखिल भारती कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर सौम्य बहादुर से की गई बातचीत प्रसारित की जाएगी, वृक्षारोपण से पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभ। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर शाश्वत कुमार की वार्ता सुनिएगा ओरल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर हम आपको सुनवाएंगे संदीप चक्रवर्ती का संतूर वादन और दिन में 12:15 पर होगा रमा शंकर का गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम होता है सुबह 8:45 पर। सुबह 10:05 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोकगीत कलाकार रचना सरोज और अजय कुमार। पनघट कार्यक्रम में 1:15 पर ग्रामीण बहनें सुनेंगी नमिता अग्रवाल की वार्ता गांव में शिक्षा का स्वरूप। 2:30 पर आनंद लीजिएगा लोकगीतों का गायिका कृति श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम और हेम श्रीवास्तव। धरती के गीत कार्यक्रम में शाम 5:00 आपको सुनवाएंगे मानिक चंद पटेल और साथियों के स्वर में लोकगीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। इसमें कल का आकर्षण होगा आज की शाम आपके नाम, जो कि केंद्रित होगी पार्श्व गायक उदित नारायण पर। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर डॉक्टर भूरेलाल की वार्ता सुनिएगा अज्ञे वर्तमान संदर्भ में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर आप सुनेंगे रमा सेन के स्वर में गीत और भजन। सबरस कार्यक्रम का समय होगा रात 8:30 पर। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार, हेलो।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है देश गान।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा यूएई देशस्य राष्ट्रपतिः शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान अबुधाबी नगरे ऊर्जा सहकारस्य द्विपक्षीय व्यापारस्य च विषये चर्चां कृतवन्तौ। उभौ नेतारौ रक्षा पेट्रोलियम निवेशादि विषये प्रमुखानां सन्धिपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतवन्तौ। एस जयशंकरः 26,000+ वर्षे ब्रिक्स विदेश मंत्रिमंडलस्य सभायां प्रभावपूर्ण बहुपक्षवादं प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकृतवान्। एनटीए इति अभिकरणं जूनमासस्य 21 दिनांके 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी परीक्षा पुनः आयोजयिष्यति। शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानेन परीक्षा प्रक्रियायां निष्पक्षतां पारदर्शितां च आश्वासितम्। भाजपेति दलस्य विधायकः रथीन्द्र बसुः पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नूतनः सभाध्यक्षः निर्वाचितः। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग सेट्टी इत्येतयोः शीर्ष पुरुषयुगलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त अरब अमीरातस्य यूरोपीय देशानां च 6-दिवसीय यात्रायाः प्रथमे चरणे अबुधाबी नगरे अस्ति। यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान इत्यनेन विमानपत्तने तस्य स्वागतं कृतम्, औपचारिक सम्मानश्च प्रदत्तः। यदा तस्य विमानम् एमिरती वायुक्षेत्रं प्रविष्टं तदा संयुक्त अरब अमीरातस्य F-16 युद्ध विमानेन तस्यानुरक्षणं कृतम्। ततः परं प्रधानमंत्रिणा मोदिना राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु वार्ता कृता। पश्चिम एशियायां प्रचलिते द्वन्द्वेन सम्बद्धानां वैश्विकापूर्ति समाह्वानानां मध्ये एषा वार्ता अभवत्। स्वस्य प्रारंभिके भाषणे प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना यूएई देशे सद्यः एव जातानां आक्रमणानां दृढतया निन्दा कृता।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करे और विनम्र का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: राष्ट्रपतिम शेख मोहम्मद बिन जायद इत्यमुम भ्रातेति शब्देन संबोधयन सह कठिन काले यूएई नेतृत्वेन प्रदर्शितस्य धैर्यस्य प्रशंसाम अकरोत्। सः अमीरात देशाय भारतस्य समर्थनं पुनरपि प्रतिपादितवान् तथा च वर्तमान वैश्विक संघर्षस्य काले संवादः कूटनीतिः चैव एकमात्रः समाधानः अस्ति।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् भारतं सर्वैः सहभागिभिः सह परिणामकारी बहुपक्षीय

0: केवलं थाईलैंड ओपन क्रीडायाः उपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स दलं चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्ध सप्तवादने भविष्यति। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरस्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ क्रीडांगणे मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं षट् स्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम
1: काहो सुरेमन भाई, का हाल बा खेती किसानी में?
0: औधो भैया, खेती किसानी की हाल चाल तो बढ़िया बा हो। अब देखा जौन तरह की गर्मी पड़त बा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो गर्मी तो पड़ता है बा। अब साथे साथ अपन खेती किसानी के काम धामो भी बहुत जोरान हो। काहे कि देखा इधर उरुद है, मूंग है, साग है, सब्जियन के खेती में देखा इधर जो उन्हें निराई गुड़ाई देखभाल सब चलता है बा।
1: बिल्कुल भैया।
0: और साथे साथ भैया देखा जौन आगे वाली फसल बा, अपन देखा जौन धान के जौन नर्सरी के जौन भी तैयारी पहलन से किसान भैया बहनिया रे ना अपन माटी के देखा जौन है जाँच परख भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: से किसान भैया बहनिया ने और साथे साथ अपन माटी की जो जांच बा, मृदा परीक्षण बा, इके बहुत जरूरत बा।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल।
0: सब किसान भैया बहनी हरिन से तो हम तो यह कहब उधो भैया कि जौन ये बढ़िया टेम बा, ये अपन जौन है समय का जौन सदुपयोग करें और मृदा परीक्षण जरूर करें।
1: कह गया हो सुरेमन भाई, देखा न?
0: हाँ हाँ।
1: जैसे देखा कोनो बीमारी हो तो जब डॉक्टर के लगे जात है,
0: हाँ
1: तो भैया देखा डॉक्टर दवा ना ही देते हैं।
0: हाँ।
1: वो कहिए भैया पहले इनका एक्सरे कर ले।
0: कह गया।
1: तो भैया वह काम जौन है अपने धरती के जौन है,
0: हाँ।
1: पहले एक्सरे करावे, ओका
0: हाँ।
1: जांच
0: हाँ।
1: करावे।
0: कह गया।
1: तो भैया जब माटी के जांच करा ली है ना, तो उहमा देखा पता चले कि कौने पोषक तत्व तो का कमी बाटे,
0: हाँ।
1: वो हिसाब से भैया देखा हमें खाद पानी अगर दिया जाए ना,
0: हाँ।
1: तो देखा माटी के संरचना में सुधार होए। और जौन आज भैया देखा समस्या ई बकी भैया, रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक जौन है
0: हाँ हाँ
1: ई भैया देखा इतना अंधाधुंध उपयोग किया जात है,
0: हाँ
1: जौने के कारण कि अपने माटी के संरचना देखा दिन ब दिन बिगड़ जात है।
0: ये तो बहुत नीक बात बताया हो अवधु भाई। अब देखा जौन अपन माटी की जौन गुणवत्ता बढ़िया बनी रहे, इके खातिर देखा कि अपन जौन खेत के जौन मेड़बंदी बा, पहले तो भैया देखा मेड़बंदी कई लें
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और अपन खेत के जौन उबड़ खाबड़ होए, ऊपर नीचर होए, अतल बीतल होए, तो अपन माटी का बढ़िया बराबर कर लें,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ताकि अपन माटी जैसे कि अपन जौन भी सिंचाई पताई होए, वर्षा के पानी होए, तो वह अपन चारू डाण में बराबर बराबर भर जाए और ताकि माटी कहूँ भी ऊसर पातर न रहे।
1: बिल्कुल भैया सही कह गया। देखा पहले के जौन पुरनिया कह गए हैं ना हो
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: खेती किसानी में देखा पहले भैया देखा देसी गोबर खाद पड़त रही,
0: हाँ हाँ
1: और साथे साथे भैया देखा सनई है ढैंचा के बुआई होत रही हरी खाद में।
0: हाँ हाँ
1: तो भैया सनई ढैंचा भी बोए के चाही, ओसे काबे अपने माटी के संरचना सुधार होए
0: हाँ हाँ
1: और मन जौन भी देखा पोषक तत्व तो हैं भैया वो उपलब्ध हुई हैं, मौजूद मिली हैं जौन है।
0: कह गया।
1: काहे से कि जौन है आज जब रासायनिक खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालत हैं, तो भैया कहीं न कहीं अपने सूक्ष्म पोषक तत्व तो का भी ह्रास होता है।
0: हाँ हाँ
1: तो इसलिए हरी खाद का उपयोग किसान भाई हरिन के जरूर करे के चाहिए।
0: और जैसे देखा भैया अब हिन बताया हुआ उधू कि आपन माटी में देखा जैसे कि जौन किसान भैया बहनी हरिन अपन रासायनिक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा जौन है मात्रा में प्रयोग करत हैं, तो बहुत

0: से अपन जौन लाभदायक कीट बा, चाहे देखा किचुआ हो और भी जौन देखा अपन
1: बिल्कुल
0: जीव जंतु बा, तो ऐसन दशा मा अपन जौन है ई रासायनिक खाद के प्रयोग किले से फसल मा भैया देखा बहुत सी अपन कीटनाशक जौन है जौन अपन लाभदायक बा वो जौन है नष्ट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, तो ओके नष्ट होए से अपन जौन माटी के गुणवत्ता बा जौन बढ़िया बनी रहा है वो हम देखा आगे जौन है बाधा हुआ आवत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया, देखा जौन पहले जैसे गोबर खाद पड़त रही
0: हाँ।
1: तो माटी के संरचना में देखा उसका भुरभुरापन बना रहत रहा
0: कही गया।
1: और साथे साथे अगर भैया खेत में केचुआ हैं
0: हाँ हाँ
1: तो भैया ओका चाली के जो है देखा नीचे के माटी ऊपर कई देत रहे ना, उमन हवा का भी जो है संचार बढ़िया होत रहा।
0: हाँ हाँ
1: और अब तो भैया है देखिए जब केचुआ ना है खेत में तो भैया देखा खेत का माटी पाथर हो जाता है,
0: कही गया।
1: तो ये लिए फसल भी उतना बढ़वार ना कह पावत। तो किसान भैया हरिन के चाहिए कि अपने देसी खाद का जरूर उपयोग करें हो,
0: हाँ
1: जौने से कि खेत में केचुआ का उपस्थिति बनी रहे जौन है।
0: कहिया। अब देखा जौन केचुआ अपन जौन माटी खाद बा, केचुआ माटी खाए से भी देखा जौन मल के दरिये से जौन माटी बा वो बहुत उपजाऊपन होत है।
1: बिल्कुल भाई।
0: और अगर किसान भैया बहनी हरिन सब देखा अपन सोच विचार ले हैं और केचुआ ज़्यादा से ज़्यादा खेत में भैया देखा अपन जौन रही हैं और केचुआ वाली खाद बनवाई हैं तैयार हुई, तो
1: बिल्कुल
0: हम
1: बिल्कुल।
0: समझे थे कि अपन खेत की जौन माटी के जौन गुणवत्ता बा ये तो बढ़िया बनी रही हो।
1: बिल्कुल। वो सूर्यमन भाई देखा एक बात और कहा, देखा आज एक थे दिवस बाटे
0: हाँ
1: बहुत
0: हाँ बतावा।
1: महत्वपूर्ण है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस।
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: भैया देखा हो ये अपन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल जौन है 15 मई के मनावा जाते हैं।
0: हाँ हाँ
1: और यह दिन भैया देखा परिवार के महत्व ओके सामाजिक आर्थिक जौन बा मुद्दा परिवार के संस्था के भैया देखा मजबूत करे के उत्तर से जौन है ये दिवस हर साल 15 मई के जौन है मनावा जात है।
0: अच्छा, ये तो बहुत नीक बात बताया हो। अब देखा जैसे परिवार वाली बात बताया तो परिवार भैया देखा अपन जैसे कि चाहे संयुक्त परिवार हो
1: बिल्कुल
0: चाहे
1: बिल्कुल।
0: एकल परिवार हो, हम तो यह कहा भैया कि अपन परिवार में कोनो तरह के देखा वाद विवाद ना हो के चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपस में हिल मिल के सुख दुख में एक दूसरे के साथ दें,
1: बिल्कुल
0: लड़कन
1: बिल्कुल।
0: गदेलन का खूब पढ़ावें लिखावें, भैया खेती किसानी भी अच्छे तरीका से होए और
1: बिल्कुल
0: 4 पैसा आमदनी होई, तो हम समझते कि आपन जौन परिवार बा ये बढ़िया बना रही मजबूत बना रही और आपस में भाईचारा जरूर बनावें।
1: बिल्कुल भैया देखा आपस में भाईचारा से गांव के विकास के साथे साथे भैया देखा अपने जिला जवार और अपने देश के भी विकास होत
0: कही
1: रहो।
0: गया।
1: तो भैया देखा सुरेमन भाई बात बत कही तो होत रहे मुला आज पंचेती में का पंच भैया हरेन को सुनो हुआ ओके तनी बतावा।
0: हाँ हाँ वो भैया देखा बात बत कही मत, तो हम तो देखा इधर उधर होत रहें, मुला अपने किसान भैया बहनी हरिन का यह हम बतावा चाहिए थे कि आज ये ठो बातचीत बा कि स्वस्थ मृदा स्वस्थ कृषि।
1: बिल्कुल
0: भैया देखा ई विषय में जौन है अपन किसान भैया बहनी हरिन का शशिकांत त्रिपाठी से राकेश कुमार मौर्या भैया की जौन है बात बत कही तो सुनवावा जाई। हम समझे थे कि भैया देखा अपने किसान में अपने पंचायती में भैया बहनी हरिन जोहत हुई हैं कि आगे
1: बिल्कुल
0: जौन है
1: बिल्कुल।
0: ढोल मजीरा ठनक जाए फिर आगे जौन है बात बत कही
1: होत रहा
0: होए,
1: है बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज भैया ओंकार नाथ के गाई विकास गीत बा किसानों भैया बहनी हरिन सुनाए और अपन देखा तू हम सुना
1: तो सुनवा दे भैया
0: सुनाए।
2: मेरा हिंदुस्तानवा

0: हाँ भैया,
1: हाँ तो भैया
0: देखा ओंकारनाथ के जौन विकास गीत रही
1: हाँ
0: भैया होइ गे।
1: हाँ
0: अब देखा हो जौन बात बत कही होत रही कि माटी के जांच पंच भैया हरे जरूर करावें,
1: कहिए।
0: तो माटी के जांच कराए से जौन है देखा उनके अपने माटी में कौने पोषक तत्व तो के मात्रा के कितनी मात्रा बा ये सब देखा जानकारी हो जात है।
1: हाँ
0: और जौन कहत रहे कि जौन बात बत कही बा भैया देखा कि स्वस्थ मृदा और स्वस्थ कृषि
1: हाँ
0: ये का बात है और कैसे बा, यह पे देखा शशिकांत त्रिपाठी से राकेश कुमार मौर्य भैया बतियान हैं।
1: हाँ हाँ
0: हम तो कहा पंच भैया रिन के सुनवाए दे और तुहू तो सुना।
1: हाँ हाँ सुनवाई दे।
2: किसान भाई खेती किसानी करत बाटे न, और खेती किसानी करत करत उनका ये अनुभव होत होए कि भाई अगर माटी खराब बा तो ढंग से में पैदावार ना होत, अगर कुछ पैदावार भी होत है तो देखे में आवत भाई उसे तमाम तरह के दिक्कत भी आवत है। जैसे मनई के स्वास्थ्य जरूरी होत है वैसे माटी के भी स्वास्थ्य जरूरी होत है। जब माटी स्वस्थ रहे तो ओकर फसल भी स्वस्थ होए, अगर हम ओमे से जौन भी पैदावार ओकर सेवन करब खाब तो हमारे लिए भी स्वास्थ्य बढ़िया रहे। आज देखे में आवत माटी के गड़बड़ भय से तमाम तरह के जौन फसल में ऐसे तत्व उत्पन्न हो जाते हैं जौन से बेरामी भी फैलत बाटे है, और काफी कुछ जौन मनई के शरीर के जरूरत रही है चाहे वो खनिज तत्व हो चाहे विटामिन मिनरल्स हो वो कहूँ न कहूँ माटी में कमी आई गई बाटे। जौने अवस्था से देखा जाए तो फसल में भी वो नहीं मिलत तो हमें सब कहाँ से मिले। तो जरूरी बात माटी के स्वास्थ्य बनाए रखा जाए, माटी के स्वास्थ्य कवने तरीके से बिगड़त है उसका स्वास्थ्य रखे बेरे का उपाय कही जाते है, यही सब के देखते हुए आज बात बत कही में शामिल किया गया बात स्वस्थ मृदा स्वस्थ कृषि ये पे बात करे खातिर आज कार्यक्रम आए बटन डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी जी जौन की इस सब के विशेषज्ञ बाटे। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है, एक विशेषज्ञ के नाते आज यहाँ पे थोड़ा विस्तृत रूप से आप बतावें फरियाए के बतावें कि स्वस्थ मृदा स्वस्थ कृषि का एकर संबंध बाटे है कैसे हो एकर बारे में बतावें आप।
3: किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फसलों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा,
2: जी।
3: और फसल ठीक नहीं है तो मानव का भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा,
2: जी।
3: क्योंकि हम उन्हीं फसलों के माध्यम से ही पोषक तत्व तो हम भी प्राप्त करते हैं।
2: जी।
3: तो पृथ्वी पर जो मृदा है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, हमारा जीवन मृदा के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है,
2: जी।
3: क्योंकि यह हमें भोजन एवं वस्त्र प्रदान करने के साथ साथ हमारे वातावरण एवं जल को भी शुद्ध करती है।
2: जी।
3: स्वस्थ फसल के उत्पादन हेतु तो मृदा का स्वास्थ्य जो है वही एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जब हम मृदा के महत्व को समझने लगते हैं तो निश्चित रूप से हम उनके स्वास्थ्य के बारे में भी सोचने लगते हैं और सोचना भी चाहिए, क्योंकि उनके स्वास्थ्य की अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हमारे फसलों का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आज का जो वर्तमान परिदृश्य है जिसमें मृदा का जो स्वास्थ्य है वह एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है,
2: सही कहा बाटे ना।
3: खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मृदा का प्रबंधन और उसका स्वास्थ्य ठीक प्रकार से बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है।
2: तो ये कैसे बनावा रखा जाए करे का अवस्था से गुजरे करे बताओ आप जो।
3: देखिए जो मिट्टी है वह हमारी स्वस्थ कैसे बनी रहे वह मुख्य रूप से तीन बातें उसमें शामिल है।
2: अच्छा।
3: जो पहली बात है कि मृदा की भौतिक अवस्था, तो जो मृदा की जो भौतिक अवस्था है वह ठीक रहे,
2: अच्छा।
3: और मृदा की भौतिक अवस्था में जो चीजें शामिल हैं उसमें उसकी संरचना कैसी है,
2: अच्छा।
3: उसका कणाकार कैसा है, और उसमें क्षरण तो नहीं हो रहा है, उसमें पानी की मात्रा है कि नहीं है, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है भौतिक अवस्था में कि उसका जो स्थूल घनत्व है और कण घनत्व है वह व्यवस्थित है कि नहीं है,
2: जी।
3: ये सब बातें भौतिक अवस्था में आती हैं। और दूसरी जो बातें हैं वो रासायनिक है, तो रासायनिक अवस्था जो रासायनिक दृष्टिकोण से अगर हम मृदा स्वास्थ्य को देखते हैं तो मृदा की जो पैतृक क्षमता है
2: जी।
3: और वो पैतृक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है,

0: क्षमता में क्या है कि उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, कहने का मतलब कि उसमें उसमें कार्बनिक पदार्थ कितना है,
1: हाँ
0: उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा कितनी है, जिसे हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं।
1: जी, और
0: द्वितीयक पोषक
1: सूक्ष्म
0: तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है,
1: जी,
0: सल्फर है, इसकी मात्रा उचित है, पौधों के लिए पर्याप्त है कि नहीं है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं, आजकल नाम तो सूक्ष्म पोषक तत्व है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की अगर मात्रा बहुत कम है मिट्टी में तो वह हमारे पौधों की उपज को कम कर देगी और उसमें जो पोषक तत्व की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी।
1: सही कहा
0: जैसे
1: सर
0: जिंक
1: आपने।
0: है,
1: जी
0: आयरन है, मैग्नीज है, कापर है, ये तत्व तो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। अगर मिट्टी में नहीं है तो पौधों में नहीं आएंगे, और पौधों में नहीं आएंगे तो हमारे शरीर में कैसे आएंगे।
1: जी।
0: तो मिट्टी का स्वास्थ्य और पौधों का स्वास्थ्य और मानव का स्वास्थ्य तीनों
1: एक दूसरे से जुड़ा
0: एक
1: है।
0: दूसरे से उनका जुड़ाव है। इसी प्रकार से इन सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ हम मिट्टी के स्वास्थ्य में एक बात और देखते हैं
1: जी
0: कि आजकल किसान जो है ये नहीं समझ पाते कि हम पराली जलाने लगते हैं, जो फसलों के अवशेष हैं उनको जलाने लगते हैं, तो उनको ये नहीं पता है कि मिट्टी में बहुत सूक्ष्म तत्वों के साथ साथ उसमें सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं।
1: जी।
0: जो सूक्ष्म जीव हैं वो बैक्टीरिया हैं, वो फंजाई हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हैं, माइकोराइजा हैं, जो पोषक तत्वों का जो अनुपलब्ध मात्रा है, पोषक तत्वों की जो अनुपलब्ध मात्रा है मिट्टी में उसको उपलब्ध कराने में वो सहायक है, वो सूक्ष्म जीव
1: माने
0: है।
1: अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जैसे हम लोग पेट में भी अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
0: जी, तो अगर उन सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम है तो इसका मतलब है कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, और पराली जला देते हैं तो मिट्टी का तापमान बढ़ जाएगा
1: वो भी मर जाते होंगे
0: और
1: सर।
0: उनमें सूक्ष्म पोषक तत्व तो जो पोषक तत्वों का रूपांतरण करते हैं उनको अनुपलब्ध अवस्था से उपलब्ध अवस्था में करने का कार्य करते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन का कार्य करते हैं वह प्रक्रिया उसमें रुक जाएगी और मृदा का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा।
1: जी
0: और जब मृदा का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो अच्छी फसल की हम संकल्पना कैसे कर सकते हैं।
1: ना
0: तो किसान भाइयों के लिए मेरी विशेष रूप से यह कहने की बात है कि वो पराली को जलाएं नहीं बल्कि उसको मिट्टी में मिलाने का कार्य करें, तो उससे पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है और सूक्ष्म जीवों की भी मात्रा
1: आप कहे कि
0: बढ़ जाती
1: मतलब पराली के सड़ाई दें हमें तो ज्यादा
0: है।
1: फायदा
0: जी,
1: हो, ये तो रासायनिक अवस्था बात होगी, जैविक अवस्था में क्या बात हुई।
0: जैविक अवस्था में यही कि बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं यही पोषक तत्वों का रूपांतरण का कार्य करते हैं,
1: जी।
0: उनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं, और ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनके विच्छेदन का कार्य करते हैं।
1: एक बात सवाल ये उठा था कि जैसे बरसों पहले हमारे यहाँ का माटी बड़ी अच्छी रही है, स्वाभाविक सी बात है भली पैदावार कम होत रही, कहे से इतना सुविधा नहीं रही, लेकिन जौन कुछ भी पैदा होत रहा उससे स्वास्थ्य अच्छा रहत रहा हमार। तो माटी आज जौन हमार खराब हो जात बे, अस्वस्थ हो जात बे,
0: जी
1: एकर का प्रमुख कारण है कि अगर किसान भाई वो कारण रोक दें तो माटी हमार फिर से स्वस्थ हो सकते, एकरे बारे में कुछ
0: जी
1: बताओ।
0: देखिए, किसान भाइयों के लिए मेरी विशेष रूप से ये कहने की बात है कि आजकल लोग वनों की जो कटाई कर दे रहे हैं, तो हमारी मिट्टी है वो मरुस्थल, डिजर्ट, मरुस्थलीकरण उसका होता जा रहा है, और जो अविवेकपूर्ण ढंग से, गैर जो विवेकपूर्ण तरीके से हम कृषि के जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक विशेष करके, और कृषि रसायनों का जो प्रयोग कर रहे हैं,
1: अंधाधुंध
0: उसका प्रयोग कर रहे हैं,
1: चाहे जाने में चाहे अनजाने में
0: जी, तो फसलों की जो मांग है उससे अधिक उत्पादक डाल दे रहे हैं, तो जिससे हमारी जो मिट्टी है

0: वह अम्लीय हो जा रही है, क्षारी हो जा रही है। विशेष करके जो रसायन हैं, जो रासायनिक केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, उनका जो हम प्रयोग करते हैं,
1: खास
0: तो
1: करके जो
0: मिट्टी में वो
1: जी जी
0: उनका जो अवशेष है वो बहुत दिनों तक रहता है,
1: पड़ा रहा था
0: पड़ा
1: वो।
0: रहता है, और फसलें भी उसको धीरे धीरे अवशोषित कर लेती हैं, और अवशोषित करने के बाद वही अन्न हम फसलों के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है,
1: जी जी जी
0: जिसमें भारी तो भी हैं, हेवी मेटल्स जिसे कहते हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, आजकल जो हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तमाम तरह की बहुत सारी बीमारियां
1: और
0: हैं।
1: वो जो कैंसर
0: हाँ
1: कारक
0: हाँ
1: कार्सिनोजेनिक है
0: हाँ कैंसर
1: जो
0: बढ़ रहा है, इन्हीं रसायनों के कारण बढ़ रहा है। वो मुख्य कारण है कि हमारी अस्वस्थ मृदा और अंधाधुंध रसायनों को प्रयोग करने के कारण ही ऐसा हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है, हम समझ नहीं पाते, किसान भाई हमारे समझ नहीं पाते कि वर्षा हो रही है, सिंचाई कर रहे हैं, मिट्टी समतल नहीं है, तो वर्षा के पानी के कारण जो बहाव ज्यादा होता है, तो जो हमारी ऊपरी परत है,
1: उपजाऊ परत जो होती
0: उपजाऊ जो मिट्टी है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके वो पतली परत के रूप में
1: कट के बह
0: वो बह
1: जाता है।
0: जाती है। तो उसको ठीक प्रकार से व्यवस्थित करना, अगर वो नहीं करते हैं तो हमारी मिट्टी अस्वस्थ हो जाएगी। और जो अम्लीयता है और क्षारीयता है, वो रसायनों के साथ साथ जो हम सिंचाई का जल भी प्रयोग करते हैं, नहरों के पानी में बहुत सारे ऐसे लवण घुले होते हैं,
1: जी, वो
0: हानिकारक लवण
1: नहर
0: हैं,
1: किनारे खेत तो ऊसर हो जाता है
0: ऊसर हो जाते
1: ज्यादातर।
0: हैं।
1: हाँ जी
0: तो ऐसी ऐसी स्थिति में क्या है कि जो हम सिंचाई जल का प्रयोग करें वो मानकों पर ठीक हो, लेकिन जो है वह क्षारीयता और अम्लीयता जो है,
1: ओकरे ध्यान में रख,
0: हाँ उसको
1: कोई कहा है कि
0: भी,
1: मतलब पीएच जो संतुलन होते
0: हाँ वो ठीक रहे।
1: वो सही रहे चाहे।
0: जी, और अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो कार्बनिक पदार्थ, जो जैविक पदार्थों की मात्रा है, अगर मिट्टी की जो आत्मा है
1: हाँ
0: वो जैविक पदार्थ है, और हम बहुत सारे रसायनों का प्रयोग कर लें, अगर जैविक पदार्थों की मात्रा न्यून है, बहुत कम है, तो
1: नाम
0: क्या होगा
1: मात्र
0: कि उसमें सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो जाएगी,
1: जी
0: और जो पानी रुकने की, अवशोषण करने की क्षमता कम हो जाएगी,
1: जी जी
0: जो पोषक तत्व हैं जिसे हम न्यूट्रिएंट अंग्रेजी में कहते हैं,
1: हाँ
0: आ उनकी भी मात्रा कम हो जाएगी,
1: हाँ
0: और मृदा का स्वास्थ्य, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अगर कम है तो मृदा का स्वास्थ्य
1: बिगड़ जाए।
0: बिगड़ जाएगा। और पोषक तत्वों की कमी, हमने आपको पहले ही बताया कि पोषक
1: जी
0: तत्वों की कमी है,
1: जी
0: मुख्य पोषक तत्व हैं, द्वितीयक पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान। और देखिए सारी जो लड़ाई है पोषक तत्वों की, सारे जो पोषक तत्व हैं, तीन पोषक तत्व तो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क हैं, जो सबसे ज्यादा मिट्टी में पाए आवश्यकता होती है, जो पाए जाते हैं उसको प्रकृति देती है,
1: अच्छा कौन कौन भैया?
0: वो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, जो हवा और पानी से
1: हाँ
0: मिल
1: हाँ
0: जाता है
1: मिल
0: पौधों को।
1: जाता।
0: केवल 10% की लड़ाई है, 10% मानव उसका प्रबंधन करता है, और उसका भी प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसलिए हमें मिट्टी के स्वास्थ्य के में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हम प्रकृति के साथ भी संतुलन
1: बनाए कर
0: बना करके चलेंगे, तभी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
1: और भैया
0: और खराब जल से मैंने बताया कि अगर आप सिंचाई करते हैं तो मिट्टी का स्वास्थ्य,
1: ये देखे में आवा था, मैंने अपने पिए भरे तमाम तरह के देखा, मशीन लगाए ले छानी के
0: जी
1: पानी आवत बे, और जो चीज से हम खाते ही ओकरे बेरे तो खराब पानी सिंचाई करते हैं तो कहाँ स्वास्थ्य अच्छा
0: जी
1: रहेगा।
0: बिल्कुल। और हमारी मिट्टी में आजकल जल भराव हो जाता है, और जल भराव की स्थिति में मिट्टी का पूरा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उसका पूरा के संरचना और उसमें पोषक तत्वों की पीएच मान में बहुत सारे अंतर आ जाते हैं। इसलिए जल निकास का भी उचित प्रबंध हो
1: होइक चाहिए।
0: और मिट्टी समतल हो, और इन सब बातों का किसान भाई अगर ध्यान रखें तो हमारी समस्या, मिट्टी उनकी
1: स्वस्थ है।
0: स्वस्थ बनी रहेगी।
1: जी, तो हम तक कहे कि भाई बहुत नीक बात बताए। एक बात और कि भी अस्वस्थ मृदा जोन होता, खराब मृदा या बीमार माटी के सूचक का है?
0: देखिए एक तो हम सामान्य रूप से देख करके ये बता देते हैं कि ये हमारी मिट्टी अस्वस्थ है, तो उसमें फस

0: फसलों की जो वृद्धि और विकास है उसका उपज से पता लगा लेते हैं।
1: जी।
0: लेकिन इसके बहुत सारे और भी कारण होते हैं,
1: हाँ
0: रोग
1: हाँ
0: लगा हुआ है और वातावरण का भी प्रभाव है, बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन
1: जी
0: सामान्य रूप से इस तरह से आप
1: हाँ
0: कर सकते हैं।
1: हाँ
0: मिट्टी का रंग देख करके, काली
1: हाँ
0: मिट्टी है, भूरी
1: हाँ
0: मिट्टी है,
1: हर जगह अलग अलग मिट्टी
0: हाँ
1: है।
0: इस तरह से उसके रंग को देख करके हम समझ जाते हैं। तो ऊपरी सतह पर मिट्टी का क्षरण अगर हो रहा है, इसका मतलब क्षरित मृदा है, तो मिट्टी का स्वास्थ्य, कहने का
1: बिगड़ा।
0: मतलब खराब है, जल जमाव है, जल बहाव ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर, तो मिट्टी ठीक प्रकार से नहीं है। ज़्यादा खरपतवार हैं तो मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो उनको
1: खरपतवारे खींच ले
0: खींच
1: जाते।
0: ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि स्वास्थ्य उसका खराब, खरपतवारों का भी उचित प्रबंध करें। और मिट्टी में उपलब्ध जल की मात्रा, बहुत मिट्टी सूखी है
1: जी।
0: उसमें जल ही नहीं है, तो जल नहीं है तो पोषक तत्व तो जो है पौधों को कैसे मिलेगा, क्योंकि जल में ही घुलनशील पोषक तत्व ही पौधे प्राप्त कर पाते हैं। तो इन सब बातों को, और प्रभावी जल जो जड़ की गहराई है, जड़ मिट्टी में नीचे जो है कठोर परत जमा हो गई तो जड़ क्षेत्र नीचे तक नहीं जा पाएगा। और इसी प्रकार रासायनिक सूचक है, जिसे हम प्रयोगशालाओं में उसकी मिट्टी की जांच करा करके ही
1: हाँ
0: उसको जान पाते हैं, जैसे
1: जी
0: उसका पीएच मान कैसा है, विद्युत
1: जी
0: संचालकता कितनी है, उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, सूक्ष्म
1: जी
0: पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व,
1: जी
0: इसको तो आप
1: माने
0: प्रयोगशाला में ही
1: माटी की जांच से
0: जांच
1: पता
0: से ही
1: चल
0: आप करा पाएंगे।
1: अच्छा
0: उसी
1: अच्छा
0: प्रकार से सूक्ष्म जीवों की जो मात्रा है उसको भी आप प्रयोगशालाओं में ही उसकी जांच करा कर ही जान सकते
1: नहीं
0: हैं।
1: सही, सरल विधि तो है। अगर किसान भाई पहचाने चाहते हैं हमारे माटी खराब है या अच्छी बाटे है तो जांच कराई ले। एक बात आवत है कि जोन बाटे है ओकर का उपाय कह सकते हैं कि हमार माटी स्वस्थ रहे, किसान भाई के बस में जोन चीज बा है।
0: जी देखिए, एक तो मिट्टी का परीक्षण
1: हाँ
0: बहुत आवश्यक है। आजकल जो है सॉयल हेल्थ कार्ड,
1: जी बनता है
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड,
1: 2 साल पे जोन
0: हाँ,
1: बनता है।
0: तो उसको आप पोर्टल पर भी किसान जा करके बनवा सकते हैं।
1: हाँ
0: उससे
1: लेकिन
0: जो,
1: जब माटी की जांच करा ली तभी तो बढ़िया
0: हाँ,
1: बने,
0: माटी की जांच,
1: खाली बनवाए से तो कोनो
0: हाँ
1: फायदा बा नहीं।
0: हाँ उसके लिए जो है हमारे प्रयोगशालाएं होती हैं और उनमें जा करके मिट्टी का परीक्षण करा रहे हैं। और ज़्यादातर किसान भाई प्रयास ये करें कि कार्बनिक खादों का प्रयोग करें और जैविक खादों का प्रयोग करें, और पौधों में पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो ठीक प्रकार से करें।
1: अच्छा।
0: और जो ग्रस्त मृदाएं हैं, समस्याग्रस्त जिसे आप कह लीजिए, कि जिसमें अम्लीय मृदाएं हैं
1: हाँ
0: और क्षारीय मृदाएं हैं, उसका प्रबंधन ठीक प्रकार से करें। समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन आजकल बहुत बात हो रही है उस पर,
1: जी।
0: तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो रासायनिक उर्वरक हैं उनके साथ जो है जैविक और कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, और रासायनिक उर्वरकों को कम करें,
1: संतुलन बना रहे
0: संतुलन बनाएं, कम जुताई करें।
1: जैसे समन्वित पोषक तत्व तो के बाद प्रबंधन चला तो वैसे समन्वित कीट प्रबंधन पे भी बात चलत बाटे।
0: हाँ
1: जैसे आप बताए ना कि अच्छे जोन बैक्टीरिया होते हैं खत्म हो
0: जी,
1: जाते पराली जलाए से, तो ये दोनों बात हो चाहे जोन बाटे है।
0: और फसल चक्र को अपनाएं, और फसल चक्र इसी प्रकार भूमिगत जल प्रबंध भी करें, और जो कीटनाशक हैं
1: हाँ
0: उनका जो प्रयोग है सही प्रकार से करें।
1: जी।
0: तो इस तरह से अगर किसान भाई करते हैं तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहेगा,
1: अगर बिगड़ा है तो सुधर भी
0: हाँ
1: सकत
0: सुधर जाएगा।
1: है। जी।
0: और इस तरह से किसान भाई करके अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य बना सकते हैं और फसलों का उत्तम स्वास्थ्य ठीक रख सकते हैं। इसी तरह
1: जी
0: से फसलों का स्वास्थ्य ठीक है तो मानव का भी स्वास्थ्य,
1: मानव जीव जंतु सबका स्वास्थ्य
0: सबका
1: अच्छा रहे
0: स्वास्थ्य
1: भाई, वहीं से खेती से ही तो सबके जीवन चलत बाटे। तो भैया शशिकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहब, आप बड़ी ही अच्छी जानकारी आज हमारे किसान भाई ने बताया कि मृदा को स्वस्थ रखे के लिए का उपाय कर जाने, स्वस्थ मृदा और स्वस्थ कृषि। बहुत ही बढ़िया विषय आपके बातचीत रही, और हमारे किसान भाई अगर समझी हैं तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है, हमार माटी सही हो सकता है। माटी सही हो जाए तो न केवल फसल स्वस्थ होए, आदमी का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहे। आप कितनी अच्छी जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
2: भैया। देखा हो
0: बोलो भैया।
2: ये जीवन बातचीत रही भैया, देखा स्वस्थ मृदा स्वस्थ कृषि
0: हाँ
2: ए पर भैया देखा डॉक्टर शशिकांत त्रिपाठी से राकेश कुमार मौर्य भैया कितना फरियाई के पूछें जवन है कि अपने माटी के संरचना के सुधार बदे का काम करे के चाही किसान भैया के, कैसे सचेत रहे के चाही उनका। एहमन अपने माटी में देखा मुख्य रूप से जौन भाई डॉक्टर साहब बताएं कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है,

0: और करे अलावा भैया सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं। तो भैया कहीं न कहीं जो है ई सब के मात्रा अगर संतुलित रही अपने माटी में, तो अपने माटी में जौन भी फसल बोआ जाई हो वो बढ़िया होई, स्वस्थ होई। और भैया देखा वही के साथ साथ हमारो तोहरो स्वास्थ्य बढ़िया रहे हो।
1: कह गया उधो भैया, देखा चाहे आपन देखा पालतू पशु हुए, चाहे देखा आपन स्वास्थ्य हुए, भैया देखा जब आपन माटी स्वस्थ रही,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मूल मुद्दा बा देखा माटी स्वस्थ के। तो जब माटी स्वस्थ रही तो समझा तब ने आपन जौन खेती किसानी के जौन भी फसल है वह स्वस्थ रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अब स्वस्थ माटी के बदे जौन है सब भैया बहनी हरिन सचेत हो जाए
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल।
1: टेम बढ़िया बा कि आपन माटी की जांच करा लें ताकि आपन 4 पैसा की आमदनी होए और आगे की देखा फसल बढ़िया हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल हो सूर्यमन भाई। देखा हम एक बात और कहते रहे
1: हाँ हाँ
0: कि
1: बतावा।
0: भैया देखा आजकल जैसे ये ग्रीन हाउस नर्सरी बा,
1: हाँ
0: तो भैया देखा यहूँ में ये बा कि यह एक तकनीक बा भैया जौन है ये नर्सरी ग्रीन हाउस लगाई के भैया एमन ये पारदर्शी होत है जौन है एमन, चाहे नर्सरी डालें फसल के पौधा के
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: के बेमौसम के भी जौन है सब्जी खेती की हो जाए सकत
1: ये
0: है।
1: तो बहुत नीक बात बताया हो। अब जैसे कि ग्रीन हाउस नर्सरी के जरिए से किसान भैया बहनी हरिन देखा चाहे साग सब्जियन की खेती होए, चाहे भी अपन देखा फसल वाली होए,
0: बिल्कुल
1: इमा
0: बिल्कुल।
1: देखा अपन फसल की सुरक्षा बढ़िया बनी रहत है, इमा देखा कीट है पतंगा है रोग बयार की देखा कमी आवत है, और साथे साथ अपन किसान भैया बहनी हरिन आपन जो है टेम से अपन फसल की पैदावार कई सकत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हो भैया जौन है देखा बात बत कही तो होते रही मुला
1: हाँ
0: आवा एक ओंकार नाथ है का जौन है के
1: हाँ हाँ
0: और एक ठे निर्गुण सुन लिया जाए।
1: हाँ हाँ सुनवा दिया मुला। एक बात और हो, पहले देखा हो तो संदेश हुई जाए तो फिर आगे गान गीत गौनाई होई।
0: सुनवा दे
1: हाँ
0: भैया।
1: हाँ तो सुनाई।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: धो भैया, अब देखा ओंकार नाथ के निर्गुण कितनी नीक जौन है, देखा लोकगीत रही और किसान भैया बहनी हरिन सुनिन भैया, देखा अपन जौन है खेती किसानी के साथों साथ भैया, देखा अपन भक्ति भावों में भी अपन किसान भैया बहनी हैं सब डूब जाते हैं वही,
1: बिल्कुल
0: जिससे देखा अपन आत्मा का बड़ी शांति मिलत है। तो खेती किसानी के साथे साथ भैया देखा और भी काम धाम होत है, तो मुला एक काम और हम बतावा चाहे थे कि ई टेम जौन है बहुत अच्छा देखा अपन किसान भैया बहनी हरिन का ये मौका बा कि जैसे कि अपन खेती किसानी में भैया देखा जैसे कि खेती बाड़ी में कहूँ भी ऐसी जगह बा खाली जगह जहाँ पर कि अपन माटी के जौन है गड्ढा खुदवा ले।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, यानी कि अब समय आओ तो जौन पेड़ लगावे के न हो तो गड्ढा पहले से खोद के भैया उमन देखा खरपतवार डाल के सड़ाई दें, और करे बाद भैया देखा जब समय आई तो जौन है पेड़ लगा दें। भैया देखा सब कुछ समय समय से होत है, तो भैया घड़ी भी इशारा का तो पंचन से विदा लेवे के
0: तो पंचो राम राम, राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 MHz पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में

0: 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2006 की परीक्षा, 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर, अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रुपये महंगा, प्रदेश में अब 95 से 97 रुपये पेट्रोल और 88 से 91 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला, मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए से अधिक की 79 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, टूल किट और आवास की चाबियां भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में तेजी से हुए विकास के चलते आज उत्तर प्रदेश देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। पश्चिम एशिया संकट का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बिजली और ईंधन की बचत करने और छोटे छोटे प्रयासों से देश को मजबूती देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ हर नागरिक को देश हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: कि ईंधन से जुड़े हुए मामले हो, खाद्यान्न से जुड़े हुए मामले हो, फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ मामला हो, या फिर मैं सभी सराफा व्यवसायियों से भी अपील करूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि विदेश से सोना मंगाने की बजाय हमारे घरों में जो सोना है उसी की मरम्मत कराना, हम सब अगर उस दिशा में कार्य करेंगे, देश का पैसा बचाना है, इस वैश्विक संकट से हम अपने देश को उभारने का काम करेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज को दिशा देने में प्रबुद्ध जन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास को गति देने के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार की गारंटी देने का काम कर रही है।
1: आज स्वास्थ्य की सुविधा है, इंसेफ्लाइटिस बुरी तरह समाप्त, नौजवान के लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है, उसके रोजगार की गारंटी है, नौकरी की गारंटी है, बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी है, विकास की भी गारंटी है। प्रबुद्ध जनों से मेरी यही अपील है, इसको चर्चा परिचर्चा का विषय बनाना चाहिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। श्री प्रधान ने बताया कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से ऑनलाइन यानी सीबीटी के माध्यम से होगी।
2: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
0: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राज्य के प्रमुख शहरों में अब पेट्रोल की कीमत औसतन 95 से 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की दरें लगभग 88 से 91 रुपए प्रति लीटर हो गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। प्रदेश में तेज आंधी, तूफान, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से हुई जनधन की हानि को लेकर मुख्यमंत्री योगी

0: अनंतनाग ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पशुहानि से प्रभावित लोगों को भी नियम के अनुसार सहायता प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने और हालात का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राहत आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम को 2400 घंटे सक्रिय रखते हुए राहत और सहायता कार्यों की निरंतर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार प्रदेश के 26 जनपदों में खराब मौसम के कारण 111 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 72 लोग घायल हुए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर आज से बिना टोल शुल्क के यात्रा की सुविधा खत्म हो गई है। कल रात 12 बजे से इस एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क मार्ग पर 15 दिनों के लिए बिना टोल टैक्स के यात्रा करने की सुविधा दी थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 29 मई को माता भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा। ये ध्वजारोहण राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही साध्वी रितंभरा के हाथों किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले इस कार्यक्रम में करीब 2000 महिलाओं को आमंत्रित किया जाएगा। आईपीएल में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। मैच को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के लखनऊ कार्यालय में आज एक दिवसीय समीक्षा शिविर का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उप क्षेत्रीय कार्यालय गोंडा, कानपुर, झांसी, फतेहपुर और लखनऊ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। राज्य राजधानी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप महानिदेशक डॉ सुचिता गुप्ता ने बताया कि पारिवारिक आय के सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, जो अगले साल 31 मार्च 2027 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सरकारी नीतियों और योजनाओं को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
2: ये सर्वेक्षण जरूरी था क्योंकि योजनाओं को बनाने में कहीं ना कहीं हमें इनकम की जरूरत होती है, और अगर हमें इनकम सही से मिल रही है तभी हम बहुत सारी योजनाओं में हम टारगेट बना पाएंगे, क्योंकि हर इनकम क्लास के जो लोग होते हैं उनकी जरूरतें अलग अलग तरह की होती है, तो सभी के लिए योजनाएं बन पाए अच्छी तरह से और टारगेट किया जा सके किस तरह की योजनाएं कितने लोगों को चाहिए होंगी, कितने हाउस होल्ड को चाहिए होंगी, तभी हमारा डेटा सही मायने में यूजफुल होगा।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री शाही ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद के कम प्रयोग का प्रयास किया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में आज सभी 899 ग्राम पंचायतों ने एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, हरित परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान ग्राम प्रधानों ने पेट्रोल डीजल की खपत घटाने और कार पुलिंग इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के साथ ही हरित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने का सामूहिक प्रण लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में 208 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। कहा, राष्ट्रहित की भावना के साथ करें बिजली और ईंधन की बचत। 21 जून को दोबारा होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा। विद्यार्थियों को अपनी पसंद के शहर में मिलेगा सेंटर। अगले वर्ष से ऑनलाइन होगी परीक्षा। पेट्रोल और डीजल 3 रूपये महंगा। प्रदेश में अब 95 से 97 रूपये पेट्रोल और 88 से 91 रूपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा डीजल। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला। मैच खत्म होने तक लागू किया गया ट्रैफिक डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शिल्पी खरे के स्वर में भजन और गीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं सूरदास की इस रचना के साथ, जिसे स्वर दिया है शिल्पी खरे ने।

0: शिल्पी खरे के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, आज है 15 मई और आज के दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो इस चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में संगीत के साथ साथ

समाहित होगी रिश्तों की गर्माहट, अपनों का प्यार, माँ की ममता, पिता का साया, भाई बहन की नोकझोंक और परिवार की वो खूबसूरत डोर जो जीवन को एक अर्थ देती है। परिवार सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, ये विश्वास, अपनापन और साथ निभाने की भावना का नाम है। जब परिवार श्रोताओं साथ होता है तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसी भावना को बेहद खूबसूरती से बयान करता है ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हम साथ साथ हैं से। आवाजें हैं हरिहरन, घनश्याम वासवानी, प्रतिमा राव की, गीत रविंद्र रावल का, संगीत राम लक्ष्मण का। सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज के इस संगीतमय सफर में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के अवसर पर हम बात कर रहे हैं आपसे खूबसूरत परिवार की। परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है माँ, जिसकी दुआओं में पूरा संसार बसता है। माँ का प्यार बिना किसी शर्त के होता है और उसी ममता को सलाम करता है ये सदाबहार गीत, जिसे अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है राजा और रंक, गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और इसकी धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, हमें खेद है कि ये गीत हम आपको ठीक तरीके से नहीं सुनवा पा रहे हैं। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। कहते हैं, हर पिता अपने बच्चों के सपनों में अपना भविष्य देखता है। उनकी उम्मीदें, उनकी सीख और उनका भरोसा बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब सुनवाते हैं आपको कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने, बोल है मजरू के और धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पारिवारिक रिश्तों की। तो हर परिवार में एक रिश्ता ऐसा भी होता है जिसमें थोड़ी नोकझोंक भी होती है और प्यार भी ढेर सारा होता है। वो रिश्ता होता है भाई बहन का रिश्ता, थोड़ी तकरार, ढेर सारा प्यार और अनगिनत यादों का संगम। रिश्तों की इसी मिठास को लिए हुए सुनवाते हैं आपको हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का वो गीत जिसे अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत है आरडी बर्मन का।

श्रोताओं, परिवार हमें सिखाता है कि हर पल को मुस्कुराकर जीना चाहिए, क्योंकि रिश्तों की असली खूबसूरती साथ बिताए गए उन पलों में होती है जो याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो है अपने लोग। जो इंसान रिश्तों की कद्र करता है, असल मायनों में वही जीवन को समझता है। परिवार की यादें इंसान को हर जगह अपनेपन का एहसास दिलाती हैं। दूर रहकर भी अपनों की मोहब्बत दिल में हमेशा बसी रहती है। तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के इस विशेष संगीतमय चितपट संगीत कार्यक्रम में हमने समझा कि परिवार जीवन का वो संगीत है जिसमें प्रेम, विश्वास, त्याग और अपनापन मिलकर खुशियों की धुन बनाते हैं। तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, रिश्तों को संजोइए और प्यार बांटते रहिए। सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

साथ साथ फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चितपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की अंशुमान को दीजिए अनुमति।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय वट।
0: इसमें सुनिए डॉक्टर अपराजिता चौधरी से की गई बातचीत। विषय है बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम अक्षय वट में। श्रोताओं, आप सबको पता है इस कार्यक्रम में हम बुजुर्ग लोगों के लिए उनसे जुड़ी ही योजनाओं, उनकी समस्याओं पर बात करते हैं। वर्तमान समय में जो है हम देख रहे हैं कि लगातार हीट वेव की घटनाएं पूरे प्रदेश में बढ़ी हैं। मौसम में त्वरित परिवर्तन भी जो है दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर का ख्याल किस तरह रखें, और आज हमने अपने शरीर के इसी एक अंग पे बात करने के लिए हमने मनोहर दास चिकित्सालय की प्रमुख विभागा प्रमुख डॉक्टर अपराजिता चौधरी को आमंत्रित किया है। आप नेत्र विज्ञान की प्रोफेसर हैं और लंबे समय से आप वहाँ अध्ययन और अध्यापन का कार्य करती रही हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: हम आपसे मैम जानेंगे कि बुजुर्ग लोगों में, या जिनको हम कहते हैं कि 60 की उम्र जो क्रॉस कर लेते हैं, 50 की उम्र क्रॉस कर लेते हैं, वो व्यक्ति अपनी आंखों की देखभाल कैसे करे, उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना।

0: पड़ता है, या वो प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं जो ऐसे लोगों को सबसे जल्दी ग्रसित करती हैं?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि जो नेत्र हैं या आँखें जो हमारी हैं वो हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है। अगर हम आँख बंद कर लेते हैं तो हमारी दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर आँख बंद कर लें तो जो प्रकृति की सुंदरता है, जो हम घूमने जाते हैं, जो हम अपने मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं या फिर पिक्चर देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, अगर आँखें नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आँखों की देखभाल बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे उम्र ज़्यादा होती है वैसे वैसे कुछ बीमारियां आंखों में आने लगती हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, रोज़ व्यायाम करें, अच्छा पोषण लें, विटामिन लें और खुश रहें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारियां होती हैं समय के साथ साथ जो होने वाली जो बीमारी, सबसे पहले होता है कि जैसे समय के साथ क्या होता है कि लोगों को पास का दिखना कम होने लगता है। सबसे बड़ी होती है जैसे 40 साल की उम्र हुई तो लोगों को परेशानी होने लगती, पास का नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा समाज चीज़ें दूर करके पढ़ते हैं, सुई में धागा डालने में दिक्कत होती है। जो घर में महिलाएँ रहती हैं उनको चावल में कंकड़ निकलने लगते हैं, दाल में कंकड़ निकलने लगते हैं। तो सब बहुत कॉमन सी समस्या है जिसे हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। प्रेसबायोपिया में क्या होता है कि समय के जो आंख का लेंस होता है वो थोड़ा मोटा होने लगता है और जो मांसपेशी जो लेंस के साथ अटैच होती है वो थोड़ी सी कमजोर होने लगती है। तो लेंस के आकार, जैसे जब दूर देखते हैं और पास देखते हैं तो लेंस अपना साइज बदलता रहता है, लेकिन जब उम्र के साथ जैसे बाल सफेद होता है, शरीर में ऊर्जा की कमी आती है, तो उसी तरह से लेंस भी थोड़ा मोटा हो जाता है और मांसपेशी कम होने की वजह से लेंस उतना उसमें प्ले नहीं रह जाता है। तो लोगों को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है, जो चीज़ हम देखते हैं वो आँख की रेटिना पे ना बन करके उसके पीछे बनने लगती है। इसको हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसके लिए चश्मा दिया जाता है और इसलिए जैसे ही उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो एक एडवाइस है कि आप तुरंत नेत्र की जाँच कराएँ और अगर चश्मे की ज़रूरत हो तो उस चश्मे को लगाएँ, जिससे कि आपको कम देखने की वजह से जो सर में दर्द होने लगता है, झुंझलाहट होती है, हेडेक होता है और इरिटेशन होता है, वो सारी चीज़ों की समस्याओं पे का निदान मिल सकता है चश्मा लगाने से।
0: आपने जिक्र किया कि तमाम तरह की समस्याएं जो हैं जो हमारी बॉडी पे असर डालती हैं उसका असर हमारी आंखों पे भी सीधा होता है। इस समय समर सीजन भी है और मैंने शुरुआत में ही कहा कि मौसम बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, कभी बारिश हो जा रही है इस मौसम में, कभी अचानक से जो है टेम्परेचर राइज हो जा रहा है। प्रयागराज शहर में भी 45 के करीब टेम्परेचर गया, तो ऐसे में जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो भी ऐसे व्यक्ति जो 45 से 50 साल की उम्र में हैं, ऐसे मौसम में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खासकर आँख के सिलसिले में हम देखें?
1: आँख के सिलसिले में ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा जो है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, आँख सूखी हो जाती है, आँखों में सूखेपन का अनुभव होता है। इसमें क्या होता है कि आंसू क्या करते हैं कि आँख की जो सतह होती है उस पर एक परत बनाते हैं, एक पतली सी परत होती है, उसको जो है टीयर फिल्म कहते हैं। उस टीयर फिल्म के ऊपर जो ये पलक है वो मूव करती है, लेकिन गर्मियों में उम्र बढ़ने के साथ है ना बार बार एलर्जी होने से ये परत थोड़ी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से उनको जो है बार बार आँख में चुभन, गढ़न, पानी आना, ये वाली समस्याएं बन जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आंसू की सतह बनी है टीयर फिल्म अगर खराब हो जाती है तो फिर हमें बार बार जो है एक चुभन जलन तो होती ही होती, साथ में धुंधला दिखाई देने लगता है, साफ दिखाई भी नहीं देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि बार बार आँखों को एक साफ पानी से साफ करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। इसके अलावा जो है जो लिकर है, कॉफ़ी है, चाय है ना, इनको कम लेना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर चीजों को अगर संभाल लेंगे तो ये परेशानी होने से रोका जा सकता है।
0: आपने बताया कि हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए या ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे में जो बुजुर्ग लोग हैं उन वो अगर घर के बाहर जाते हैं तो वो क्या आंखों पे कोई चश्मा या कोई कवर कोई इस तरह का यूज करना चाहिए?
1: बिल्कुल, ऐसे में क्या होता है कि जब धूप बहुत ज्यादा होती है तो एनवायरनमेंट में अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत ज्यादा होती है, तो जब आप बाहर निकलिए तो एक आंखों पे चश्मा लगाइए, और चश्मा जो होता है वो वैसा हो जो जिसमें यूवी फिल्टर लगा हो, हल्के पीले रंग का फिल्टर लगा रहता है, तो यूवी रेज आंख के अंदर नहीं पहुंच पाती जिससे कि वो नुकसान नहीं कर पाती है। यूवी रेज ज्यादा आने से कैटरेक्ट बनने की समस्या होती है, एक नकुना बनने की समस्या होती है, एक पिंगीक्यूला बन जाता है और आँख थोड़ी पीली पीली भी ज़्यादा होने लगती हैं। तो उसको बचाने के लिए आपको यूवी रेज फिल्टर वाला चश्मा लगा करके ही बाहर निकलना चाहिए, और चश्मा जो लगाएं वो आपको अपना चश्मा अलग बनवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी चश्मा लगा लें, है ना, आप हर एक की आँख अलग अलग होती है और हर एक के आँखों के चश्मे के नंबर भी अलग अलग होते हैं, तो कभी किसी दूसरे व्यक्ति का चश्मा ना यूज़ करें, अपनी स्वयं की आँखों का चश्मा बनाएं, और अगर कोई नंबर नहीं भी लग रहा है तब भी बाहर जाते हुए एक यूवी फिल्टर वाला चश्मे को पहने, जिससे कि आंखों में जो यूवी रेस से या अत्यधिक धूप से गर्मी से होने वाली समस्याओं को रोका जा सके।
0: मैम आपने बताया कि बुजुर्ग एज में कई तरह की बीमारियों का आपने जिक्र किया कि वो बीमारियां आसानी से लोगों

0: वो पकड़ लेती हैं। दो बीमारियों का हम जिक्र करना चाहेंगे, कैटरेक्ट और ग्लूकोमा। तो सबसे पहले हमें बताइए कि कैटरेक्ट क्या है और इसका बचाव कैसे करते
1: हैं। जो कैटरेक्ट होता है उसको हम मोतियाबिंद भी कहते हैं। अब मोतियाबिंद एक आँख की ऐसी समस्या है जिसमें कि हमारी आँख के अंदर एक लेंस होता है, जब हम दूर देखते हैं और पास देखते हैं तो वो लेंस अपना आकार चेंज करता है, जिससे कि जब दूर देखते हैं तो वो फ्लैट हो जाता है, जब पास देखते हैं तो वो थोड़ा ग्लोब्यूलर हो जाता है, जिससे कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं वो प्रकाश की किरणें हमारी रेटिना पे डाल सके। मोतियाबिंद की कंडीशन में क्या होता है कि जो ये लेंस होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ओपेक हो जाता है। ओपेक हो जाने की वजह से क्या होता है कि हमें धुंधला दिखाई देने लगता है और दूर और पास की चीजें देखने में भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पे नहीं पड़ता। इसको बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव करने के लिए तो देखिए, समय के साथ मोतियाबिंद तो होता ही होता है, लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छा खाना खाएं, मल्टीविटामिंस यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फ्रूट्स है ना, हरी सब्जियां हैं, ये सारी चीजें लें, बहुत धूप में ना निकलें, अपनी आंखों का समय समय पर चेकअप कराते रहें, अपनी आंखों को वॉश करें, अच्छे से धो करके रखें। अगर मान लो आई में कोई मेकअप लगाया हुआ है तो वो भी वो हटा करके और आंख क्लीन करके ही सोने जाएं, उसके साथ ना सोने जाएं। इसके अलावा जो है आपको व्यायाम करना चाहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या रखनी चाहिए, और जैसे तला भुना खाना है, जो आपका आर्टिफिशियल फूड होता है, रेडीमेड फूड्स होते हैं, इनको अवॉइड करके घर का बना साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपने से शरीर बाकी शरीर भी अच्छा रहता है और आंखें भी अच्छी रहती।
0: मैम, दूसरी बीमारी जो है हम लोग बात कर रहे थे, ग्लूकोमा। बुजुर्ग लोगों में ग्लूकोमा के भी केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग इसके प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, ये उस स्थिति में अपने चिकित्सक के पास जाते हैं जब समस्या बहुत गंभीर हो जाती है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि प्राइमरी स्टेज पर उसको रोक सकते हैं, हो तो किस स्टेज में जाके हमें तुरंत अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
1: देखिए, समलबाई जो ग्लूकोमा और समलबाई, इसको हिंदी में समलबाई या काला मोतिया भी कहते हैं, और इसको ये कहते हैं कि ये दृष्टि का चोर होता है, ये धीरे धीरे आँख की दृष्टि चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है। समलबाई में होता क्या है कि जैसे आँख का तनाव बढ़ता है और वो तनाव इतनी धीरे धीरे बढ़ता है कि आँख में कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, और वो बढ़ते बढ़ते क्या करता है कि जो आप देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें रेटिना पे पड़ती हैं तो रेटिना पे इमेज बनती है, लेकिन रेटिना पे बनने वाली इमेज को ब्रेन तक ले जाने के लिए एक नर्व होती है, तंत्रिका होती है, जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ग्लूकोमा में क्या होता है कि बहुत ज्यादा तनाव बढ़ने की वजह से उस तंत्रिका पे प्रेशर पड़ता है, जिससे कि वो तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और जो इमेज रेटिना पे पड़ रही है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। इसको जानने के लिए, क्योंकि ये सिम्टमलेस होता है, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे से ये पूरी दृष्टि ले लेता है और आपको पता ही नहीं चलता है। जब बहुत एडवांस स्टेज में पता चलता है कि अब हमें इधर साइड का नहीं दिख रहा या इधर का नहीं दिख रहा, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों के घर में किसी को समलबाई है उनको अपनी आंखों की जांच नियमित अंतराल पे करानी चाहिए। उनको समलबाई के लिए स्पेशली अपनी जांच नियमित अंतराल पे करानी चाहिए, एक कुशल डॉक्टर को दिखा करके, अपने ऑप्टिक नर्व इवेलुएट करा के, कहीं उसमें होने के खतरे ज्यादा होते हैं। सामान्यतः सबको साल में एक बार अपने नेत्र की जांच जरूर करानी चाहिए।
0: किस उम्र के बाद एक व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए अपनी आंखों के प्रति? क्योंकि जब हम युवा होते हैं, अक्सर उत्साह में रहते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम तरह के मौसमी घटनाएं हो रही हैं जो कि हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं, जिसका हमें अभी जो है महसूस हम नहीं कर पा रहे हैं, इन फ्यूचर वो उस पर हमारा इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन एक कोई क्राइटेरिया चिकित्सकों द्वारा बनाई गई होगी कि इस उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आँख के लिए सजग हो जाना चाहिए, एक नियमित अंतराल पर चेकअप करना चाहिए, कोई ऐसी लाइन बनाई गई?
1: देखिए, सामान्यता तो सभी के लिए है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बुजुर्ग हो, है ना, कि उसको जो है साल में एक बार अपनी नेत्र का एक नॉर्मल, जैसे बॉडी का नॉर्मल चेकअप कराते हैं, उसी तरह से नेत्र का भी चेकअप कराना चाहिए। पर जनरली 40 साल के बाद तो आपको अपनी आईज का रेगुलर चेकअप कराना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो समय के साथ आती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो शरीर की बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी हैं जो समय के साथ आती है, और जब जब उम्र ज्यादा बढ़ जाती है तभी आती हैं, तो इन सारी बीमारियों का प्रभाव भी नेत्र में पड़ता है। तो 40 साल के बाद अगर आपको साथ में कोई सिस्टमिक बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई अन्य बीमारी भी है, तो जांच करानी ही करानी है। अगर नहीं भी है तब भी करानी है, क्योंकि 40 साल के बाद धीरे धीरे आंख में मोतियाबिंद बनने लगता है, समलबाई के लक्षण आने लगते हैं, डायबिटीज है तो पर्दे पे डायबिटीज के चेंजेस आने लगते हैं, और एक और बीमारी होती है जिसे एज रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन कहते हैं, जिसमें उम्र के साथ जहां पे पर्दे पे आप देखते हैं वो मैकुला क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो उसके वो हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए भी आपको 40 इयर्स के बाद साल में एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए, और अगर कोई बीमारी निकल गई या उसके लक्षण निकल गए या आपके परिवार में किसी को ऐसे लक्षण थे

0: तो उन लोगों को थोड़ा सा और जल्दी 6 महीने में या 8 महीने में एक बार जांच जरूर करा लेनी चाहिए।
1: मैम, क्या कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं अनुवांशिक तौर पे किसी हमारे पूर्वज में या हमारी पहले की पीढ़ी में हुआ हो, तो ये उम्मीद या ऐसी आशंका होती है कि आगे की पीढ़ी में भी वो जो है रिफ्लेक्ट हो सकती है?
0: बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो आनुवांशिक होती हैं, स्पेशली मोतियाबिंद भी आनुवांशिक होता है। और समटाइम जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मोतियाबिंद लेके बॉर्न होते हैं अगर उनके माता पिता को पहले से मोतियाबिंद हो। इसी तरह समलबाई भी आनुवांशिक होती है, अगर घर में किसी को समलबाई है तो उसकी जो पहली जनरेशन है उसमें समलबाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समलबाई के अलावा जो है जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज भी आनुवांशिक होती है, हाइपरटेंशन भी आनुवांशिक होता है। तो अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ये बीमारियां आंख पे, क्योंकि आंख ही एक ऐसी जगह है जहां पर आप जो शरीर की सारी वेसेस बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, और इसके अलावा आंख के अलावा किसी भी जगह पर बिल्कुल वेसेस बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देती हैं, तो आंख में ही देख सकते हैं। तो इसलिए आपको रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि और भी बीमारियां जो है अफेक्ट कर सकती हैं, जो सिस्टमिक बीमारियां वो भी अफेक्ट आंख को कर सकती हैं, और जो नॉर्मल जो आंख की बीमारियां हैं वो तो अफेक्ट करती ही करती हैं।
1: डॉक्टर साहब ने संक्षेप में और इतनी गंभीर चीजों को बताया, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे, और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि डॉक्टर प्राजिया चौधरी जी ने जो बताया आप उनको फॉलो करें और स्वयं चिकित्सक न बने। मैम, ये भी एक टेंडेंसी है हमारे यहाँ कि हम आंख में अगर रेडनेस आ गई, जैसे आपने कहा शुरुआत में कि आजकल एलर्जी की प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो लोग चिकित्सक के पास जाने से पहले वो किसी दुकान से दवा ले लेते हैं।
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई कि वो लोग दवा ले लेते हैं, और जनरली जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। स्टेरॉइड एक ऐसी दवा होती है कि साइड इफेक्ट्स भी बहुत होते हैं। कभी कभी आपको एक बार और बता दें, अगर स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक डाला जाए तो उससे भी समलबाई हो जाता है। तो बेटर है कि आप ऐसे दवा ना लेकर के आप किसी कुशल चिकित्सक को दिखा के ही दवा लें।
1: धन्यवाद डॉक्टर प्राजिता चौधरी, आपने इतनी गंभीर चीजों को जो इतनी आसानी से बताया, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोतागण इससे लाभान्वित होंगे। और डॉक्टर साहब ने जैसा अंत में कहा कि स्वयं चिकित्सक न बने, जब भी आपको किसी भी तरह की समस्या, अपने पास के कुशल चिकित्सक के पास जाएं, अपनी आंखों के नियमित अंतराल पर जांच कराएं, और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं, जो 50 की उम्र के पार कर चुके हैं, वो एक नियमित तौर पर अगर उनको डायबिटीज और इस तरह की बीमारी है तो नियमित तौर पर जांच कराएं, क्योंकि अगर आंखें स्वस्थ हैं तो हम इस दुनिया को बेहतर ढंग से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: बढ़ती उम्र में कैसे करें आंखों की देखभाल, अभी आपने सुनी इस विषय पर डॉक्टर अपराजिता चौधरी से दीपक कुमार राय की बातचीत। इसी के साथ अक्षयवट कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ

0: में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के

0: प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टिलरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट

0: इन इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाओ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Corps rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. Indian Wushu team bags 2 gold, 1 silver and 2 bronze medals at Sanda.

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आबनाए हुरमुज के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है और आलमी सतह पर तवानाई और खुराक की यकीनी फराहमी के साथ साथ इलाकाई इस्तेहकाम के लिए आबनाए हुरमुज की अहमियत को उजागर किया है। अबूजाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ आला सतह की बातचीत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अमारात पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की।
1: हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज सुबह मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने अमारात के रहनुमाओं और वहां के आवाम के साथ भारत की यगानगत का इआदा किया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के तहीं तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि वो तवानाई, सरमायाकारी और सप्लाई निज़ाम समेत अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाए जाने के मुतमन्नी हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: मुज़ाकरात के नतीजे में कई मुआहदे तय पाए। इनमें तवानाई के शोबे में भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू ज़ैबी नेशनल ऑयल कंपनी के दरमियान मुआहदा शामिल है। इस मुआहदे का मकसद भारत के स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम के ज़खायर में यूएई की शराकतदारी को बढ़ाकर 30 मिलियन बैरल तक करना शामिल है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ADNOC के दरमियान एक तवील मुद्दती LPG सप्लाई का मुआहदा तय पाया। दिफाई शोबे में दोनों ममालिक ने स्ट्रेटजिक दिफाई शराकतदारी के लिए एक फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। इसमें सनअती ताउन, बहरी सलामती, साइबर दिफा और मालूमात का तबादला शामिल है। इसके अलावा भारत में यूएई के जरिए 5 बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी का भी ऐलान किया गया। दोनों ममालिक ने वाडीनार में जहाजों की मरम्मत के लिए क्लस्टर कायम करने और बहरी शोबे में हुनरमंदी के फरोग के लिए एक फ्रेमवर्क पर भी दस्तखत किए। इसके साथ ही भारत के CDAC और यूएई के G24 के दरमियान 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर को कायम करने पर भी समझौता हुआ। अबूजाबी से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने पर सदारती हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बाजाब्ता खैर मकदम किया गया। इस मौके पर सदर अल नहयान बजात खुद मौजूद थे। जनाब मोदी का तैयारा जब इमारात की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के F-16 लड़ाका जेट तैयारों ने इसे अपनी हिफाजत में ले लिया, जिससे प्रोटोकॉल के अहम जज्बे का इजहार होता है। इमारात का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वजीर आजम अपने दौरे के दूसरे मरहले में नेदरलैंड रवाना हो गए हैं। जनाब मोदी 6 दिन के अपने दौरे में इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय सफीर दीपक मित्तल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अबू धाबी के दौरे में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तवानाई, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और तिजारत के शोबे में इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कई कलीदी फैसले किए हैं। इस दौरे में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक सेरेब्रास चिप पेश की। जदीद तर्ज के इन चिप्स से भारत के आइंदा कायम होने वाले 8 एक्जाफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग मराकज को तकवियत मिलेगी। इंडिया AI मिशन को नुमाया अंदाज से फरोग हासिल होगा और मुल्क के नए सिलसिले की मसनूई जहानत की सलाहियत मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को जल्द भारत का दौरा करने के लिए मदु किया। ब्रिक्स के वज़ीर खारजा ने आलमी हुक्मरानी के अमल में इस्लाहात करने और इसे मुस्तहकम बनाने के तहीं अपने अहद को दोहराया है। ब्रिक्स वज़ीर खारजा ने अपनी मीटिंग के बाद एक दस्तावेज में ज्यादा मसावियाना, जमहूरी और जवाबदेह बैनुल अक्वामी और कसीर रुखी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने आलमी सतह पर बढ़ती हुई गिरोहबंदी और बेएतमादी का नोटिस लिया और बैनुल अक्वामी अमन व सलामती को मुस्तहकम बनाने की खातिर इज्तिमाई इकदामात पर जोर दिया। इन वज़ीरों ने सिफारती और सियासी वसीलों के तवसुत से आलमी चैलेंजों से निमटने की ज़रूरत को उजागर किया ताकि महाज आराई के खतरात को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने बुनियादी वजूहात पर तवज्जो देकर टकराव की रोकथाम की अहमियत पर भी जोर दिया। इन वज़राए खारजा ने मुश्तरका कुर्रे अर्ज और आबो हवा की तब्दीली जैसे मुस्तकबिल को लाहक चैलेंजों से निमटने के लिए कसीर रुखे निज़ाम के तहत अपने अहद को उजागर किया। ब्रिक्स के वजीरों ने आबो हवा की तब्दीली और कुदरती आफात के खतरात से निमटने के लिए बुनियादी ढांचे के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम बनाए जाने की अहमियत भी उजागर की। उन्होंने इस बात की सताइश की कि भारत की सदारत में ब्रिक्स लगातार कोशिशों और सरगर्मियों के जरिए तआवुन बढ़ाने के लिए

0: ज्यादा बड़ा रोल अदा करेगा, जिसमें इंसानियत और आवाम को मरकजी हैसियत दी गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग के बाद नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए वजारत खारजा में इकतसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि सभी ब्रिक्स अराकीन और साझेदार मुल्कों ने मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निज़ाम की तामीर के मौजू के तहत भारत की सदारत के तहत तरजीहात की काफ़ी सताइश की और अपनी हिमायत का इजहार किया। इस दौरान वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस्लाहशुदा और मौसर कसीर जहती के हदफ की जानिब पेशकदमी में अपने सभी शराकत दारों के साथ काम करने के तई अहद बस्ता है। ब्रिक्स वज़रा खारजा मीटिंग 2026 के दूसरे दिन आज नई दिल्ली में एक आम इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग की वसत इस अहम बात की जानिब इशारा करती है कि तेजी से बदलती दुनिया में सभी रहनुमा कसीर जहती तआवुन को मुस्तहकम करने से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मीटिंग के तनाजुर में ईरान, मलेशिया, युगांडा और क्यूबा के वज़रा खारजा से भी मुलाकात की। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराकची ने कहा है कि भारत मगरबी एशिया में क़याम अमन के लिए और ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकता है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब अराकची ने कहा कि ईरान से मुतालिक किसी भी मामले का कोई फौजी हल नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान सभी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुरमुज से होकर गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। जनाब अराकची ने कहा कि आबनाए हुरमुज की सूरत हाल अब बहुत पेचीदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मगरबी एशिया बहरान का मुजाकरात के जरिए तस्फिया करने के सिवा कोई दूसरा हल नहीं हो सकता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान भारत के किसी भी तरह के तामीरी रोल का खैर मकदम करेगा। जनाब अब्बास अराकची ब्रिक्स वज़रा खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए हुए हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने से मुतालिक मुबैना बेजाबतगियों के मामले में कलीदी सरगाना को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी ने कहा है कि मुकम्मल तफ्तीश के बाद सरगाना PV कुलकर्णी को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। PV कुलकर्णी केमिस्ट्री मजमून का लेक्चरर है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के अमल में शामिल था। उसे सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमीन में 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। CBI ने कहा है कि सभी 5 मुलजिमीन को दिल्ली में मुतल्लिका अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें तफ्तीश के लिए 7 दिन की पुलिस तहवील में ले लिया गया। नीट UG 2026 सवालिया पर्चा लीक मामले में दीगर कई मुश्तबा अफराद से पूछताछ और मजीद कार्रवाई जारी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में पुट्टपार्थी के मकाम पर जदीद तर्ज के मीडियम लड़ाका तैयारा प्रोग्राम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासत के वजीर आला N. चंद्रबाबू नायडू भी उनके हमराह मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि नए शुरू किए गए दिफाई प्रोजेक्टों से कौमी सिक्योरिटी मुस्तहकम होगी, सनअती तरक्की की रफ्तार में तेजी आएगी और नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे।
1: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बम हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एमिनेशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
0: सुप्रीम कोर्ट ने ईंधन की बचत के ताल्लुक से कई तरह के इकदाम का ऐलान किया है। इनमें वर्चुअल समात, कार पूलिंग और वर्क फ्रॉम होम शामिल हैं। मगरबी एशिया के बहरान के तनाजुर में ईंधन की खपत कम करने के लिए मरकजी सरकार की वसी तर अपील के मुताबिक यह कदम उठाया गया है। अदालत आलिया ने सेक्रेटरी जनरल भरत पराशर की जानिब से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि अब उन मामलों की समात मजीद अहकाम तक सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी जो ذیلی دنوں میں یا جزوی کام کے دنوں میں زیر سماعت آنے تھے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال سرکار نے RG کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 IPS افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ ان میں کولکاتا پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں۔ ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش کرنے اور سرکار کی منظوری کے بغیر میڈیا بریفنگ کرنے کے تناظر میں معطل کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبھیندو ادھیکاری نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ریاستی سرکار ان افسروں کے خلاف محکمہ جاتی انکوائری کرائے گی۔ تھائی لینڈ نے ہنتا وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق بڑھتی عالمی تشویش کے دوران اس بیماری کو خطرناک متعدی مرض قرار دیا ہے۔ متعدی امراض سے متعلق تھائی لینڈ کی قومی کمیٹی نے سخت اقدامات کو منظوری دی ہے، جن میں مشتبہ معاملوں کی 3 گھنٹے کے اندر اندر رپورٹنگ

0: 12 घंटे के अंदर मर्ज की तशखीस और ज्यादा खतरा लाहक करीबी रबतों का 42 दिन का क्वारंटीन शामिल है। थाईलैंड की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क गिर सतह पर इजाफी निगरानी, लेबॉरटरी टेस्टिंग और इलाज मामले के प्रोटोकॉल्स नाफिज किए जा रहे हैं, जिनमें बैन अलाक्वामी एंट्री पॉइंट्स पर करीबी निगरानी भी शामिल है। हुकाम ने जानवरों के जरिए कुतरे गए लोगों या शदीद खतरात वाले इलाकों का माजी में सफर कर चुके लोगों को मशवरा दिया है कि वो तेज बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसी अलामत नजर आने पर फौरी तौर पर इलाज कराएं। भारतीय महकमे मौसमियात ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कोंकण और गोवा में कल गर्म और मरतूब मौसमी हालात की भी पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जजायर में कल इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। इसके अलावा केरला, माहे, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरकी खित्ते के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन के दौरान इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मशरकी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, लक्षद्वीप, वस्ती महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी की भी पेशगोई की है। जुनूब मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाद हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मुकाऊ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स के 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के दोनों तमगे जीत लिए हैं। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिर कुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपनी रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून भारतीय खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिर कुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा सोने का तमगा जीता है। इधर 48 किलोग्राम जुमरे में भारतीय फिजाइया के खिलाड़ी कुशल कुमार ने चीनी हरीफ को शिकस्त देकर चांदी का तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में 17 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 2 और चांदी के 7 तमगे जीतकर तारीख रकम की है। भारत को कांसे के 8 तमगे भी मिले हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर आबनाए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाज रानी के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसी रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में सरगना को गिरफ्तार कर लिया है। मगरबी बंगाल सरकार ने आरजी कर आबरू रेजी और कत्ल केस में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। और मौसमियात महकमे ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक शदीद गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। जब उस जुल्फ की बात चली ढलते ढलते रात ढली, श्रोताओं रात की रेशमी चुप्पी में जब यादों की परछाइयां गहराने लगती हैं और दिल के कोने में कोई पुराने सी धुन धीरे धीरे दस्तक देती है, तब एक गजल ऐसी होती है जो सीधे रूह तक उतर जाती है। बात कर रहे हैं उस बेहतरीन गजल की जिसे अपनी जादुई आवाज से अमर बना दिया गजल के शहंशाह मेहंदी हसन साहब ने।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस गजल की जिसे सुनते ही हम अपनी यादों की दुनिया में चले जाते हैं। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये पंक्तियां सिर्फ शब्द नहीं हैं श्रोताओं, बल्कि एक पूरी जिंदगी का भावनात्मक सफर है, जिसमें बचपन की मासूमियत भी है और उम्र के साथ खोती हुई सादगी का दर्द भी। इस गजल को अपनी आवाज से यादगार बनाया है जगजीत सिंह साहब ने।

और श्रोताओं, अब बात करते हैं उस गजल की जो मोहब्बत की अनकही परतों को बेहद नर्म अंदाज में खोलती है। तुझे क्या खबर मेरे हम सफर, ये पंक्तियां जैसे ही कानों में पड़ती हैं वैसे ही दिल किसी अनजानी सी बेचैनी और मीठे से इंतजार में डूब जाता है। ये गजल श्रोताओं सिर्फ एक प्रेम गीत नहीं बल्कि दो दिलों के बीच की उस खामोश बातचीत का एहसास है जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं होता। इस गजल को अपनी जादुई और गहरी आवाज से अमर बनाया है उस्ताद गुलाम अली साहब ने।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में बात उस गजल की जिसमें मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई का दर्द भी है, जिसे अपनी रूहानी आवाज से अमर बनाया है बेगम अख्तर साहिबा ने। जैसे ही ये गजल श्रोताओं हमें सुनाई पड़ती है, एक पुराना सा दौर आंखों के सामने आ जाता है, जहां मोहब्बत सादगी से शुरू होती थी और वादों के सहारे आगे बढ़ती थी, लेकिन वक्त की रेत पर जब यादों के निशान रह जाते हैं, तब वही रिश्ता एक मीठे दर्द में बदल जाता है।

0: बेगम अख्तर की गाई इस गजल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है नाटक रास्तों का चक्रव्यूह, लेखक हैं राजेंद्र तिवारी।
1: ये बाजार रोशनी में चकमकाती दुकानें, कोलाहल, सड़क से गुजरते लोगों की भीड़ और इस भीड़ में अकेला मैं, खुद अपने से अजनबी। ये लाल बत्ती, रास्तों का महासमुद्र, वर्चनाओं की लाल पत्तियां, आखिर मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं? मैं रुकना नहीं, मैं चलना चाहता हूं, लेकिन मेरा रास्ता कौन सा है, कहां है?
2: वो रास्ता मेरे पास है, मेरे साथ आओ।
1: तुम्हारे साथ कहां?
2: भीड़ भाड़ से दूर, उस एकांत पोल के पास।
1: लो आ गए। अब बोलो कौन सा रास्ता है?
2: विद्रोह का।
1: विद्रोह का? किस लिए?
2: सब कुछ बदलना है।
1: पर कैसे बदलेगा?
2: हिंसा से।
1: लेकिन व्यवस्था
2: खोखली है।
1: नियम
2: तोड़ दो।
1: और अनुशासन?
2: बंधन है, मत मानो।
1: पर हमारे संस्कार?
2: पुराने फटे कपड़े हैं।

0: उतार दो।
1: तुम चाहते क्या?
0: इनकलाब।
1: इनकलाब?
2: अरे ये शोर कैसा?
0: जुलूस निकल रहा है।
2: अरे देखो देखो देखो, ये शोरूम तोड़ रहे हैं, पाट कर रहे हैं। अरे देखो देखो देखो, बस कशी से भी तोड़ रहे हैं, ईंट पत्थर चला रहे हैं,
0: गोली भी चलाएंगे।
2: पर इससे मिलेगा क्या?
0: ये सोचना हमारा काम नहीं है। चलो तुम भी जुलूस में चलो। इस सैलाब की मंजिल है यूनिवर्सिटी।
1: यूनिवर्सिटी किस लिए?
0: वहाँ भ्रष्टाचार है।
1: भ्रष्टाचार?
0: हम यूनिवर्सिटी को जला देंगे।
2: वो शिक्षा का मंदिर है।
0: नहीं, वो राजनीति का अड्डा है।
2: नाराज लगते हो।
0: बहुत ज्यादा।
1: क्यों?
0: बहस मत करो अब और आओ मेरे साथ।
2: तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता नहीं है।
0: बुजदिल हो तुम।
2: बुजदिल मैं नहीं, तुम। हिंसा और ध्वंस का मार्ग कायरता का मार्ग है।
0: हमारे लिए यही एक रास्ता है, क्योंकि शिक्षा के मंदिर अब भ्रष्ट हो चुके हैं। वहां गुटबंदी की दलदल है।
1: मैं समझा नहीं।
0: बताता हूं। एक बार एक सर ने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया था। मैं वहां पहुंचा और
3: सर।
4: कौन? ओ यस, कम इन।
3: मुझे याद किया था सर।
4: प्रैक्टिकल ठीक हो गया है?
3: जी सर, आपने बहुत मदद की सर।
4: अटेंडेंस भी ठीक हो गई है?
3: हाँ, आपने एक साल बचा लिया सर।
4: ठीक है, सोफे पर बैठो।
3: नहीं सर, मैं स्टूल पर ही ठीक हूँ।
4: तुमसे काम था।
3: बताइए सर।
4: कर सकोगे?
3: हाँ हाँ, जरूर करूंगा।
4: गुड, तुमसे यही उम्मीद थी।
3: आप काम बताइए सर।
4: डॉक्टर माथुर को निशा दिखलाना है।
3: डॉक्टर माथुर? क्यों सर?
4: उसने मेरे खिलाफ गुट बनाया है।
3: गुट? कैसा गुट?
4: वो मेरी जगह हेड बनना चाहता है। उसके खिलाफ आंदोलन करवा दो।
3: सर किस लिए?
4: वो लड़कियों पर डोरे डालता है।
3: लड़के सबूत चाहेंगे।
4: सबूत बनाए जा सकते हैं।
3: लेकिन सर, डॉक्टर माथुर मेरे भी गुरु हैं।
4: मैं भी तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ।
3: सर, डॉक्टर माथुर चरित्रवान हैं।
4: होंगे, उन्हें बदनाम करवा दो।
3: लेकिन सर,
4: इस कैंडल तगड़ा होना चाहिए।
3: सर ये गलत काम है।
4: मैंने तुम्हारे दो गलत काम किए हैं।
3: आप बदला चाहते हैं?
4: मैं माथुर की बेइज्जती चाहता हूँ।
3: सर ये काम मुझसे नहीं होगा।
4: ये एहसान फरामोशी है।
3: सर आप नाराज हो रहे हैं।
4: मैं खुद उस माथुर के बच्चे को देखूंगा।
3: आप?
4: तुम जा सकते हो।
3: जी सर। मैं चला आया। ये है शिक्षकों का हाल।
2: ये एक मछली की बात है,
3: सारा तालाब गंदा है।
2: तो क्या, उसे साफ करने का ये रास्ता है जो तुमने चुना है? हिंसा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकती।
3: मुझे उपदेश देने की कोशिश मत करो। मेरे साथ चलते हो या नहीं?
2: पर कहाँ?
3: इनकलाब लाने, जुलूस में।
2: जुलूस नहीं, उसे भीड़ कहो।
3: भीड़ की शक्ति और भी ज्यादा होती है।
2: होगी, मैं भीड़ नहीं बनना चाहता।
3: तो खड़े रहो इस पोल के पास, अकेले असहाय। मैं जुलूस में जा रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।
2: बिजली का ये पोल मेरी ही तरह अकेला, लेकिन रास्ते पर रोशनी बिखेर रहा है और मुझे रोशनी की तलाश है। क्या चारों तरफ से बढ़ती हुई अनजान राहों का अंधेरा मुझे निगल जाएगा? क्या कोई भी राह ऐसी नहीं मिलेगी जो मुझे अपना सके?
5: खबरदार, सीधे खड़े रहो।
2: कौन हो तुम?
5: पीछे मुड़ने की कोशिश मत करो। जो कुछ हो चुपचाप निकाल दो।
2: तुम मुझे लूटना चाहते हो?
5: जोर से मत बोलो,
2: वरना चाकू मार दोगे।
5: बकवास मत, माल निकालो।
2: मेरे पास कानी कौड़ी नहीं है।
5: कहा ना सीधे खड़े रहो।
2: विश्वास नहीं है, देख लो, कुछ नहीं मिला ना।

0: अरे हटो, बहनी खराब कर दी।
1: कौन हो तुम?
0: तुम कौन हो?
1: तुम्हारी तरह एक लड़का।
0: तब बेवकूफ की तरह अकेले क्यों खड़े हो?
1: मुझे राहों की तलाश है, शायद कोई राह मुझे अपना ले।
0: राहें किसी को नहीं अपनाती।
1: तब
0: राहों को अपनाना पड़ता है।
1: मैं कुछ करना चाहता हूं।
0: तुम कुछ नहीं कर सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि करने वाला सोचता नहीं और सोचने वाला कर नहीं पाता।
1: मेरे कुछ सपने हैं।
0: अधूरे रहेंगे।
1: नहीं नहीं, मैं उन्हें पूरा करूंगा।
0: कर सकते हो।
1: कैसे?
0: दादा बनो।
1: दादा? अभी तो बाप नहीं बना।
0: दादा बनने के लिए बाप बनना जरूरी नहीं। मैं भी बाप नहीं हूं।
1: पर दादा बनकर क्या होगा?
0: समाज के मुंह पर थप्पड़ मारू और छीन लो जो चाहते हो।
1: ये जुर्म है।
0: ये धंधा है।
1: छीनना गलत है। मैं मांग कर लूंगा।
0: समाज कुछ नहीं देगा।
1: पर लोगों को दिया है।
0: महंगाई दी है, चोर बाजारी दी है, अनैतिकता और भ्रष्टाचार दिया है। लेना चाहते हो?
1: नहीं नहीं।
0: तब
1: समाज में अपना स्थान, पद, नौकरी।
0: नौकरी?
1: हंस क्यों रहे हो?
0: किसी रसूखदार के रिश्तेदार हो?
1: नहीं।
0: साले हो? पहनोई हो?
1: नहीं।
0: भाई हो?
1: नहीं नहीं।
0: तब नौकरी नहीं मिलेगी।
1: क्यों? मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: वक्त बर्बाद किया है।
1: मेरे पास डिग्री है।
0: फाड़ कर फेंक दो। डिग्रियां अब नहीं चलती, गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं।
1: तुम ये कर सकते हो।
0: तुम्हें भी करना पड़ेगा।
1: मैं कभी नहीं करूंगा।
0: हाँ, पहले मैं भी यही सोचता था, अब यही करता हूं।
1: लोगों का डर नहीं है?
0: लोग मुझसे डरते हैं।
1: पढ़े लिखे हो?
0: हाँ, मेरे पास भी बहुत सी डिग्रियां थी, जला दी।
1: अरे, अपना भविष्य जला डाला?
0: भविष्य मेरी जेब में है, ये देखो।
1: अरे ये तो पिस्तौल है। तुम पिस्तौल रखते हो?
0: मेरी तरह काम करो, तुम भी पिस्तौल रखो, उस्ताद कहे जाओगे।
1: नहीं, मैं उस्ताद नहीं बनना चाहता।
0: लोगों पर राज करोगे।
1: नहीं नहीं नहीं।
0: ये देखो,
1: ये तो सोने की जंजीर है।
0: हाँ, ये बीवी की है।
1: किसकी बीवी?
0: किसी की भी। और ये देखो,
1: घड़ी और पर्स।
0: ये चीजें बीवी के हस्बैंड की है।
1: ये सरासर लूट है।
0: ये एक रास्ता है, तुम भी इस रास्ते को अपना लो।
1: नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है।
0: है, यही रास्ता है।
1: नहीं नहीं नहीं, हिंसा, लूट, अपराध, ये मेरा रास्ता नहीं है। मैं एक शरीफ आदमी बनूंगा।
0: शरीफ? उसके लिए भी हमारी मदद लेनी होगी। सोच लो।
1: सोचना तुम्हें है दोस्त। क्या तुम्हारे लिए यही रास्ता है?
0: हाँ, और सब रास्ते बंद हो चुके।
1: कोशिश करो, शायद खुल जाए।
0: की थी दोस्त, कामयाबी नहीं मिली।
1: तुम्हारे माता पिता का यही सपना था?
0: हाँ, माँ चाहती थी कि मैं अफसर बनूं और रिश्वत लेकर लाखों कमाऊं। बाप चाहता था व्यापारी बनूं और चोर बाजारी करकर बैंक बैलेंस बढ़ाऊं।
1: और तुम?
0: मैं चाहता था कि पढ़ लिख कर योग्य बनूं और अपनी प्रतिभा से समाज और देश की सेवा करूं।
1: पिस्तौल और बम से सेवा कर रहे हो।
0: समाज ने और कोई सेवा स्वीकार नहीं की। डिग्रियां रद्दी के कागज की तरह बेकार साबित हुई। कहीं नौकरी नहीं मिली।
1: क्या तुम्हारी आकांक्षा नौकरी तक ही सीमित थी? अपनी बाहों पर भरोसा करके अपने आकाश को विस्तार दे सकते थे।
0: वही तो किया है।
1: हिंसा और अपराध का रास्ता चुनकर?
0: चुनना पड़ा। तुम्हारे लिए भी यही रास्ता है।
1: मेरे कदम इस रास्ते पर नहीं बढ़ सकते।
0: तब क्या करोगे?
1: किसी और रास्ते की तलाश, जो सही मंजिल तक पहुंचा सके।
0: कामयाबी नहीं मिलेगी। जब कोशिश कर हार जाओ तो मेरे पास आ जाना। दादा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, अब चलता हूं अजनबी दोस्त, धंधे का वक्त है। रास्ते की तलाश।
1: लूटपाट, अपराध, हिंसा, क्या यही विकल्प है मेरे लिए? नहीं नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? इन सड़कों का विस्तार नापने से क्या होगा?
2: अरे, वो चोर, बचाओ!
1: कौन है वहां?

0: कौन? मैं आ रहा हूँ। घबराओ मत, घबराओ मत। क्या बात है?
1: वो उधर भाग गया।
0: कौन है?
1: अरे गुंडा था, पकड़ो उसे, प्लीज कैच हिम।
0: अरे वो अंधेरे में भाग चुका है।
1: वो मेरा पर्स छीन के ले गया।
0: क्या था पर्स में?
1: गोलियां।
0: गोलियां? समझा।
1: क्या
0: तुम भी उसी गिरोह की हो?
1: नहीं।
0: उसके पास पिस्तौल थी और तुम्हारे पास ये गोलियां।
1: ओह प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
0: एक चोर ने दूसरे को लूटा है।
1: मैं चोर नहीं हूँ।
0: तब पर्स में गोलियां रखकर रात में क्यों घूमती हो?
1: वो पिस्तौल की गोलियां नहीं थी, उसमें पिल्स थी।
0: पिल्स?
1: पर्स में मेरे 3 दिन का राशन था।
0: राशन?
1: अब क्या होगा? मैं पिल्स के बिना नहीं रह सकती। I will die.
0: कौन हो तुम?
1: हाँ फनी, लोग तो दूर से ही लड़कियां पहचानते हैं। डोंट यू सी आई एम अ गर्ल?
0: देखो तुम्हें रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए।

0: पर्स में मेरे 3 दिन का राशन था। अब क्या होगा? मैं पिल्स के बिना नहीं रह सकती। I will die.
1: कौन हो तुम?
0: हाँ, फनी, लोग तो दूर से ही लड़कियां पहचानते हैं। Don't you see? I'm a girl.
1: देखो, तुम्हें रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए।
0: तो कहाँ रहना चाहिए?
1: अपने घर में।
0: मेरा घर नहीं है।
1: सभी का घर होता है।
0: इसलिए कहने को तो मेरा एक घर है, सब कुछ है, दौलत, शान और शौकत, कोठी, मोटर।
1: तब फिर ऐसे क्यों घूमती हो?
0: मैं धन, दौलत, घर और शोर शराबे से ऊब गई हूँ।
1: ये पलायन है, जिंदगी से भागना है। ये
0: जिंदगी की तलाश है।
1: नहीं,
0: मन की शांति का रास्ता है, पाथ फॉर पीस ऑफ माइंड।
1: तुम घर की मर्यादा तोड़ रही हो।
0: कहा ना, घर कैद है, मुझे आजादी चाहिए। आई वॉन्ट फ्रीडम। इन ट्रेडिशनल घरों ने हम नौजवानों को तोड़ दिया है। होम्स हैव मेड अस होमलेस।
1: क्या माँ बाप का भी ख्याल नहीं है?
0: वो मुझे खो चुके हैं, मैंने उन्हें खो दिया। आई हैव लॉस्ट देम।
1: लेकिन माँ बाप तो
0: पके पत्ते हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें टपकना ही है।
1: पर हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए।
0: ओह, डोंट बी सिली।
1: ये क्या? मेरे कंधे पर हाथ मत रखो।
0: मुझे सहारा चाहिए।
1: देखो,
0: मुझे डिस्को तक पहुंचा दो।
1: डिस्को?
0: हम अपने क्लब को इसी नाम से पुकारते हैं। प्लीज हेल्प।
1: खुद चली जाओ।
0: मुझसे चला नहीं जाता, मुझे ट्रिप चाहिए।
1: ट्रिप?
0: ओह माय पुअर यंग मैन, ट्रिप नशे को बोलते हैं। ट्रिप के बिना एक पल नहीं रह सकती। आई कांट लिव। मुझे डिस्को तक पहुंचा दो, वहां मुझे कुछ मिल जाएगा।
1: लेकिन
0: इतना एहसान करो, प्लीज बी अ गुड गाइड। हाँ, चलो।
1: अरे,
0: चलो ना,
1: छोड़ो।
0: चलो,
1: देखो,
0: प्लीज।
1: अच्छा, चलो। लो, तुम्हारा क्लब आ गया, मैं चलता हूँ।
0: प्लीज कम विद मी, यू आर माय गेस्ट। अंदर चलो, कम इन।
1: अरे,
0: देखो, ये है हमारा डिस्को।
1: कितना कफेला धुआं है।

0: बाले।
1: हे हाय, मुझे बुला रहा है। कमिंग।
2: तुम्हारा नाम बालिंक है?
1: ये लोग लड़कियों को इसी नाम से बुलाते हैं।
0: Hey, come here.
1: Come on, come here. Meet my new friend.
0: Welcome, welcome, welcome, my friend. Most welcome.
1: तुम मुझसे बातें करो, मैं ट्रिप लेकर आती हूँ।
0: My friend, सिगरेट चलेगा?
2: सिगरेट?
0: और
2: ये क्या है?
0: भला तुम क्या जानो? पाउडर, इसमें है नशा ही नशा।
2: मैं नहीं पीता।
0: पियो, नहीं तो दुनिया के लोग तुम्हें पी जाएंगे। Enjoy life.
2: ये भी कोई जिंदगी है? धुएं घुटन भरे इस कमरे में, आधे नंगे नशे में लड़खड़ाते जवान शरीर।
0: हम जिंदगी का मकसद जी रहे हैं। We are living life.
2: ये अनैतिकता है।
0: ये किस चिड़िया का नाम है?
2: ये समाज का अपमान है।
0: हमारे समाज में कोई बंधन नहीं, प्यार है, सिर्फ प्यार, हर किस्म की आजादी।
2: वासना और नशे में डूब जाने की आजादी, इसे आजादी कहते हो?
0: तुम भी ट्रिप लो, मजा आएगा।

0: You will have new way.
1: ये मेरा रास्ता नहीं है।
0: कस लगा कर आंखें बंद करो, रंगों के सैलाब दिखाई देंगे। इन रंगीन परतों के पार एक आजाद दुनिया है, वहां प्यार है, मनमानी जिंदगी है, अथाह आनंद है, फ्रीडम, लव,
1: अरे
0: प्लेजर,
1: अरे लो ये तो लुढ़क गया।
2: अरे अभी तक खड़े हो डाले?
1: अरे
2: आई लव यू।
1: अरे दूर हटो, ये क्या है?
2: लव, अब मैं ठीक हूँ। आई कैन लव, किस करो।
1: अरे
2: डोंट वरी, मैंने पिल्स ले ली है। आई एम स्टडी नाउ, प्लीज लव मी। किस करो, किस मी, प्लीज लव मी।
1: देखो ये सामाजिक पाप है।
2: डैमिट, पाप क्या है, पुण्य क्या है, इसे भूल जाओ। Forget everything and live this present moment only.
1: दूर हटो, तुम अपने होश में नहीं हो।
2: बेहोश तो तुम हो।
1: ये जगरीपन है।
2: No, इसे नेचर कहते हैं डाले।
1: मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ते की तलाश है।
2: मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। Come with me.
1: कहाँ?
2: I will lead you to heaven. सभ्यता के कपड़े उतार दो, we have our culture.
1: आदमी नंगा हो जाएगा।
2: तभी तो real man पैदा होगा। Come and love me.
1: नहीं, ये कीचड़ है, रास्ता नहीं है, मेरा तब घुट रहा है। छोड़ो, जा रहा हूँ मैं। दूर हटो, मुझे जाने दो।
2: प्लीज
1: जाने दो, मुझे जाने दो, जाने दो प्लीज। धुआं, नशा, नंगापन, बेशर्मी, नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं हो सकता। फिर वही सड़क, वही एकांत, वही प्रश्न, कहाँ जाऊं, किधर जाऊं मैं?
3: घबराओ मत, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दूंगा।
1: कौन है आप?
3: तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा मसीहा, तुम्हारा नेता। तुम्हें गाइड करूंगा, मदद करूंगा। तुम्हें रास्ते की तलाश है ना?
1: हाँ, मुझे भविष्य बनाना है।
3: भविष्य बनाना मेरा काम है।
1: मैं कुछ करना चाहता हूँ।
3: तुम कुछ नहीं करोगे।
1: क्यों?
3: तुम्हारे लिए मैं करूंगा।
1: मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ।
3: तुम नहीं सोचोगे, तुम्हारे लिए मैं सोचूंगा।
1: मेरे लिए आप क्यों सोचेंगे?
3: क्योंकि सोचना मेरा काम है, मैं तुम्हारा दिमाग हूँ।
1: नहीं, मेरा दिमाग मेरे पास है।
3: गलत।
1: क्या?
3: तुम्हारे पास दिमाग नहीं है।
1: दिमाग है मेरे पास।
3: नहीं है।
1: मैं कहता हूँ
3: नहीं है। तुम भी कहो नहीं है, कहो मेरे पास दिमाग नहीं है।
1: हाँ, मेरे पास दिमाग नहीं है।
3: आप मेरा दिमाग है।
1: आप मेरा दिमाग है।
3: जो मैं कहूंगा करोगे?
1: जो आप कहेंगे मैं करूंगा।
3: तुम आंदोलन करोगे?
1: करूंगा।
3: हड़ताल करोगे?
1: करूंगा।
3: लो ये मुखौटा पहन लो।
1: मुखौटा?
3: हाँ, मेरे पास कई तरह के हैं, जब जैसी जरूरत होगी तब वैसा दूंगा।
1: पर किस लिए?
3: तुम शतरंज

0: के मोहरे हो।
1: मैं समझा नहीं।
0: चाल मैं सोचूंगा, तुम मेरी चाल चलोगे।
1: पर मुझे खुद चलना सीखना है।
0: मैं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। नारे
1: नारे,
0: आश्वासन, झंडे और बिल्ले।
1: नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे रोटी चाहिए।
0: दूंगा।
1: कपड़ा
0: दूंगा।
1: मकान चाहिए,
0: वो भी दूंगा।
1: और मेरा काम क्या होगा?
0: मेरे पीछे चलना होगा, मेरी आवाज में आवाज मिलाने के लिए।
1: मैं क्या करूंगा?
0: तुम नींव के पत्थर बनोगे।
1: कैसी नींव?
0: मैं नई इमारत बनाऊंगा।
1: नई इमारत,
0: नए सपनों के लिए। हमें लड़ाई लड़नी है।
1: लड़ाई? लेकिन लड़ाई में मैं क्या कर सकता हूँ?
0: तुम में बहुत शक्ति है।
1: कहाँ है?
0: तुम युवा शक्ति हो, तुम्हारे भीतर शक्ति का ज्वालामुखी है।
1: शक्ति का ज्वालामुखी? मुझे महसूस नहीं होता।
0: मैं तुम्हारी शक्ति के ज्वालामुखी का विस्फोट कराऊंगा।
1: किस लिए?
0: तुम्हारी शक्ति जगाने के लिए।
1: लेकिन मैं तो अकेला हूँ।
0: तुम अकेले नहीं हो।
1: और कौन है मेरे साथ?
0: युवा शक्ति, तुम तो बीज हो।
1: बीज?
0: तुम्हारे भीतर एक पूरे पेड़ का आकार है।
1: लेकिन
0: तुम एक हो। एक से दो, दो से दस, दस से सौ, सौ से हजार। तुम एक पूरी शक्तिशाली भीड़ के बीज हो।
1: भीड़ में पर मेरा दम घुटता है।
0: भीड़ में शक्ति भी होती है,
1: लेकिन दिमाग नहीं होता।
0: मैं भीड़ का दिमाग हूँ।
1: आप मेरा दिमाग हैं? भीड़ के दिमाग हैं? और किस किस के दिमाग हैं आप?
0: उन सब का, जिन्हें रास्ते की तलाश है। तुम मेरे साथ चलो।
1: कहाँ?
0: मेरे रास्ते पर।
1: मैं आपकी कठपुतली नहीं बन सकता।
0: मैंने तुम्हें आश्वासन दिया है।
1: आश्वासन से पेट नहीं भरता।
0: मैंने तुम्हें सब कुछ देने का वादा किया।
1: वादे अक्सर झूठ होते हैं।
0: तुम्हें रास्ते की तलाश है?
1: अपना रास्ता मैं खुद बनाऊंगा।
0: तुम कुछ नहीं कर सकते।
1: मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
0: तुम क्या कर सकते हो? क्या हो तुम?
1: मैं युवा शक्ति हूँ।
0: नहीं।
1: भीड़ का बीज हूँ।
0: नहीं।
1: मेरे भीतर शक्ति का ज्वार है।
0: नहीं।
1: मैं ज्वालामुखी हूँ।
0: नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं हो।
1: कुछ देर पहले मैं कुछ नहीं था, अब मैं सब कुछ हूँ।
0: ये तुम्हारा वहम है।
1: मैंने अपने को पहचान लिया है।
0: तुम अकेले हो।
1: एक से अनेक बनेंगे।
0: तुम शतरंज की गोट।
1: मैं अब खिलाड़ी बनूंगा। अपनी चाल मैं चलूंगा।
0: इन रास्तों के चक्कर में उलझ जाओगे।
1: मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा।
0: रास्ते में चौराहे होते हैं।
1: जानता हूँ।
0: रास्ता रोकने वाली लाल बत्तियां होती हैं।
1: पता है मुझे।
0: सड़कों के जाल होते हैं।
1: मैंने सड़कों के नाम की तख्तियां पढ़ ली हैं।
0: तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है।
1: मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मैं खुद एक शक्ति हूँ।
0: तुम भटक रहे हो।
1: अब मुझे रास्ता मिल गया है।
0: तुम दिशाहीन हो।
1: नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे दिशा मिल चुकी है। मुझे किसी कुतुबनुमा की आवश्यकता नहीं है। मेरा अपना दिमाग है कुतुबनुमा। वो मुझे दिखाएगा रास्ता। शक्ति, शिक्षा, दिमाग, सब कुछ तो है मेरे पास। मेरा रास्ता हड़ताल नहीं, हिंसा नहीं, आंदोलन नहीं है। जिस नेतृत्व की तलाश है वो तो मेरे अंदर ही है। मुझे उसी पर भरोसा करना है। हम युवा क्या नहीं कर सकते? एक हो जाए तो कौन रोक सकता है? विकास के रास्ते हमें खुद बनाने होंगे। ऐसे रास्ते जिनमें चक्रव्यूह नहीं होंगे, जो ले जाएंगे हमें हमारी मंजिल की ओर। मैं आगे बढ़ूंगा, हम आगे बढ़ेंगे, देश भी आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा।

रास्तों का चक्रव्यूह, अभी आपने सुना राजेंद्र तिवारी का लिखा ये नाटक। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती कमला बोस का राग बिहाग में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में है, बोल हैं कैसे सुख सोए निदरिया। द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बाट निहारूं आवन की। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं श्री श्रवण कुमार भट्ट। तो आइए सुनते हैं श्रीमती कमला बोस का राग बिहाग में ख्याल।

अभी आपने सुना श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन, राग था बिहार। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हुरमुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों

0: में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्य साई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakha. ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization and distrust and urged collective action to strengthen